हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी में अभी आप सुन रहे थे श्री मनीष शर्मा का राग भैरवी में जल तरंग वादन।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। रात 6 बजने को है, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉक्टर कॉन्स्टेंटिनोस काम्बोस, परिवहन, संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: रेलवे के बुनियादी ढांचे और

0: ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कुछ कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह SPG के प्रमुख होते हैं। SPG के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने SIT को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही। श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान की विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सू के भाग लेने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Cyprus, Nikos Christodoulis, in New Delhi today. Mr. Christodoulis arrived in New Delhi yesterday from Mumbai. He was received by Union Minister of State for Road Transport and Highways, Ajay Tamta, at the Delhi airport. The President of Cyprus is accompanied by a high-level delegation comprising Minister of Foreign Affairs, Dr. Konstantinos Kombos, Minister of Transport, Communications and Works, Alexis Vaftis, senior officials and business leaders. This is the first visit of President Christodoulis to India in his current capacity. The first international Big Cat Alliance summit, which was scheduled to take place in New Delhi on 1st of June, has been postponed. It was being organized in conjunction with the 4th India-Africa Forum Summit, as several African countries host big cats and are important partners in global efforts towards conservation, ecological sustainability and biodiversity protection. In a statement, Ministry of Environment, Forest and Climate Change said that following the decision taken in consultation with the chairperson of the African Union and the African Union Commission to convene the 4th India-Africa Forum Summit at a later date, it has been decided that the first IBCA Summit 2 will be convened at a later date. New dates for the summit will be announced in due course following consultations with participating countries and stakeholders. Hamza Burhan, believed to be one of the masterminds behind the 2019 Pulwama terror attack that claimed the lives of over 40 CRPF personnel, was killed yesterday when unknown gunmen opened fire on him in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Burhan, alias Arjuman Gulzar Dar, alias Doctor, a commander of the Al-Badr terror group, was designated as a terrorist by India in April 2022 for his involvement in a series of terror attacks in Jammu and Kashmir. He had been living undercover as a teacher in POJK following the Pulwama attack. According to local police, Burhan, a principal of a private college,

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। सुबह के ठीक 6:10 और 15 सेकेंड्स हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदना।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। सुबह के ठीक 6:40 होने को है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। इसमें आप सुनेंगे तुलसी के राम।
1: आकाशवाणी का ये दिल्ली केंद्र है। आज के चिंतन कार्यक्रम में प्रस्तुत है लघु वार्ता तुलसी के राम, वाचन स्वर और आलेख महेश वर्मा का।
2: तुलसी किसी परिचय के मोहताज नहीं, वे कालजयी व्यक्तित्व के रूप में अमर हैं। उनकी रचनाओं को पढ़ने समझने वाला बहुत बड़ा वर्ग वो है जो भक्ति रस में आखंड निमग्न होकर उनकी चौपाइयों को हृदय की गहराइयों से आत्मसात करने को तत्पर रहता है। सदियों से रामकथा वाचन की लोकश्रुत शैली द्वारा रामकथा को लोक प्रसिद्धि के नए आयाम प्रदान किए हैं हमारे तुलसीदास जी ने। भक्त कवि तुलसी ने कहा है, सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी, और समस्त जग में सीताराम के दर्शन किए, उन्हीं की लीला का गुणगान किया है। रामकथा को सरल ढंग से कहने की उनकी अनूठी कला ने वाल्मीकि रामायण से भी अधिक ख्याति अर्जित की है। तुलसीदास के रामचरित मानस में राम का चरित्र और उनके आदर्शों का वर्णन विस्तार से किया गया है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए गए हैं क्योंकि उन्होंने जीवन के हर पहलू में उच्चतम नैतिक मानकों का पालन किया है। तो आइए राम के आदर्श और उनके चरित्र को रामचरित मानस के कुछ उद्धरणों से समझते हैं। पहला है त्याग और बलिदान। राम का वनवास उनके त्याग और बलिदान की मिसाल है। पिता के वचन का पालन करने के लिए उन्होंने राज्य और सुख सुविधाओं का त्याग कर वनवास स्वीकार किया था। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहों पर वचन न जाई। अर्थात रघुकुल की ये प्रथा सदा से चली आई है कि प्राण चले जाएं पर वचन नहीं टूटना चाहिए। दूसरा, करुणा और दया। राम का चरित्र करुणा और दया से परिपूर्ण है। उन्होंने हमेशा अपने शत्रुओं के प्रति भी करुणा और दया का व्यवहार किया है। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। अर्थात राम का चित्त कोमल है और वो अत्यंत दीनों पर दया करने वाले हैं, वो बिना ही कारण कृपालु हैं। तीसरा लक्षण जो राम को मनुष्य के सर्वोच्च लक्षणों में ले जाता है वो है मित्रता और स्नेह। राम का स्नेह और मित्रता के प्रति आदर भी उनके चरित्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। उन्होंने सुग्रीव, विभीषण और हनुमान के प्रति जो स्नेह और मित्रता दिखाई वो अद्वितीय है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी लेउ जो जान निहारा। अर्थात राम को केवल प्रेम ही प्यारा है और हर कोई जान ले जो जानने का इच्छुक हो। उसके अतिरिक्त राम आदर्श और न्यायप्रिय राजा के रूप में भी थे। राजा राम जिनके राज्य को राम राज्य के रूप में जाना जाता है वो आदर्श शासक के प्रतीक थे। उन्होंने अपनी प्रजा के हित को सर्वोपरि माना और न्याय और सत्य का पालन करते हुए शासन किया। राम राज्य का वर्णन इस प्रकार है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। अर्थात राम राज्य में ना कोई शारीरिक दैविक या भौतिक

0: था, सबो सुख शांति थे। तो इन उदाहरण से स्पष्ट है कि राम ने अपने शासन में हर किसी को न्याय प्रदान किया। राम को मंगल भवन अमंगलहारी कहा गया है, उनका गुणगान पाप का नाशक है। विषम परिस्थितियों में कुंठाओं तनावपूर्ण माहौल में सार्थक जीवन कैसे जिया जाए, रामचरितमानस इसका प्रेरक उदाहरण है। प्रकृति और जीवन की समरसता को स्थापित करने का आधार है राम। रामचरितमानस में तुलसीदास ने राम के चरित्र को विभिन्न पहलुओं को इतने सुंदर और सरल तरीके से प्रस्तुत किया है कि वे आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। राम कथा को संपूर्ण समाज के लिए ग्राह बनाकर तुलसीदास अमर हो गए और आज 500 वर्ष बाद भी घर घर में रामचरितमानस या राम की कथा कही जाती है। तुलसी के राम और उनके आदर्श हमें नैतिक और आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। सत्य, धर्म, करुणा, स्नेह और न्याय जैसे आदर्शों पर चलकर हम भी अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। जय श्री राम।
1: चिंतन में अभी आप सुन रहे थे लघु वार्ता तुलसी के राम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। सुबह के ठीक 6:45 होने को है। अब से थोड़ी ही देर में यानी ठीक 6:45 पर आप सुनेंगे रामचरितमानस। आज आप रामचरितमानस में सुनेंगे बाल कांड का भाग 63।

कपटी मुनि ने राजा प्रताप भानु पर अपना प्रभाव पुष्ट होता देख उन्हें बताया कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है और मात्र उसी शाप से उनका नाश हो सकता है और किसी प्रकार नहीं। अतः राजा ने मुनि से ब्राह्मणों को वश में करने का उपाय पूछा। कपटी मुनि एक तनु ने कहा, उपाय तो बहुत हैं किंतु वे कष्ट साध्य हैं। राजा ने एक तनु के चरण पकड़ लिए। तपस्वी बोला, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा क्योंकि तुम पूरी निष्ठा से मेरे भक्त हो गए हो, किंतु योग युक्ति तप और मंत्रों का प्रभाव तभी होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। यदि मैं भोजन बनाऊं तुम परोसो और कोई मुझे जानने ना पावे तो उस अन्न को जो भी खाएगा वह पूरी तरह तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा।

0: SIT इत्यस्य नेतृत्वं केन्द्रीयान्वेषणविभागस्य पूर्वक्षेत्रस्य संयुक्तनिदेशकः भविष्यति। न्यायालयः जून मासस्य 25 दिनाङ्कात् पूर्वं स्वप्रतिवेदनं दातुं दलम् आदिष्टवान्। NEET परीक्षापत्रस्रावप्रकरणस्य प्रमुखविकासे लातूरनगरस्य बालरोगचिकित्सकः डॉ. मनोज शिरुरे इत्येषः केन्द्रीयान्वेषणविभागेन गृहीतः इति कथ्यते। सूत्रानुगुणं डॉ. शिरुरे इत्येषः स्वपुत्र्यै NEET परीक्षायाः प्रश्नपत्रम् अकृणोदिति अन्वेषणसंस्थाः शङ्कयन्ति। एकोनविंशत्युत्तरद्विसहस्रतमवर्षस्य पुलवामा आतङ्कवाद आक्रमणस्य सूत्रधारत्वेन विश्वसितः हमजा बुरहान नामकः आततायी पाकिस्तान अधिकृत काश्मीरे अज्ञातभुषुण्डिधारिभिः नरकं प्रति प्रयातितः। भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन श्वः उत्तरप्रदेशे, मध्यप्रदेशे, विदर्भप्रदेशे च उष्णतरङ्गात् तीव्रतर उष्णतरङ्गस्य स्थितिः भविष्यतीति मत्वा रक्तसूचना घोषिता। दिल्ली, हरियाणा, चण्डीगढ़, तटीय आन्ध्रप्रदेशे अपि एतादृशी स्थितिः भवितुमर्हति। IPL क्रिकेट क्रीडाचक्रे गुजरात टाइटन्स इति दलेन गतरात्रौ अहमदाबाद नगरस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे चेन्नई सुपर किंग्स दलम् 91 धावनांकैः पराजितम्। गुजरात टाइटन्स इत्यनेन स्थापितस्य 33-200 धावनांकानां लक्ष्यस्य अनुसरणं कुर्वत् चेन्नई सुपर किंग्स इति दलं प्रायः मध्य चतुर्दश कन्दुक क्षेपण चक्रेषु 40-100 धावनांकान्येव विरचयत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉ. कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस, परिवहन, संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं के प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह SPG के प्रमुख होते हैं। SPG के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीगर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने SIT को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई।

0: है। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों में संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है, वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी, इसलिए मैंने शपथ ली, लॉबी में औपचारिकताएं पूरी की और फिर मैं सीधा ऊपर चला गया और वह मेरी पहली बैठक थी। और मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतोगी तुशिमुत्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटन्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। गुजरात टाइटंस के 230 रन के लक्ष्य के जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 140 रन पर ही सिमट गई। सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर हैं। लगातार पांचवें दिन बांदा देश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां कल अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, the news read by VC Pramod. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with the President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, in New Delhi today. Mr. Christodoulidis arrived in New Delhi yesterday. He was received by Union Minister of State for Road, Transport and Highways, Ajay Tamta, at the airport. He is accompanied by a high-level delegation comprising Minister of Foreign Affairs Dr. Konstantinos Kombos, Minister of Transport, Communications and Works Alexis Vafaidis, senior officials and business leaders. This is the first visit of President Christodoulidis to India in his current capacity. The first International Big Cat Alliance, IBCA, summit, which was scheduled to take place in New Delhi on the 1st of June, has been postponed. It was being organized in conjunction with the 4th India-Africa Forum summit at several African countries host big cats and are important partners in global efforts towards conservation, ecological sustainability and biodiversity protection. In a statement, Ministry of Environment, Forest and Climate Change said that following the decision taken in consultation with the chairperson of the African Union and the African Union Commission to convene the 4th India-Africa Forum Summit at a later date, it has been cleared that the first IBCA Summit 2 will be convened at a later date. New dates for the summit will be announced in due course following consultations with participating countries and stakeholders. The Calcutta High Court has ordered setting up a three-member Special Investigation Team, SIT, of the CBI to probe the developments from the time the R.G. Carr Medical College's trainee doctor had dinner on the ill-fated night of August 2024 till her cremation. A division bench comprising Justices Shampa Sarkar and Tirthankar Ghosh yesterday said the CBI's Joint Director East will head the team. The other two members of the team would be decided within 48 hours of the court's order. The young medic was sexually assaulted and murdered in the hospital on the night of August 9, 2024. Amid recent incidents targeting railway infrastructure and train operations, Ministry of Railways has urged passengers to remain alert during travel and immediately report any suspicious activity or individuals on railway premises through helpline number 139. The appeal came after a high-level security review meeting chaired by Railway Minister Ashwini Vaishnav at the Rail Bhavan in New Delhi yesterday. Minister of State for Railways V. Somanna and Ravneet Singh Bittu, along with senior railway officials and field officers from across the country, attended the meeting. यूएस

0: ये आकाशवाणी का
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका। इसके अंतर्गत अभी आपने सुना चंद्रानी द्वारा नजरूल गीत। इनके साथ संगत कर रहे थे तबले पर सलीम अहमद, बांसुरी पर विनय प्रसन्ना और हारमोनियम पर दामोदर लाल घोष। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। सुबह के ठीक 7:31 होने को है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग, लेकिन उससे पहले ये संदेश।

0: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
1: चलो
0: कहाँ?
1: एडमिशन कराने।
3: खाता हुआ एक्टिव।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
4: जी हाँ, जानकार बनिए और सतर्क रहिए, साथ ही साथ अपने पैसे को भी सुरक्षित रखिए। स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग में, और इस खूबसूरत से कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना गुप्ता। स्वागत करते हैं आप सभी श्रोताओं का बड़े ही प्यारे से गीत के साथ, और बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यहाँ चलेगी बात, बहुत सारी बात, और साथ ही साथ सुनेंगे बहुत ही खूबसूरत से गीत।

जी हाँ, धूप निकलती है जहाँ से, वहीं से आती है बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी जो आपको बढ़ाती है आपकी जिंदगी में और थोड़ा आगे और कुछ कर दिखाने के लिए करती है प्रेरित। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी जिंदगी ना बिल्कुल रेडियो की तरह होती है, कभी सिग्नल फुल तो कभी थोड़ा सा नॉइजी, कभी गाने दिल खुश कर देते हैं और कभी कोई पुरानी याद आंखें नम कर जाती है। लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या है, चैनल बदलने की ताकत हमेशा हमारे हाथ में होती है। जी हाँ, अगर आपको पसंद आ रहा है वो गाना, वो चैनल, वो प्रोग्राम, तो आप सुन सकते हैं, सुनते रहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप फौरन स्विच ऑफ भी कर सकते हैं। अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है ना दोस्तों, अगर कोई इंसान आपका मूड ऑफ कर रहा है ना, तो बस दिल का चैनल बदलिए। ये बात हमारे दिल पर भी लागू होती है क्योंकि इसका बटन भी तो हमारे ही पास होता है ना, तो बस अपने दिल का जो है ना चैनल बदलिए और ट्यून हो जाइए उन लोगों के

आज जो आपको मुस्कुराना सिखाते हैं, क्योंकि हर सुबह यही पूछती है कि कल क्या हुआ था, वो बस एक नई शुरुआत लेकर आती है।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग और आपके साथ हूँ मैं, आज की आपकी रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना गुप्ता। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी के अनुसार वक्त हो चुका है 7:45 और ये हुए पूरे 20 सेकेंड्स।

जी हाँ दोस्तों, कभी कभी हमें लगता है कि हमारी लाइफ बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, और हम उससे बोर होने लगते हैं और सोचते हैं कि भाई कुछ खास तो हो ही नहीं रहा है लाइफ में। लेकिन याद रखिए दोस्तों, साधारण सी दिखने वाली चाय भी ना सही लोगों के साथ हो तो यादगार बन जाती है। तो अपनी लाइफ में जोड़िए कुछ ऐसे लोगों को जो आपकी लाइफ को और भी ज़्यादा रोमांटिक, एक्साइटेड और खूबसूरत बनाए। तो आज थोड़ा खुलकर हंसिए, थोड़ा दिल की सुनिए और थोड़ा उन लोगों को वक्त दीजिए जो आपके बिना अधूरे हैं। और कहीं ना कहीं दिल के कोने में ये बात आप भी जानते हैं कि आप भी उनके बगैर अधूरे हैं।

जी हाँ, ये अजूबा ही था जो अभी अभी हुआ। कुछ गलत सॉन्ग मुझसे प्ले हो गया और इट्स काइंड ऑफ अजूबा अजूबा। और फिलहाल एक और अजूबा हो रहा है, जो वक्त है वो बहुत ही तेजी से दौड़ा चला जा रहा है। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी के अनुसार वक्त हो चुका है 7:51 और पूरे 43 सेकेंड्स। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना। कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर गीतों भरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, जिंदगी बहुत लंबी है, लेकिन इसको अच्छी जरूर बना सकते हैं। अच्छे अच्छे लोगों को अपने कहते हैं ना, जिंदगी में शामिल करके, उनके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करके, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करके। जिंदगी में ज़रूरी नहीं है कि बहुत सभी अच्छे लोग मिले, कुछ बुरे लोग भी मिलते हैं, और वो जो बुरे लोग होते हैं ना, वो भी आपको कुछ ना कुछ सीख ज़रूर देकर जाते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ भी सराउंडिंग्स रखिए, अपने आसपास में ऐसे लोगों को भी रखिए जो आपको आपकी गलतियों के लिए कहते हैं ना, कि बता सके कि आपने गलत किया है, उन्हें चुनकर। जी हाँ, इसी तरीके से हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ बातें सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस भी की जाती है।

जी हाँ दोस्तों, अजूबा तो होता ही रहता है हमारी लाइफ में, कभी कुछ तो कभी कुछ, जो वो अनजाने में हो जाता है, अनप्रडिक्टेबली हो जाता है, जिसके बारे में आप जानते नहीं वो अजूबा ही होता है। तो इस अजूबे के साथ आपको अपनी लाइफ जीनी होती है और कुछ सीखना भी होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपकी रेडियो होस्ट एंड दोस्त एक बार फिर से ढेर सारी बातों का पिटारा लेकर और ढेर सारे गीतों के साथ और साथ ही साथ बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स के साथ दोबारा मिलने का वादा लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ, क्योंकि वक्त जो है ना बहुत तेज़ी से जो है आगे दौड़ा जा रहा है, साथ ही कह रहा है कि भाई हमारा यहाँ से जाने का जो वक्त है वो हो चुका है। तो जब तक हम आपसे दोबारा नहीं मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और हाँ अपने आसपास स्वच्छता जो है ना, सफाई जो है ना, वो ज़रूर रखें और हमेशा खुश रहें, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, अपने दिल का वॉल्यूम हमेशा हाई रखिए, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, ज़िंदगी के टीवी का जो रिमोट है ना वो भी आपके पास है, उसे हमेशा चालू रखिए, पॉजिटिव रखिए। टेक

0: इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। 8 बजने को है, आइए सुनते हैं समाचार।
1: कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में पहली जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आरोपों को छिपाने की जांच के लिए सीबीआई की विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति करने को तैयार। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई भी आ चुके हैं, उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडोलाइडस की ये पहली भारत यात्रा है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में पहली जून को होने वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के साथ किया जा रहा था, क्योंकि कई अफ्रीकी देश बिग कैट्स के मेजबान हैं। एक रिपोर्ट।
6: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद

0: में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। अफ्रीकी देशों सहित सभी देशों की व्यापक और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये शिखर सम्मेलन भी बाद में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन अपने नोडल संगठन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना की। इसकी शुरुआत बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, चीतो, जगुआर और प्यूमाओं के संरक्षण के लिए की गई थी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
5: नई दिल्ली के रेल भवन में कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद ये आग्रह किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। कई मामलों में रेलवे अधिकारियों द्वारा समय पर और सक्रिय कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता मिली है। बैठक में रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा जोन के बीच समन्वय सुधारने पर भी विचार विमर्श किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आधुनिक उपकरणों की सहायता से जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
4: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रेल मंत्री जोधपुर में विभिन्न रेल सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वे 20 डिब्बों वाली जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जो पहले केवल 8 डिब्बों के साथ चल रही थी। श्री वैष्णव साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जैसलमेर तक का विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। एक रिपोर्ट।
6: इस घटना ने राज्य के साथ साथ देश भर के चिकित्सक समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया था। घटना के तुरंत बाद सबूत नष्ट करने और मामले को दबाने का आरोप है। न्यायमूर्ति शंपा सरकार और तीर्थांकर घोष की खंडपीठ ने कल कहा कि सीबीआई के पूर्वी क्षेत्र के संयुक्त निदेशक इस दल का नेतृत्व करेंगे। पीठ ने कहा कि इस जघन्य घटना के सामाजिक परिणामों को ध्यान में रखते हुए 3 सदस्यीय विशेष जांच समिति साक्ष्य नष्ट करने के आरोपों और मृतक डॉक्टर के माता पिता द्वारा घटना को दबाने के आरोपों की जांच करेगी। जांच दल को अदालत ने 25 जून तक एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर के माता पिता ने दुष्कर्म और हत्या की आगे की जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उनका दावा है कि इस जघन्य अपराध में 1 से अधिक व्यक्ति शामिल थे। कोलकाता से संदीपन दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
4: सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को

0: संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। सीबीआई अधिकारियों ने कुछ दिन पहले डॉक्टर शिरूरे के लातूर स्थित अस्पताल जाकर गहन पूछताछ भी की थी। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में आज दो और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। वीसीके के वन्नियारासु और आईयूएमएल के एएम शाहजहां को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। चेन्नई के लोकभवन में सवेरे 10 बजे राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान वाले कब्जे वाले कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अलबद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। पंजाब पुलिस ने पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी कैमरे लगाकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पठानकोट निवासी को गिरफ्तार किया है। पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलजिंदर सिंह ढिल्लो ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी बलजीत सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल के पास सीसीटीवी कैमरा लगाया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जल डमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तिशुमुत्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमरीकी वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ने 2026 का गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से अमरीका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। कांस फिल्म महोत्सव में कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से बनी एक नई फिल्म का प्रीमियर हुआ। हेल ग्राइड नामक एक 95 मिनट की फिल्म को 15 लोगों की टीम ने केवल 14 दिन में तैयार किया है। इस पर लगभग $5 लाख की लागत आई है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद फरहद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से भारत लौटने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है 65 समझौते, यूएई से इटली तक दिखा भारत का रणनीतिक दबदबा। लोकसत्य के शब्द हैं, 6 दिवसीय मैराथन दौरे में कच्चे तेल से अंतरिक्ष तक 57 करार। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने का समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है पश्चिम बंगाल सरकार का आदेश, सभी मदरसों में अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य। हिंदुस्तान ने पुलवामा आतंकी हमले के साजिशकर्ता की मौत का समाचार दिया है। पत्र लिखता है पीओके में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर ढेर किया, पुलवामा हमले का सूत्रधार मारा गया। अमर उजाला ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में लिए गए निर्णयों पर समाचार दिया है। सरकारी कामकाज में लेट लतीफी पर पीएम सख्त, मंत्रियों को तेजी से

0: postponed. Railway urges passengers to remain alert and immediately report any suspicious activity or individual on railway premises on helpline number 139. Calcutta High Court orders setting up special team of CBI to probe hushing up charges in RG Kaur rape murder case. Pulwama terror attack mastermind Hamza Burhan killed by unknown gunmen in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. U.S. Secretary of State Marco Rubio says Washington is ready to sell as much energy as India is willing to buy. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडुलाइडिस के साथ बातचीत करेंगे। नई दिल्ली में बिग कैट अलायंस की 1 जून को होने वाली पहली बैन अलावामी सरबराह कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी गई है। रेलवे के महकमे ने मुसाफिरों पर जोर दिया है कि वो चौकस रहें और रेलवे अहाते में किसी भी तरह की मुश्तबा सरगर्मी या मुश्तबा अफराद के बारे में जानकारी बिला ताखीर हेल्पलाइन नंबर 139 पर दें। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजीकर आबरूरेजी और कत्ल केस में इल्जाम पर पर्दा डालने के मामले की तहकीकात के लिए सीबीआई की खसूसी टीम कायम किए जाने का हुक्म दिया है। पुलवामा दहशतगर्दाना हमले का सरगना हमजा बुरहान पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में नामालूम मुसल्ला अफराद के हाथों मारा गया है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत जितनी भी तवानाई खरीदना चाहता है अमरीका उसे फरोख्त करने के लिए तैयार है। और आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडुलाइडिस के साथ बातचीत करेंगे। कुब्रुस के सदर कल नई दिल्ली पहुंचे हैं। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर ममलिकत अजय तमता ने हवाई अड्डे पर उनका खैर मकदम किया। कुब्रुस के सदर के हमरा वजीर खारजा ट्रांसपोर्ट मवासलात और कामकाज के महकमे के वजीर सीनियर अहदेदारान और कारोबारियों पर मुश्तमिल एक आला सतही वफद भी है। ये उनका भारत का पहला दौरा है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कुब्रुस के सदर बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा इश्तराक को मजीद मुस्तहकम करने की खातिर बातचीत करेंगे। इनमें तजारत सरमायाकारी टेक्नोलॉजी तालीम सकाफत मोबिलिटी दिफा और सिक्योरिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिनटेक इख्तरा और तहकीक जैसे शोबे शामिल हैं। वो कसी रुखी इश्तराक समेत इलाकाई और आलमी अहमियत के हामिल मामलात पर भी नज़रियात का तबादला करेंगे। बातचीत के बाद मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। जला मोदी कुब्रुस के सदर के एजाज़ में जोहरानी की मेज़बानी करेंगे। शाम में कुब्रुस के सदर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करेंगे। कुब्रुस के सदर का दौरा गुज़श्ता बरस जून में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के कुब्रुस के दौरे के एक साल के अंदर अंदर हो रहा है। भारत और कुब्रुस की करीबी और तवील मुद्दती शराकत दारी है। आइंदा बरस फरवरी में दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 65 बरस मुकम्मल हो जाएंगे। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: बिग कैट अलायंस की पहली बैन अलावामी सरबराह कॉन्फ्रेंस जो 1 जून को नई दिल्ली में होने वाली थी मुलतवी कर दी गई है। इस सरबराह कॉन्फ्रेंस में बिग कैट के दायरे में आने वाली जानवरों की 7 अकसाम को महफूज रखने पर तवज्जो मरकूज की जाती है, जिनमें शेर बबर शेर तेंदुआ बर्फानी तेंदुआ चीता जैगुअर और प्यूमा नीज उनका इको निज़ाम शामिल है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: बिग कैट अलायंस की बैन अलावामी सरबराह कॉन्फ्रेंस चौथी भारत अफ्रीका फोरम सरबराह मीटिंग के साथ साथ होने वाली थी। कई अफ्रीकी मुल्कों में बिग कैट्स जानवरों की मुख्तलिफ अकसाम पाई जाती हैं और ये मुल्क इन्हें महफूज रखने माहौलियाती पायदार निज़ाम और हयातियाती तनवों के तहफ़ की समत आलमी कोशिशों में अहम साझेदार भी हैं। चूंकि चौथी भारत अफ्रीका फोरम सरबराह मीटिंग अब बाद में किसी तारीख को कराई जाएगी, इसलिए फैसला किया गया है कि अफ्रीकी मुल्कों समेत सभी मुतालिका मुल्कों की वसी तर और सरगर्म शमूलियत को यकीनी बनाने की खातिर बिग कैट अलायंस की पहली सरबराह कॉन्फ्रेंस भी बाद में तलब की जाए। माहौलियात जंगलात

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वरगंगा में अभी आप सुन रहे थे गायन अपूर्व तिवारी का। राग राग था मियाँ की टोडी। संगत कलाकार थे हारमोनियम पर क्षितिश कुमार सिंह, तबले पर समीर खान। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गांधी चर्चा।
1: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।

0: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में आज की वार्ता का विषय है महात्मा गांधी और असहयोग आंदोलन। आलेख एवं स्वर शगुफ्ता यास्मीन।
1: भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। भारत देश को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी दिलाने में गांधी जी ने जो अभिन्न योगदान दिए हैं उसकी तो तुलना ही नहीं हो सकती। बापू कहते थे, श्रद्धावान मनुष्य को भविष्य में आने वाली कठिनाइयों के भय से अपना वर्तमान कर्तव्य छोड़ना नहीं चाहिए। बापू के इस कथन को उनके द्वारा अंग्रेजों से देश को आजादी दिलाने के क्रम में बखूबी देखा जा सकता है। एक हार्ड मास के पतले दुबले व्यक्ति जिन्होंने अंग्रेजों की इतनी बड़ी हुकूमत को बिना किसी हिंसा के सिर्फ अपने अहिंसक प्रयासों से झुका देने वाले, वो कोई और नहीं, वो महान व्यक्ति महात्मा गांधी हैं। सन 1920 में अंग्रेजी हुकूमत के प्रति समूचे देश में आक्रोश बढ़ने लगा था। लोकमान्य तिलक जी ने पहली बार यह घोषणा की कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन 1 अगस्त 1920 को उनके निधन से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देने वाले एक बड़े नेता को देश ने खो दिया था। गौरतलब ये है कि इस संग्राम में गांधी जी ने गोखले जी के बाद लोकमान्य तिलक जी को ही अपने सबसे निकट पाया था। इसी वर्ष 1920 में बापू के द्वारा देशव्यापी असहयोग आंदोलन आरंभ किया गया। इसके तहत गांधी जी ने देश के निवासियों को जागरूक करने के लिए गांव-गांव का भ्रमण किया। इस दौरान महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किए गए इस आंदोलन में मुख्य रूप से भारतवासियों को ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधियां एवं सम्मान वापस लौटा देना, शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार, काउंसिल एवं चुनावों का बहिष्कार, अदालतों का बहिष्कार, सरकारी समारोहों का बहिष्कार, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, सेना में भर्ती होने से इनकार कर देना, शराब की दुकानों पर धरना देना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल किया गया था। गांधी जी के नेतृत्व में इस आंदोलन ने शीघ्र ही राष्ट्रीय स्वरूप ले लिया था। असहयोग आंदोलन में बापू के आह्वान पर जहां एक ओर देश के युवाओं ने स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई का बहिष्कार किया, वहीं वकीलों ने कोर्ट कचहरियों में जाना छोड़ दिया था। बापू के इस जन आंदोलन में सरकारी कर्मचारियों ने भी योगदान देने के लिए भारी मात्रा में अपना सहयोग प्रदान किया। आंदोलन के दौरान जगह जगह विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। सरकारी शराब की दुकानों को बंद करवाने के लिए बड़े बड़े घरों की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए उन दुकानों के आगे भारी मात्रा में धरने देने शुरू कर दिए थे। महात्मा गांधी के इस देशव्यापी आंदोलन में योगदान देने के लिए बंगाल के देश बंधु चित्त रंजन दास जी ने भी अपनी लाखों की वकालत, आलीशान मकान और संपत्ति को त्याग कर एक झोपड़े में रहना शुरू कर दिया।

दिया था। इसी क्रम में बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ब्रज किशोर बाबू ने भी अपनी सुस्थापित वकालत और जमींदारी को देश हित के लिए न्यौछावर कर दिया था। पंडित मोतीलाल नेहरू ने भी इस आंदोलन में अपने राजसी ठाठबाट को त्याग कर अपनी पत्नी के साथ एक साधारण से आंदोलनकर्ता के रूप में बाबू

0: सच्चे सत्याग्रही के रूप में कार्य किया। वहीं मद्रास में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने भी अपनी वकालत के व्यवसाय को ठोकर मारकर गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। इसी के चलते बंबई में विठल भाई जमनालाल बजाज जैसे रईस मिजाज लोगों ने भी देश हित में अपने योगदान देने के लिए अपने ऐशो आराम को त्याग कर सादगी को अपनाया। इस प्रकार संपूर्ण देश में मानो देश की आजादी के लिए अपने अपने बलिदानों की होड़ सी लग गई। यह मंजर देखकर अंग्रेजी हुकूमत ने भी सख्ती से पेश आते हुए असहयोग आंदोलन की कमर को तोड़ने के लिए सभी आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर जेल में डालना शुरू कर दिया था। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के एक छोटे से गांव चौरी चौरा की एक घटना ने पूरे आंदोलन की दिशा और दशा ही बदल डाली थी। 4 जनवरी 1922 को इस गांव से आंदोलनकारियों का एक अहिंसक जुलूस निकाला गया था, लेकिन इसी दौरान कुछ पुलिस कर्मियों द्वारा छींटाकशी के चलते तनाव बढ़ गया था और पुलिस फायरिंग में एक आंदोलनकारी के मारे जाने से सभी आंदोलनकारियों का गुस्सा फूट पड़ा था और पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया गया था, जिसके कारण कई पुलिसकर्मी आग में जलकर मर गए थे। इस घटना से महात्मा गांधी बहुत आहत हुए। बापू के इस आंदोलन में अहिंसा आत्मा के समान समाई थी। बापू का मानना था कि जब आत्मा ही दम तोड़ दे तो सारा शक्तिपुंज ही नष्ट हो जाता है। चौरी चौरा की इस घटना से आहत होकर गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी। आखिर महात्मा गांधी ने चौरी चौरा की इस घटना का दोष अपने सर ले लिया। इसके कारण 10 मार्च 1922 को उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर राजद्रोह के जुर्म में 6 साल की सजा सुनाई गई। आंदोलन के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई में हो रहे नुकसान को देखते हुए देश के अहमदाबाद में विद्यापीठ, पटना में राष्ट्रीय विद्यापीठ, वाराणसी में काशी विद्यापीठ, दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया और पुणे में तिलक विद्यापीठ जैसे 5 शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई। महात्मा गांधी का मानना था कि जब एक शासक अत्याचारी, अन्यायी और जनता का शोषक बन जाता है तो उसके विरुद्ध असहयोग आंदोलन चलाया जाता है। बापू के अनुसार असहयोग का उद्देश्य है कि अत्याचारी और अन्यायी शासक को उनकी गलतियों का ज्ञान कराकर उन्हें सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने के लिए बाध्य करना। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रही के हृदय में विपक्षी के प्रति शत्रुता और द्वेष का कोई भी भाव नहीं रहता है। वह तो सिर्फ असहयोग कर उसे सही मार्ग पर लाता है। बापू कहते हैं कि असहयोगी स्वयं अधिकतम कष्ट सहकर भी अपनी विपक्षी के अन्यायपूर्ण कार्यों में सहयोग नहीं करता है। वो तो उसे ये अनुभव करवाने का प्रयत्न करता है कि वो उसका शत्रु नहीं बल्कि उसका मित्र और हितेशी है। अतः असहयोग का उद्देश्य सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं है। महात्मा गांधी के अनुसार असहयोग का प्रयोग व्यक्तिक, पारिवारिक, शैक्षणिक और राजनीतिक जैसे क्षेत्रों में किया जा सकता है।
1: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, जिसका विषय था महात्मा गांधी और असहयोग आंदोलन। आलेख एवं स्वर शगुफ्ता

इसी के साथ गांधी चर्चा कार्यक्रम का ये अंक अब संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग श्रीनाथ दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता थे वी के तोमर।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांधी चर्चा।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी, कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइट से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडुलाइट कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडुलाइट मुंबई भी जा चुके हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडुलाइट की ये पहली भारत यात्रा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर की निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में 1 जून को होने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन IAFS चतुर्थ के साथ किया जा रहा था। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में RG कर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरोरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरोरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सीमा सुरक्षा बल BSF की महिला पर्वतारोहण टीम को एवरेस्ट पर्वत पर विजय प्राप्त करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री शाह ने कहा कि नारी शक्ति BSF की अजय शक्ति का प्रमाण है। महान समाज सुधारक राजा राममोहन राय की आज जयंती है। गृह मंत्री अमित शाह ने राजा राममोहन राय को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि ब्रह्म समाज की स्थापना के माध्यम से राजा राममोहन राय ने लोगों को सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों और असमानताओं के विरुद्ध जागरूक किया। IPL क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ले हमें हमारे सभी श्रोताओं को आपकी अपनी दोस्त और होस्ट निधि वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि समय हो चला है फिल्म आपकी पसंद का, और इसके साथ ही हमारे पास मेल की शुरुआत भी बिल्कुल झड़ी के साथ हो चुकी है। तो आप भी अगर हमें मेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस नोट कीजिए, iprradiodelhi@gmail.com पर। तो इसमें से हम एक मेल शामिल कर लेते हैं जो कि लिखा है हमें ग्राम व पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से रामेश्वर कठेरिया, उमाकांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, पुत्र बधु निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा बेदु बाबू कठेरिया ने, जो लिखते हैं कि आपकी पसंद कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम आपका प्रोग्राम बराबर सुन रहे हैं, हमारा भी मेल शामिल कर लें, कोई भी गीत हमें सुनवा दें। और इनका कहना है कि मेरा जो मेल है उसको नज़रअंदाज किया जाता है, तो उसको ज़रूर शामिल करें कि देखिए रामेश्वर जी, आपका मेल शामिल हो गया है। और ऐसा नहीं है कि हम इग्नोर करते हैं, लेकिन हमारे पास समय का अभाव होता है और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेल हम शामिल कर सकें। तो आइए आपकी पसंद पर आपको सुनवा देते हैं एक और गीत।

ये जो संदेश हमारे पास आया है, उन्होंने लिखा है कि आपकी पसंद कार्यक्रम आदरणीय प्रसारक जी, सप्रेम नमस्कार। किसी भी गीत को शामिल करें। ये लिखते हैं ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनल विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा। ये जो हमें संदेश आया है, उन्होंने भी लिखा है, ये है रमेश चौहान जी का, जिन्होंने लिखा है, नमस्कार, किसी भी गीत को शामिल कीजिए। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और तरुण चौहान और प्रतीक चौहान ने।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद और मैं हूं आपके साथ कार्यक्रम में निधि वर्मा। अब और भी मेल शामिल कर लेते हैं जो कि झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया और रीटा भाटिया लिखते हैं कि नमस्कार जी, कोई भी गीत आप हमें सुनवा दीजिएगा। और राजेंद्र नारंग ने हमें लिखा है भटिंडा रोड मंडी डब बाली से। राजेंद्र नागर, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग ने इनकी भी फरमाइश है कि कोई भी गीत आप हमें सुनवा दीजिएगा। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिब्बा, कपिल छिब्बा, ईशान छिब्बा और पूरा पूजा परिवार हमको लिख रहा है कि कार्यक्रम आपकी पसंद, आदरणीय मैडम जी नमस्कार, हम भी प्रोग्राम सुन रहे हैं और आनंद उठा रहे हैं और प्रतीक्षारत हैं कि किसी भी गीत की फरमाइश शामिल की जाए। तो हमारे पास जो मेल आए हैं वो किसी भी गीत को शामिल करने के लिए आए हैं अभी तक, तो हम आपकी फरमाइश पर सुना देते हैं आपको ये खूबसूरत सा गीत।

ये जो मेल हमारे पास आया है वो लिखती हैं, होस्ट निधि वर्मा जी नमस्कार, हम भी आपके रेगुलर कनेक्ट हैं। ये लिखती हैं एवरग्रीन रेडियो ग्रुप गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। ये संदेश आया है बोधराज खोरवाल का, जो लिखते हैं निधि वर्मा जी, अपनी बारी का इंतज़ार करते करते प्रोग्राम भी ख़त्म हो जाता है पर मैसेज शामिल नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, देखिए आपका मैसेज जो है अब शामिल हो गया है। ये लिखते हैं उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। ये जो मेल आया है उन्होंने लिखा है कि अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दीजिए। ये लिखते हैं रविंद्र मोहनदास, किशनगंज बिहार से।

ये संदेश आया है पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से अनिल मोहन उषा मोहन टिल्लू नायक का, कैथल हरियाणा से मधु नायक। ये जो हमें संदेश लिखा है राम शरण विश्वकर्मा जी ने, उनका उन्होंने लिखा है आपकी पसंद आदरणीय प्रस्तुतकर्ता जी, सादर प्रणाम नमस्कार। किसी भी सदाबहार गीत को शामिल करें। ग्राम ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा ने। जिला मुरादाबाद से मुकेश कश्यप जी लिखते हैं कि मुकेश कश्यप कोई भी गीत सुनवा दीजिए। सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, कागज शीमा, मानसी तनवी, लक्ष्य सोनी, मोहित ऋतिक, बलवीर सिंह, इन्होंने भी किसी भी गीत की फरमाइश की है।

ये जो संदेश आया है वो आया है हमारे पास बिहार स्टेट डुमराव से वली उल्लाह अंसारी का। इन्होंने लिखा है कि कोई भी गीत प्लीज़ हमें सुना दीजिएगा, और साथ में शामिल हैं सोनम वली और अजमा वली जालंधर से, अजय देव जाधव और संदीप जाधव का। और एक जो हमें मेल लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं रविंद्र सिंह छाबरा, जो लिख रहे हैं निधि वर्मा जी हमारी बारी कब आएगी, हमारा मेल शामिल कर लीजिए। तो देखिए आपका मेल भी शामिल हो गया है। ये लिखते हैं टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंदरजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। ये जो हैं वो लिखते हैं कि आर कुमार ने ये हमें संदेश लिखा है, और इन्होंने लिखा है कि कोई भी गीत आप हमें सुनवा दीजिएगा। लिखते हैं

ये जो संदेश आया है ये आया है जसपुर उत्तराखंड से। ये लिखते हैं कि किसी भी गीत के साथ हमारे नामों को शामिल करें। रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रेहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर। ये लिखते हैं कि आपका कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए हम हर दिन 10 बजे अपना कार्यक्रम सुनने के लिए रेडियो को ऑन कर लेते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये लिखा है जवाहर नगर उदयपुर से बाबू भाई भारती देवी ने। ये लिखते हैं कि आप कोई भी गीत शामिल कर लीजिए हमारे नाम के साथ। लिखते हैं कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेंद्र चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, बेबी बॉय हिमांश। ये जो हमें फरमाइशी जो संदेश आया है ये लिखते हैं कि कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है, हमारा मेल भी शामिल करें। तो जी आपका मेल भी शामिल हो गया। ये लिखते हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। ये जो संदेश आया है वो लिखा है रमेश चंद्र कामड़े ने, जो लिखते हैं कि मैडम जी हमारा मेल शामिल कर लीजिए, दे आपका मेल भी शामिल हो गया। ये लिखते हैं जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्वनी और विपुल कामड़े।

ये जो संदेश आया है वो लिखा है सिद्धार्थ गोंडाने जी ने। इन्होंने लिखा है, प्रसाद जी नमस्कार, हमें आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। ये लिखते हैं ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हिमाड़े सेडे जी, प्रणय प्रसिद्धि प्रतिभा गोंडाने जी का। ये आया है भारत भूषण, यह लिखा है निधि वर्मा जी नमस्कार, वाइल्ड फिट बेंगलुरु से भरत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण संस्कृति और पौरुष ने। ये चरणदास जी का मैसेज आया है, ये लिखते हैं कि हमें आपका कार्यक्रम अच्छा लगता है। ये लिखते हैं विनोद शिल्पा ममता परिहार हरियाणा से।

0: भी है।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, और हम कोशिश करते हैं कि हमारे सभी श्रोताओं के मेल को हम शामिल कर सकें, लेकिन समय के अभाव के कारण हम मेल को शामिल नहीं कर सकते। तो अपने आपकी पसंद कार्यक्रम से अपनी होस्ट और दोस्त निधि वर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। ये आकाशवाणी है। अब हम आपको नई दिल्ली के विज्ञान भवन लिए चलते हैं, जहां से आप सीमा सुरक्षा बल BSF के 23वें अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं प्रीति मोहन और डी एंड्रयू। आइए विज्ञान भवन चलें।

0: नमस्कार।
1: आप सभी से अनुरोध,
0: सीमा सुरक्षा बल गान की प्रस्तुति अभी आपने सुनी और विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल से मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू के साथ आकाशवाणी की ओर से कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है और माननीय मुख्य अतिथि पधार चुके हैं। माननीय मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह अपना स्थान ग्रहण कर चुके, उनको पुष्प भेंट स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री प्रवीण कुमार पुष्प भेंट कर रहे हैं श्री अमित शाह जी को।
2: Well, the program has begun with the arrival of the Home Minister Shri Amit Shah. They have all taken the seats on the dais, and now we have the welcome address by the DG of BSF Shri Praveen Kumar. He walks to the podium to address the gathering.
0: आपको बताना चाहेंगे आज यहाँ सीमा सुरक्षा बल का 23वां अलंकरण समारोह एवं रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान जैसे गरिमामय और प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन आज विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल में किया गया। कुछ एक पलों में विधिवत स्वागत।

और फिलहाल आपको बता दें, सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजित आज का ये कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम है और आज उन वीर सीमा प्रहरियों के शौर्य और बलिदान को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने अपने पराक्रम से देश का गौरव विश्व पटल पर ऊंचा किया है। अनेक सीमा प्रहरियों ने वीरता के अमित कीर्तिमान स्थापित किए हैं और

0: The 23rd BSF Investiture Ceremony and the Rustamji Memorial Lecture is taking place today at the Vigyan Bhavan. And with the arrival of the Home Minister, Shri Amit Shah, the program has just begun and he was presented with a bouquet. And now, the DG of the BSF, Shri Praveen Kumar, is at the desk addressing the gathering with a welcome address.
1: और संप्रभुता की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए हैं. उनका साहस, समर्पण और बलिदान हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है. हम आज अपने बल के संस्थापक श्री के एफ रुस्तम जी की गौरवशाली विरासत को भी श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं, जिनकी दूरदृष्टि और सफल नेतृत्व ने इस महान बल की मजबूत नींव रखी. पिछले 6 दशकों में सीमा सुरक्षा बल ने विश्व के श्रेष्ठतम सीमा सुरक्षा बलों में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है. सीमा प्रबंधन, आतंकवादी रोधी अभियानों तथा आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में बीएसएफ ने अद्वितीय पेशेवर दक्षता का परिचय दिया है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमारे जवानों ने वीरता एवं कर्तव्य निष्ठा की सर्वोच्च परंपराओं को कायम रखते हुए 2 वीर चक्र एवं अनेक वीरता पदक अर्जित किए हैं. हमारी प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं: सुदृढ़ एवं व्यापक सीमा प्रबंधन, आधुनिक तकनीक से सुसज्जित सुरक्षा व्यवस्था, परिचालन तत्परता और जवानों का कल्याण. गत वर्ष सीमा सुरक्षा बल ने पश्चिमी एवं पूर्वी सीमाओं पर अनेक महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की तथा माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में नक्सल मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

0: है, बल्कि तकनीकी आधुनिकीकरण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। अत्याधुनिक निगरानी प्रणालियों, ड्रोन एवं एंटी ड्रोन तकनीक, थर्मल इमेजर तथा एकीकृत कमांड सिस्टम जैसी आधुनिक व्यवस्थाओं को भी प्रभावी रूप से अपनाया गया है। गत वर्ष BSF ने सीमा पार से भेजे गए 300 से अधिक ड्रोनों को निष्क्रिय कर मार गिराया है, जो उभरती सुरक्षा चुनौतियों के प्रति हमारी सतर्कता एवं सजगता का प्रमाण है। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं, आवास एवं कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जवानों और उनके परिवारों के जीवन स्तर एवं मनोबल को निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है। सीमा सुरक्षा बल ने खेलों में के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। पिछले एक वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 8 स्वर्ण सहित कुल 17 पदक तथा राष्ट्रीय खेलों में 149 पदक अर्जित किए हैं। यह अत्यंत गर्व का विषय है कि कल ही मात्र 24 घंटा पहले BSF की प्रथम सर्व महिला पर्वतारोहण टीम ने सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट फतह कर विश्व की सर्वोच्च चोटी पर तिरंगा एवं BSF का ध्वज फहराने का गौरव प्राप्त किया है। साथ ही BSF की पुरुष पर्वतारोहण टीम माउंट लोत्से अभियान पर अग्रसर है, जो बल की अदम्य साहस एवं उत्कृष्टता की भावना को प्रतिबिंबित करता है। यह वर्ष विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि सीमा सुरक्षा बल अपनी हीरक जयंती मना रहा है। सेवा, बलिदान और शौर्य के 60 गौरवशाली वर्ष। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों, मैराथनों एवं जनसंपर्क गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में BSF ने कश्मीर, जम्मू, अमृतसर एवं देहरादून में सफल मैराथनों का आयोजन किया, जो जनता के साथ बल के गहरे जुड़ाव एवं राष्ट्र सेवा की भावना को दर्शाता है। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विकसित भारत के लिए निर्धारित लक्ष्य को साकार करने हेतु BSF पूर्णतः प्रतिबद्ध है। हम माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी को भी आश्वस्त करते हैं कि सीमा की समस्त सीमा प्रहरी परिवार सीमा सुरक्षा बल को विश्व का सर्वश्रेष्ठ बॉर्डर गार्डिंग फोर्स बनाने के लिए कर्तव्यबद्ध एवं समर्पित है। अंत में मैं एक बार पुनः माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का सीमा सुरक्षा बल को निरंतर सहयोग, मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद।
1: महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री प्रवीण कुमार जी ने विधिवत स्वागत किया सभी अतिथिगणों का। और अब BSF डॉक्यूमेंट्री पर एक वीडियो प्रस्तुत किया जाएगा।
2: सुरक्षा बल देश ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है। यूं तो सीमा सुरक्षा बल की गौरवशाली यात्रा उत्कृष्ट सीमा प्रबंधन और अद्वितीय आंतरिक सुरक्षा क्षमता के साथ साथ आधुनिकतम तकनीकी दक्षताओं को एक छोटे से अंतराल में बयां कर पाना बेहद कठिन है, परंतु हमने इसके सारांश को एक छोटे से वृत्तचित्र के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिसे नाम दिया है सीमा और आंतरिक सुरक्षा के सजग प्रहरी सीमा सुरक्षा बल। तो प्रस्तुत है यह वृत्तचित्र।
3: वर्ष 1965 में स्थापना के साथ ही BSF ने राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व संभाला। स्थापना के मात्र 6 वर्षों के बाद संस्थापक महानिदेशक श्री KF रुस्तम जी के नेतृत्व में BSF ने 1971 के युद्ध में पश्चिमी और पूर्वी सीमा पर अदम्य साहस, उत्कृष्ट युद्ध कौशल एवं पराक्रम का परिचय दिया। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में BSF की अहम भूमिका रही है। बाद के वर्षों में सीमा सुरक्षा के साथ साथ BSF ने पंजाब और कश्मीर के आतंकवाद विरोधी अभियानों और पूर्वोत्तर भारत के प्रतिविद्रोहिता अभियानों में अप्रतिम योगदान दिया। कारगिल युद्ध के समय भी BSF के वीरों ने अग्रिम मोर्चों पर डटे रहकर अपनी बहादुरी सिद्ध की। भारत सरकार के 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत अभियान के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल करने में भी BSF की सक्रिय भागीदारी रही है। इन सभी अभियानों में अद्वितीय योगदान के लिए BSF ने अनेक वीरता पदक अर्जित किए। आज पश्चिमी सीमा पर हिमालय की बर्फीले व दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, तपते रेगिस्तान तथा गुजरात के विशाल रण जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों से जूझते हुए सीमा प्रहरियों के समक्ष

0: लगातार आतंकवाद, हथियारों एवं गोला बारूद की तस्करी, हीरोइन व अन्य मादक पदार्थों की तस्करी जैसी गंभीर चुनौतियां हैं। पूर्वी सीमा पर सीमांत क्षेत्रों में घनी आबादी, नदी नालों की बहुतायत, मानसूनी वन और उत्तर पूर्व की जटिल पहाड़ी श्रृंखलाएं भौगोलिक जटिलता प्रस्तुत करती हैं। पूर्व में सुंदरबन डेल्टा तथा पश्चिम में गुजरात के क्रीक जैसे दुर्गम जलीय सीमांत इलाकों में बीएसएफ की वाटर विंग के फ्लोटिंग बीओपी एवं अत्याधुनिक क्राफ्ट इन क्षेत्रों में प्रभावी निगरानी और सीमा सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। सीमा सुरक्षा के साथ साथ बीएसएफ आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी जैसे चुनावों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में भी पूरी जिम्मेदारी से योगदान देता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ के प्रहरियों ने अदम्य साहस, पराक्रम और सर्वोच्च समर्पण का परिचय दिया।
1: ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने हमारी बीएसएफ का भी अभूतपूर्व पराक्रम और अदम्य साहस देखा है। हमारी सीमाओं पर तैनात बीएसएफ के जाबाज सुरक्षा की अभेद चट्टान है।
0: अभियान में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर प्रहरियों की गाथाएं राष्ट्र की सामूहिक स्मृति में सदैव अमर रहेंगी। गृह मंत्रालय सदैव बीएसएफ के लिए मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत रहा है तथा बल के आधुनिकीकरण, परिचालन क्षमता और कल्याण संबंधी आवश्यकताओं को निरंतर सुदृढ़ कर रहा है।
2: और मैं सभी बल के जवानों को कहना चाहता हूँ, न केवल देश के प्रधानमंत्री, न केवल गृह मंत्री, समग्र देश की जनता आपकी वीरता को सैल्यूट करती है, आपकी दक्षता पर भरोसा करती है और आपकी प्राण के अंत तक देश की सुरक्षा करने की धगस से निश्चिंत होकर 12 महीना चैन की नींद सोती।
0: आधुनिकीकरण की दिशा में बीएसएफ अग्रसर है, जिसे स्मार्ट फेंस की व्यवस्था बखूबी रेखांकित करती है। यह फ्लडलाइट्स, ड्रोन आधारित निगरानी, रडार, फिडार, सीसीटीवी कैमरों और अन्य उपकरणों के समेकित उपयोग की व्यवस्था है। स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ साथ ड्रोन फॉरेंसिक्स के उपयोग में भी बीएसएफ ने नए प्रतिमान रचे हैं। सीमा प्रबंधन में तकनीकी नवाचारों का समावेश करने के लिए विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों से करार किए गए और किए जा रहे हैं। बीएसएफ की अश्रु गैस इकाई ने इस वर्ष अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे किए हैं। इस संस्था के उत्पाद आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य में अहम भूमिका निभाते हैं। खेलों के क्षेत्र में भी बीएसएफ ने उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की हैं। बीएसएफ में खेलों के प्रति नीतियों में आमूल परिवर्तन किए गए हैं। खिलाड़ियों के चयन, उनके प्रशिक्षण, खानपान, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा उन्नत प्रशिक्षण उपकरणों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। बीएसएफ के खिलाड़ी वर्ल्ड पुलिस गेम्स, पुलिस ड्यूटी मीट तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं और वुशु जैसे खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर देश एवं बल का नाम विश्व स्तर पर गौरवान्वित कर रहे हैं। बीएसएफ के राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र द्वारा प्रशिक्षित स्वदेशी नस्ल के श्वानों ने अनेक राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। प्रहरियों का कल्याण गृह मंत्रालय एवं बल प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। नए आवासीय परिसरों का निर्माण किया गया है तथा स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पारिवारिक कल्याण से संबंधित अनेक योजनाओं का सतत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की पेंशन एवं अन्य देयकों के त्वरित निस्तारण को भी बीएसएफ प्रशासन सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। बल की हीरक जयंती के अवसर पर वर्ष पर्यंत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 60 वर्षों की सेवा, बलिदान एवं सशक्तिकरण की गाथाओं को पिरोए हुए अनेक कार्यक्रम सीमावर्ती क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि पूरे देश में आयोजित किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र निर्माण में बीएसएफ के योगदानों को जन

0: जन तक पहुंचाना है। हीरक जयंती समारोह के उपलक्ष्य में बीएसएफ के महिला पर्वतारोही दल ने वंदे मातरम अभियान को सफल काम करते हुए 21 मई 2026 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर विजय पाई है।
1: कौशल, शेरिंग, रेबेका और मुनमुन, सबसे पहले तो समस्त बीएसएफ परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई।
0: विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर राष्ट्रगीत गाकर बीएसएफ टीम ने देश और बल के गौरवशाली इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है। आज इस अवसर पर प्रत्येक सीमा प्रहरी माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने और माननीय गृह मंत्री जी के सीमा सुरक्षा बल को विश्व का सर्वोत्तम सुरक्षा बल बनाने की परिकल्पना को साकार करने के लिए पुनः संकल्प लेता है। जय हिंद।
2: सुरक्षा बल ने अपने 6 दशकों में गौरवपूर्ण सफर में न केवल सीमाओं की रक्षा की है बल्कि देश की विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों में भी अद्वितीय योगदान दिया है। सीमा सुरक्षा बल ने स्वयं को विशिष्ट संगठन के रूप में स्थापित करते हुए देश की प्रथम रक्षा पंक्ति में होने का सम्मान भी अर्जित किया है। और अब सीमा प्रहरियों का अलंकरण समारोह मुख्य अतिथि श्री अमित शाह के कर कमलों से।
3: And now the awards are going to be given to all the people for the gallantry and for the wonderful work they have done for the country and what they have achieved. And they'll be receiving the awards from the Home Minister, Shri Amit Shah. And Shri Amit Shah has come to the front of the dais to give away the awards to everyone.
4: BSF ki 35 battalion ki ek tukdi एरिया डोमिनेशन के लिए आगे बढ़ रही थी, तभी नक्सलियों द्वारा बिछाई गई आईडी की चपेट में आकर उप निरीक्षक महेंद्र सिंह बुरी तरह जख्मी हो गए। परंतु अब इस बहादुर प्रहरी ने ना सिर्फ आखिरी सांस तक नक्सलियों से लोहा लिया बल्कि अपने साथियों को सुरक्षित बचाने में भी कामयाब रहे। अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम एवं उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता के लिए बहादुर उप निरीक्षक महेंद्र सिंह को मरणोपरांत वीरता पदक से अलंकृत किया गया। पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद उप निरीक्षक महेंद्र सिंह की बहादुर धर्मपत्नी श्रीमती राजवती।

आरक्षक रंजीत यादव 163 बटालियन मरणोपरांत। 6 जून 2023 मणिपुर के मैतेई एवं कुकी समुदाय के बीच खूनी संघर्ष के दौरान शांति बहाली के लिए तैनात 163 बटालियन की टुकड़ी पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया, जिससे टुकड़ी में शामिल आरक्षक रंजीत यादव बुरी तरह जख्मी हो गए, परंतु अपने बहते खून की परवाह किए बगैर बहादुर प्रहरी रंजीत यादव आखिरी सांस तक लड़ते रहे और उपद्रवियों को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन बहुत अधिक खून बह जाने के कारण अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। असीम शौर्य, पराक्रम, मारक क्षमता एवं उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता के लिए बहादुर प्रहरी रंजीत यादव को मरणोपरांत वीरता पदक से अलंकृत किया गया है। पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद आरक्षक रंजीत यादव की बहादुर धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या यादव।

आरक्षक नरेंद्र कुमार मरणोपरांत एवं श्री अशोक कुमार उप कमांडेंट 122 बटालियन 28 मई सन 2023 मणिपुर का मौर्य इलाका राज्य में कानून व्यवस्था कायम करने के मकसद से तैनात बीएसएफ की 122 बटालियन की एक टुकड़ी का नेतृत्व बहादुर अधिकारी श्री अशोक कुमार कर रहे हैं।

अचानक उग्र भीड़ ने आम नागरिकों पर हमला कर दिया। अमूल्य मानव जीवन की हिफाजत के लिए सीमा प्रहरियों ने फौरन जवाबी कार्रवाई की और आगे बढ़ते हुए उपद्रवियों का डटकर मुकाबला किया। परंतु इस दौरान सीमा प्रहरियों की टीम में शामिल बहादुर आरक्षक नरेंद्र कुमार बुरी तरह जख्मी हो गए, लेकिन आखिरी दम तक डटे रहे और कर्तव्य की बलिद्वेदी

देवियों तथा सज्जनों, सीमा सुरक्षा बल का गौरवशाली इतिहास असंख्य वीर गाथाओं से भरा पड़ा है। उसी गौरवशाली इतिहास में गत वर्ष एक और नया अध्याय लिखा गया, जिसे हम सभी ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जानते हैं। श्री अभिषेक श्रीवास्तव, सहायक कमांडेंट 7वीं बटालियन, 9 और 10 मई 2025 की रात जम्मू सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगी सीमा चौकी खरकोला। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा पार से लगातार हो रही गोलीबारी के बीच बहादुर अधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव ने नेतृत्व संभाले रखा और अपनी जान पर खेलकर अपने घायल साथियों को भी सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। शौर्य, पराक्रम, नेतृत्व एवं बहादुरी की अद्भुत मिसाल कायम करने वाले इस बहादुर अधिकारी को वीरता पदक से अलंकृत किया गया है। श्री अभिषेक श्रीवास्तव, सहायक कमांडेंट।

श्री रविंद्र राठौर उप कमांडेंट, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राजस्थान के श्रीगंगानगर सेक्टर से लगी पाकिस्तानी सीमा के रास्ते भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक पाक रेंजर को अपनी जान पर खेलकर गिरफ्त में लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उत्पन्न हुए सामरिक व पेचीदा कूटनीतिक परिदृश्य को बदल देने वाले बहादुर अधिकारी श्री रविंद्र राठौर उप कमांडेंट को उनके अदम्य साहस, शौर्य तथा सूझबूझ के लिए वीरता पदक से अलंकृत किया गया। श्री रविंद्र राठौर उप कमांडेंट।

श्री आलोक नेगी, सहायक कमांडेंट 53वीं बटालियन। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नियंत्रण रेखा पर दुश्मन द्वारा की गई तीव्र एवं लगातार गोलाबारी के बीच 53वीं बटालियन के सहायक कमांडेंट श्री आलोक नेगी ने अत्यंत विषम परिस्थितियों में अग्रिम चौकियों पर तैनात रहते हुए अपने जवानों का मनोबल बनाए रखा और अपनी प्रभावी कार्रवाई से शत्रु की गतिविधियों को निष्फल किया। साहसिक नेतृत्व, वीरता, पराक्रम और असीम शौर्य के लिए इस बहादुर अधिकारी को वीरता पदक से अलंकृत किया गया है। श्री आलोक नेगी, सहायक कमांडेंट।

मुख्य आरक्षक नरबू शेरपा 175 बटालियन 20 अप्रैल सन 2023 भारत बांग्लादेश सीमा पर रात के लगभग 9:30 बजे पेट्रोलिंग के दौरान मुख्य आरक्षक नरबू शेरपा ने टेंगोन नदी के पुल के समीप कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को देख जैसे ही ललकारा कि भारी संख्या में बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। बुरी तरह घायल होने के बावजूद बहादुर सीमा प्रहरी नरबू शेरपा ने वीरता के साथ मुकाबला करते हुए एक तस्कर को धर दबोचा। शौर्य पराक्रम एवं वीरता की पराकाष्ठा रचते हुए मातृभूमि की रक्षा सुनिश्चित करने वाले हेड कांस्टेबल नरबू शेरपा को राष्ट्र द्वारा वीरता पदक से अलंकृत किया गया। मुख्य आरक्षक नरबू शेरपा।

और अब सराहनीय सेवा पदक उन कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों व सीमा प्रहरियों के लिए जिनकी लंबी बेदाग और सराहनीय सेवाओं के फलस्वरूप राष्ट्र द्वारा सराहनीय सेवा पदक से

और अब विशेष संक्रिया यानी स्पेशल ऑपरेशंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु केंद्रीय गृह मंत्री उत्कृष्टता पदक श्री अंकित गोयल आईपीएस उप महानिरीक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय गुरदासपुर 12 नवंबर सन 2021 महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र गढ़चिरौली में एसपी के रूप में तैनाती के दौरान श्री अंकित गोयल ने विश्वस्त सूचना के आधार पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसमें नक्सलियों और कमांडोज के बीच 13 से 16 नवंबर 2021 तक चले मुठभेड़ में 27 खूंखार नक्सली मारे गए तथा भारी मात्रा में असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया। वीरता शौर्य एवं रण कौशल में माहिर इस बहादुर अधिकारी को स्पेशल ऑपरेशंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए केंद्रीय गृह मंत्री उत्कृष्टता पदक से अलंकृत किया गया है। श्री अंकित गोयल उप महानिरीक्षक।

0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध है कि वह हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करने की कृपा करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं
1: नाउ श्री अमित शाह, द गेस्ट ऑफ ऑनर ऑफ द ईयर। ही वॉक्स टू द पोडियम।
2: आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री प्रवीण कुमार जी, श्री तपन डेका जी निर्देशक आसूचना ब्यूरो, श्री राजेंद्र कुमार जी सचिव सीमा प्रबंधन गृह मंत्रालय, श्री महेश कुमार अग्रवाल विशेष महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल, और आज इस सभागार में उपस्थित 43 वो बहादुर सीमा सुरक्षा बल के जवान जिनको अलग अलग प्रकार के पदक आज प्राप्त हुए हैं। सीमा सुरक्षा बल के सभी पूर्व डीजी जिन्होंने अपने अपने समय में सीमा सुरक्षा बल को और मजबूत करने में सराहनीय योगदान दिया है, और भारत सरकार के सभी उपस्थित अधिकारीगण, अलग अलग सीएपीएफ के डीजी और प्यारे जवानों, सबसे पहले मैं आज आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यह अलंकरण समारोह एक प्रकार से अधिक निष्ठा, कर्तव्य परायणता और राष्ट्र के प्रति पूर्ण आपका जो समर्पण है इसका प्रतीक है। सबसे पहले मैं स्थापना से अब तक 65 से 2026 तक सीमा सुरक्षा बल के जिन जवानों ने अपनी अप्रतिम देशभक्ति और कर्तव्य परायणता का प्रदर्शन करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, वो सभी 2000 से ज्यादा जवानों को मन पूर्वक श्रद्धांजलि और आदर पूर्वक नमन करना चाहता हूं।

मित्रों, आज मेरे लिए भी एक प्रकार से गौरव का विषय है कि विश्व के सबसे बड़े सीमा सुरक्षा बल के अलंकरण समारोह और उसके स्थापक श्री रुस्तम जी की स्मृति में स्मृति व्याख्यान में उपस्थित होने का मुझे मौका मिला है। मैं एक प्रकार से तीसरी बार इस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहा हूं। आज हम सब जानते हैं कि 65 के युद्ध के बाद सीमा सुरक्षा व्यवस्था में जो गैप्स थे, जो कमियां थी, उसका एक गहन अभ्यास करने के बाद एक ऐसे बल की उपस्थिति महसूस की गई जो शांति काल में भी 24 घंटा हमारी सीमाओं की सुरक्षा करे। और उस वक्त पद्म विभूषण KF रुस्तम जी के नेतृत्व में BSF की स्थापना हुई। और जब से BSF की स्थापना हुई है, सैन्य BSF ने न केवल गृह मंत्रालय, पूरे देश को सीमाओं की सुरक्षा के बारे में सुनिश्चित सुरक्षा कर निश्चिंत करने का काम सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने किया है। इसको पूरा देश इसकी भूरी प्रशंसा करता है। 65 से 74 तक श्री रुस्तम जी ने सीमा सुरक्षा बल का एक प्रकार से नेतृत्व भी किया, नींव डालने का काम भी किया और सीमा सुरक्षा बल का कल्चर को बनाने का भी काम किया। कोई भी संस्था में संस्थापक शुरुआत किस रास्ते पर करता है, इसका बड़ा महत्व होता है। और मुझे आज कहने में कोई संकोच नहीं है कि श्रीमान रुस्तम जी ने जो नींव डालने का काम किया है, वो नींव पर आज सुरक्षा के क्षेत्र में एक भव्य इमारत बनाने का काम BSF ने किया है, जो देश के लिए अति गौरव की बात है। आज यहां पर वीरता पदक, सराहनीय सेवा पदक और अभियानों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गृह मंत्री पदक भी हमारे जवानों ने जवानों को दिया गया है। ये कोई सीमा सुरक्षा बल के लिए नई बात नहीं है। मैं आगे बताऊंगा, ढेर सारे पदक आपने आपके शौर्य और पराक्रम से अर्जित किए हैं और बल की शान हमेशा बढ़ाई है। मगर सबसे पहले मैं अभी BSF की महिला टीम द्वारा माउंट एवरेस्ट पर फतह करने की एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है, इसलिए उस टीम के सभी सदस्यों को और सभी सीमा सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अभी हमने दृश्य देखा, एवरेस्ट की चोटी पर जब वंदे मातरम गाया जाता है तो यहां दिल्ली के हॉल में बैठकर भी हमारे मन के अंदर बहुत आनंद और संतोष की अनुभूति होती है। मैं उन महिला जवानों को, उनके अनुभव को यहां बैठकर महसूस करता था कि कितना रोमांच हुआ होगा जब आसमान को छूने वाली चोटी पर वंदे मातरम का वो गान करते होंगे और वो भी वंदे मातरम के 150वीं जयंती के वर्ष में एक गान गाने का सौभाग्य इनको मिला है। मैं फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्र, अटल जी के समय पर एक बॉर्डर एक बल ये सिद्धांत तय किया गया और उसके बाद BSF को देश की सबसे दो कठिन सीमाओं का काम दिया गया, पाकिस्तान से सटी हुई

1289 किलोमीटर की सीमा और बांग्लादेश से सटी हुई 4100 किलोमीटर की सीमा। हम सब जानते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से दोनों सीमाएं वल्नरेबल भी है और हमारे लिए चिंता का कारण भी है, परंतु उस वक्त भी सोच समझकर ही देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने निर्णय किया होगा कि जो सबसे कठिन काम है वो बीएसएफ को दे दीजिए, बीएसएफ कभी दो कदम पीछे नहीं हटेगी। और मुझे कहते हुए आनंद है कि अब तक ये बॉर्डर, दो बॉर्डर को आपके संभालने के बाद जितनी भी चुनौती आई इसमें पराजय का मुंह दुश्मन को ही देखना पड़ा है, कभी आपने भारत का सर नीचे नहीं होने दिया है। और आज हम देखते हैं कि कई प्रकार की नई चुनौतियां सीमा सुरक्षा में हमारे सामने खड़ी हुई है। अवैध घुसपैठ, नारकोटिक्स की तस्करी, गौ तस्करी, फेक करेंसी का चलन, संगठित अपराध, ड्रोन से हथियारों की और नशे की तस्करी, कई प्रकार की चुनौतियां बीएसएफ के सामने हैं। मगर बीएसएफ ने लगातार इसके लिए किसी न किसी प्रकार से इन चुनौतियों का सामना करने का सुनियोजित प्रयास किया है। और मैं आगे पर 60वें साल में भारत सरकार क्या करने वाली है वो भी बताऊंगा, मगर आपने, आपके पास जो सीमित संसाधन थे वो सीमित संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए इस सभी चुनौतियों के साथ दो दो हाथ कर देश की सुरक्षा करने का काम किया है, जिससे हमें सुनिश्चितता है। आपकी भूमिका अब आने वाले दिनों में और ज्यादा अधिक इंटीग्रेटेड भी करनी पड़ेगी और व्यापक भी करनी पड़ेगी। अब हम केवल पारंपरिक तरीके से सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते। हमने राज्य पुलिस, सशस्त्र बल, अन्य सशस्त्र बल, एनसीबी, इंटेलिजेंस एजेंसियां और राज्य के प्रशासन, इस सबके साथ मिलकर सुरक्षा की ग्रिड को मजबूत करना पड़ेगा, तभी जाकर हम ये नई चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। और एक, हमने सीमा सुरक्षा को एक आइसोलेटेड काम के रूप में देखने की जगह एक टेरिटोरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में देखना पड़ेगा, तभी जाकर हमें सारी चुनौतियों को पार करने में सफल होंगे। सबसे महत्वपूर्ण है कि हमने आगे के खतरों को भी देखना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि देश के उस पार से कृत्रिम तरीके से जनसंख्यिकी में जो बदलाव किया जा रहा है घुसपैठ के द्वारा, उसको रोकने के लिए सतर्क और सजग रहना पड़ेगा। अर्थतंत्र पर नार्कोटिक्स और फेक करेंसी के हमले से जिस प्रकार से हमारे अर्थतंत्र को खोखला करने का प्रयास हो रहा है, इसके लिए भी हमने सतर्क रहना पड़ेगा। साइबर चुनौतियां, हाइब्रिड वॉरफेयर और ड्रोन के खतरे, ये सभी के लिए एक नई रणनीति लेकर आना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि सीमा सुरक्षा बल ये करने में कभी पीछे नहीं हटेगा। मित्रों, आज सीमा सुरक्षा बल के काम का व्याप देखते हैं तो सियाचिन और कश्मीर की बर्फीली पहाड़ियां, कुपवाड़ा, केरन, उरी जैसे दुर्गम क्षेत्र, राजस्थान का रण, कच्छ का छोटा रण, सरक्रिक के दलदली नाले, सुंदरवन के घने जंगल और झरने, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की कठिन पूर्वी सीमाएं और ब्रह्मपुत्र से जुड़े हुए कठिन

संवेदनशील नदी क्षेत्र भी है और इस सभी के बीच में सीमा सुरक्षा बल डटा हुआ है और इसी के कारण 1965 में महज 25 बटालियनों से अल्प संसाधनों के साथ शुरू हुआ सीमा सुरक्षा बल आज 2,70,000 की नफरी के साथ विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल बना है। ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। इस 8 साल की जर्नी में 1 महावीर चक्र, 6 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र, 13 शौर्य चक्र, 47 सेना मेडल और 1,262 वीरता के लिए पुलिस पदक सीमा सुरक्षा बल ने अपने अदम्य साहस, वीरता और समर्पण के कारण अर्जित किए हैं। वो हम सब के लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय है। मित्रों, 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद हमारी रक्षा नीति और सीमाओं की सुरक्षा के बारे में हमारे नजरिए में हमने आमूलचूल परिवर्तन किया है। पाकिस्तान के द्वारा किए गए 3 हमले, हमने इसका जवाब दिया है, चाहे उरी हो, पुलवामा हो या पहलगांव हो। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक कर, एक बार एयर स्ट्राइक कर और एक बार ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के अंदर इनके मर्म स्थान पर प्रहार कर हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। वो जमाना चला गया जब आतंकी हमलों के बाद वार्ताएं हुआ करती थी, नक्सलवादी बेखौफ होकर जन नरसंहार करते थे और सरकारें वार्ता करती थी। हमने हमारे सुरक्षा परिदृश्य को भारत के संविधान के स्पिरिट से मजबूत बनाने का काम किया है और ये सब एक प्रकार से एक नई डिफेंस डॉक्ट्रिंग का एक प्रकार से घोषणा है और मैं मानता हूं इसमें सीमा सुरक्षा बल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर में बहादुरी दिखाने वाले हमारे जवानों को हमने यहां पर अलंकरण से नवाजा है, मगर मित्रों, आने वाले दिनों में भारत सरकार ने सुनिश्चित किया है कि 60वां वर्ष हम सीमा सुरक्षा बल को पूर्णतया एक डिजाइन के तहत ये 6000 किलोमीटर लंबी सीमा पर एक समान स्मार्ट बॉर्डर बनाने में तकनीकी सहायता भारत सरकार करेगी, भारत सरकार का गृह मंत्रालय करेगा। इसके लिए छुटपुट कई सारे प्रयोग सीमा सुरक्षा बल ने कई सालों से किए, ये सारों का संकलन करते हुए एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले 1 साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा और मैं मानता हूं ये लॉन्च होने के बाद सीमा सुरक्षा बल का काम काफी सरल भी होगा और मजबूत भी होगा, क्योंकि जब तकनीक आगे बढ़ रही हो तब हमने भी सुरक्षा में तकनीक का उपयोग करना पड़ेगा। इसके हर कंपोनेंट के लिए गृह मंत्रालय ने अनेक प्रकार की कवायद की है और लगभग एक इन टोटो स्मार्ट बॉर्डर के काम में हम बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। मैं सीमा सुरक्षा बल के जवानों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि ये 60

इस साल में ही हम स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट को लॉन्च कर बांग्लादेश और पाकिस्तान की पूरी सीमा को हम अभेद करेंगे और इससे आपके काम में आपको बहुत बड़ी तकनीकी सहायता उपलब्ध हो जाएगी। तकनीकी सहायता के बाद आपका पराक्रम, आपका शौर्य, आपका समर्पण, आपकी देशभक्ति के साथ साथ एक मजबूत सपोर्ट तकनीक का भी आपके पास उपलब्ध होगा, जिससे हम दोनों सीमाओं को सुरक्षित कर देंगे। मैं आज सीमा सुरक्षा बल के कार्यक्रम में आया हूं, तब घुसपैठ पर भी बात करना चाहता हूं। भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से, निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। अब सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी है कि हम न केवल सीमाओं की सुरक्षा करें, गांव के पटवारी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, गांव के थाने के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के साथ, डीडीओ के साथ, डिस्ट्रिक्ट एसपी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए। कौन नया घुसपैठिया आया है, क्या रूट है, कहां से तस्करी हो रही है, कहां से गौ तस्करी हो रही है, ये सारे रूटों को चून थून कर बंद करना, समाप्त करना ये बीएसएफ की जिम्मेदारी है। आने वाले दिनों में तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्रालय में हम एक बैठक भी करने वाले हैं और घुसपैठ की दृष्टि से एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड हम बनाने वाले हैं। मगर मेरा सीमा सुरक्षा बल से भी आग्रह है कि आप भी केवल सीमा की जगह अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लेकर पटवारी तक, एसपी से लेकर पुलिस के थाने के इंचार्ज तक हमारा संवाद होना चाहिए और इनसे मिली हुई सारी इंफॉर्मेशन का उपयोग कर घुसपैठियों को निकालने की एक सुचारू व्यवस्था भी बनानी चाहिए, घुसपैठ को रोकने की भी व्यवस्था बनानी चाहिए। और मैं मानता हूं कि अब समय आ गया है कि सालों से जो घुसपैठ का कार्यक्रम बेरोक टोक चलता है, उसको हमें रोक देना पड़ेगा। और ये आप सबने कर दिखाया है। मैं कई सारे रिटायर्ड पुलिस अफसरों ने मुझे कहा था कि नक्सल मुक्त अभियान हाथ में मत लीजिए, हो नहीं सकता, इनसे संवाद कीजिए। मुझे भी कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कहा था, मगर भारत सरकार अड़ग रही। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, राज्य की पुलिसें सब लगे रहे और 5 दशक पुरानी समस्या आज देखते देखते देखते समाप्त होकर भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। और ये हमारे जवानों ने कर दिखाया है कि समस्या को संभाल कर रखना, कंट्रोल में रखना, ये सुरक्षा का दृष्टिकोण नहीं हो सकता। समस्या को मूल समेत समाप्त करना ही सुरक्षा का दृष्टिकोण हो सकता है और वो आज सिद्ध हो चुका है। और अब घुसपैठ के लिए भी बीएसएफ ने इसी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वाइब्रेंट विलेज 1, वाइब्रेंट विलेज 2 आपके समर्थन में एक लोकतांत्रिक तरीके से चलाया गया विकास का कार्यक्रम है। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में 15 किलोमीटर तक जो अधिकार क्षेत्र था उसको बढ़ाकर हमने 50 किलोमीटर किया है और अब बंगाल सरकार ने भी जितनी भी भूमि देनी थी वो सारा देने का निर्णय कर चुके हैं, कुछ तो हैंडओवर भी कर दिए हैं। अब हमारे पास काम है कि इसको हम आगे बढ़ाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत की है।

0: ही दिनों में इसकी घोषणा हो जाएगी, इसका चार्टर भी बन जाएगा, हाई पावर डेमोग्राफी मिशन भी चिन्हित करे हुए पॉइंट्स को बीएसएफ के और सीमा सुरक्षा बल के जवानों के लिए उपलब्ध कराएगा। इस सब चीजों का उपयोग करते हुए हमें आने वाले दिनों में एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड दोनों देशों की सीमाओं के सीमा पर बनानी पड़ेगी और इसके लिए एक बहुत बड़ा अभियान भी चलाना पड़ेगा। मित्रों, जिस तरह से मैंने किया कहा कि 60वां वर्ष एक स्मार्ट बॉर्डर बनाने का वर्ष है, उसी तरह से 60वां वर्ष बीएसएफ के जवानों के कल्याण का भी वर्ष है। 2 महीने के अंदर ही नरेंद्र मोदी सरकार बीएसएफ और सभी सीएपीएफ के जवानों के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लेकर आएगी, जिससे हमारे जवान सुनिश्चित होकर सीमाओं की सुरक्षा करें, उनके परिवारजनों की चिंता भारत सरकार का गृह मंत्रालय करे। इस प्रकार का एक कार्यक्रम भी हम आने वाले 1 साल के अंदर लेकर आएंगे। हमने एक बहुत बड़ा अभियान कुछ समय के बाद नारकोटिक्स के खिलाफ भी देश में चलाने जा रहे हैं, इसमें भी सीमा सुरक्षा बल की बहुत अहम भूमिका रहने वाली है और सीमा सुरक्षा बल की सतर्कता से दोनों ओर की सूचना एकत्रित कर नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई में भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। मित्रों, आने वाले 3-4 साल एक प्रकार से सीमा की सुरक्षा में संपूर्ण बदलाव के 4 साल रहने वाले हैं और हमने इसके लिए अभी से कमर कसनी है, मन से तैयारी करनी है। तकनीक की सुरक्षा आने से जवानों की जिम्मेदारी कम नहीं होती, तकनीकी सुरक्षा का सपोर्ट आने से जवानों की जिम्मेदारी बढ़ती है। ये भाव के साथ तकनीक को आत्मसात करते हुए, स्थानीय लोगों से संवाद प्रस्थापित करते हुए, स्थानीय प्रशासन से तालमेल बढ़ाते हुए हम सब एक बार लक्ष्य तय कर ले कि इस देश को घुसपैठ से मुक्त करना है और हमारी जनसांख्यिकी के में कृत्रिम परिवर्तन को हम रोकने में सफल हो, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कठिन काम है। मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि आने वाले दिनों में जो अभियान चलने वाला है उसमें आपका पूर्ण मनोयोग के साथ सहयोग मिलेगा और हम एक नई सुरक्षा ग्रिड का निर्माण पश्चिमी और पूर्वी दोनों सीमाओं पर बनाने में सफल होंगे। फिर से एक बार श्रीमान रुस्तम जी को मन पूर्वक नमन भी करना चाहता हूं और उनके काम की सराहना भी करना चाहता हूं और जिन जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है वो सबको श्रद्धांजलि देकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम।
1: भविष्य में स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट लॉन्च होगा और मजबूत सुरक्षा ग्रिड के लिए अभियान चलेगा और अभियान में सहयोग की भी आवश्यकता है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह अपने विचारों के साथ।
2: जो महोदय के हृदय में इस दिवस की याद को हमेशा संजोए रखेगा।
1: और अब सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक श्री प्रवीण कुमार द्वारा मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। स्मृति चिन्ह।
2: धन्यवाद श्रीमान। और
3: हेलो एवरीवन, टू मनीष अग्रवाल गिवन टू द होम मिनिस्टर बाय द डीजी ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स श्री प्रवीण कुमार।
1: विशेष महानिदेशक द्वारा धन्यवाद।
4: माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार, श्री तपन डेका डायरेक्टर आसूचना ब्यूरो, श्री राजेंद्र कुमार सचिव सीमा प्रबंधन, श्री प्रवीण कुमार महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, सभागार में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, हमारे मीडिया के प्रतिनिधिगण, आज रुस्तम जी स्मृति

0: व्याख्यान 2026 के इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप सभी की उपस्थिति ने इस आयोजन को अत्यंत सार्थक और गरिमामयी बना दिया है। आपके सानिध्य और समय के लिए मैं सीमा सुरक्षा बल परिवार की ओर से आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री अमित शाह जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। मान्यवर, आपने अत्यंत व्यस्तता के बीच इस कार्यक्रम के लिए समय निकालकर न केवल हमारा मान बढ़ाया है, बल्कि यह दर्शाया है कि सीमा प्रहरियों के प्रति आपका स्नेह, सम्मान और विश्वास अटूट है, जो कि हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। आपकी गरिमामयी उपस्थिति और प्रेरणादायी शब्दों ने हम सभी का उत्साह बढ़ाया है तथा हमें नई ऊर्जा प्रदान की है। हम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ उन्हें अपने जीवन में अपनाते हुए अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी से पालन करने का संकल्प करते हैं। सीमा सुरक्षा बल परिवार अपने सभी विशिष्ट अतिथियों का भी हार्दिक आभार प्रकट करता है। आपके निरंतर सहयोग और विश्वास ने हमें सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। हमें आशा है कि भविष्य में भी आपका स्नेह और मार्गदर्शन यूं ही बना रहेगा। मैं मीडिया के यहां उपस्थित प्रतिनिधियों का भी विशेष धन्यवाद करता हूं। मैं आयोजन समिति के समस्त अधिकारियों एवं कर्मियों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस व्याख्यान के सफल आयोजन में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। धन्यवाद। जय हिंद।
1: श्री महेश अग्रवाल, स्पेशल डीजी ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। एंड नाउ दिस विल बी फॉलोड बाय द राष्ट्रीय गीत विच विल बी परफॉर्मड बाय
2: सीमा सुरक्षा बल अलंकरण समारोह एवं रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान। सिर्फ सीमा सुरक्षा बल ही नहीं, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र का समारोह है। राष्ट्रीय महत्व के इस विशेष अवसर पर अब समय है एक ही क्रम में पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम एवं तत्पश्चात राष्ट्रगान जन गण मन में शामिल होने का, जिसे प्रस्तुत करेंगे भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से आए युवा कलाकार।

0: come to the end of the 23rd investiture ceremony of the Border Security Force. And, well, the last two items, the national song and the national anthem. And with that, we see the Home Minister making exit from the plenary hall. And it was a wonderful occasion. People, I'm sure, are really going to cherish this all their life. All the members of the Border Security Force who have been here. And it's been a wonderful experience, a wonderful message on the Rustam Ji Memorial Speech lecture by the Home Minister, Shri Amit Shah.
1: आज का ये अलंकरण समारोह साहस, समर्पण और राष्ट्र सेवा की गौरवपूर्ण परंपरा का प्रतीक है। हम उन वीर जवानों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य को हमेशा सर्वोपरि रखा। सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजित आज के कार्यक्रम में न केवल हमारे वीर जवानों के उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित किया, बल्कि हमें राष्ट्र सेवा के मूल्यों और अधिक गहराई से समझने की प्रेरणा भी प्रदान की। इन ऐतिहासिक क्षणों को समेटे मैं प्रीति मोहन अपने साथी कॉमेंटेटर डी एंड्रयू, ओबी इंचार्ज, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव वी के तोमर, इंजीनियरिंग स्टाफ अशोक कुमार मिश्रा, कमल सिंह, हेमराज मीणा और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलती हूं। नमस्कार।
2: अभी आप नई दिल्ली के विज्ञान भवन से सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के 23वें अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे प्रीति मोहन और डी एंड्रयू। ये आकाशवाणी है।

0: பெயர் ஆந்தன்.
1: पुराने लोग नया हौसला तो क्या देंगे, पुराने लोग नया हौसला तो क्या देंगे, मगर बुजुर्गों से मिलते रहो दुआ देंगे। डॉक्टर अख्तर नज़मी का यह शेर जैसे एक बड़े सच का दस्तावेज़ है। आप कितने भी थके हों, हारे बूझे या टूटे हों, बस चंद लम्हों के लिए उन दरख्तों की छाँव में बैठ जाएं जिन्हें हम अपने बुजुर्ग कहते हैं, तो सारी मसलों का काफूर होना तय जानिए। असर बुजुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है, असर बुजुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है, पुरानी नदियों का मीठा पानी नए समंदर से झांकता है। दुआ कीजिए कि ऐसे सायादार दरख्त हमेशा तने और बने रहें, ताकि हम ताउम्र तेज धूप के बावजूद उनकी ठंडी छाँव में बैठ सकें। और आज यानी शुक्रवार को हम भी यही कोशिश करते हैं कि घर आंगन के इन मजबूत और घने सायों की छाँव में अपना समय बिताएं, एक कदम बुजुर्गों की जानिब उठाएं। नमस्कार श्रोताओं, 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक कदम बुजुर्गों की ओर। साथ ही आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल यानी 366.3 मीटर पर भी। दोस्तों, आज के कार्यक्रम का ये सफर आप तय करेंगे अपनी रेडियो हम सफर सोनाली के साथ।
2: आ जाऊं

0: जी हाँ, एक दिन क्यों, आज आइए हो ना। शुक्रवार के दिन आपके साथ लेकर कार्यक्रम एक कदम बुजुर्गों की ओर। और ये गाना आप सुन रहे थे फिल्म बसीरा से, और गाया था आशा भोसले ने। दोस्तों, आकाशवाणी अपनी स्थापना के 90 वर्ष पूरा कर रहा है, और इसी उपलक्ष्य में प्रतिदिन हम आपको इस प्रतिष्ठित संस्था के गौरवमय इतिहास से जुड़ी विशेष बातें बता रहे हैं। इसी तारतम्य में आज बात उस ऐतिहासिक क्षण की, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आकाशवाणी भवन पहुंचे थे। भारतीय जनमानस में रेडियो केवल सूचना का माध्यम नहीं रहा, बल्कि भावनाओं, विचारों और देश की चेतना से जुड़ा एक सशक्त स्वर भी रहा है। आकाशवाणी के इतिहास में 12 नवंबर 1947 का दिन विशेष महत्व रखता है, जब महात्मा गांधी पहली और एकमात्र बार आकाशवाणी भवन पहुंचे थे। दिल्ली स्थित आकाशवाणी केंद्र में उस दिन बापू ने देशवासियों को संबोधित किया था। गांधी जी का संदेश शांति, सौहार्द और मानवीय एकता का संदेश बनकर प्रसारित हुआ। आकाशवाणी में बापू के इसी ऐतिहासिक आगमन की स्मृति में हर वर्ष लोक प्रसारक दिवस मनाया जाता है। विशेष बात यह है दोस्तों कि जिस स्टूडियो में महात्मा गांधी ने देशवासियों को संबोधित किया था ना, उसे आज आकाशवाणी भवन दिल्ली में बापू स्टूडियो के नाम से जाना जाता है। ये दिन केवल एक ऐतिहासिक घटना की याद नहीं, बल्कि जनसंचार के उस उद्देश्य की भी याद दिलाता है, जहाँ माध्यम का केंद्र समाज और जनता होती है।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं, या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक कदम बुजुर्गों की ओर, 100.1 MHz FM गोल्ड पर, और हम बात कर रहे थे आकाशवाणी की। आकाशवाणी यानी रेडियो, हमारा अपना रेडियो। और अगर आपने कभी गौर किया हो, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे गाने हुए हैं जो कहाँ पर प्रसारित किए गए हैं, रेडियो पर। तो खैर, सारे गाने ही प्रसारित किए गए, पर आपको पता है बहुत से गानों का फिल्मांकन भी ऐसी जगह पर किया गया है जो स्टूडियो है, और जहाँ पर गाने बाकायदा रेडियो में बज रहे हैं, इस तरह से फिल्म में दिखाया गया है। ऐसे बहुत से गाने हैं, लेकिन आज हम जो गाना लेकर आए हैं वो है फिल्म अभिमान का। आइए सुनते हैं ये लता मंगेशकर जी की आवाज़ में ये गीत।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

दोस्तों, बढ़ती उम्र केवल शारीरिक बदलाव ही नहीं लगती, बल्कि कई बार अकेलापन, स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां और सामाजिक असुरक्षा जैसी परिस्थितियां भी हमारे सामने लेकर आती है। ऐसे समय में वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान, सुरक्षा और सहारा मिलना बेहद आवश्यक हो जाता है। इसी उद्देश्य से ना भारत सरकार ने अटल वयो अभ्युदय योजना शुरू की है। ये योजना जो है ना, ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है और इसका उद्देश्य जो है ना दोस्तों, वो है वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को अधिक सुरक्षित, सम्मानजनक और सहज बनाना। इस योजना के अंतर्गत आपको बता दें, वृद्धाश्रम सहायता दी जाती है, डे केयर सेवाएं, स्वास्थ्य देखभाल, वरिष्ठ नागरिकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम और जरूरतमंद बुजुर्गों को सहायता उपलब्ध कराने का भी प्रयास इस योजना में किया जाता है। अटल वयो अभ्युदय योजना जो है ना, ये केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि उस भावना का प्रतीक है जो यह याद दिलाती है कि समाज की जड़ें उतनी ही मजबूत होती हैं जितना सम्मान वो अपने बुजुर्गों को देता है। जी हाँ, अटल वयो जो ये योजना है, आप इसको जरूर

जरूर इसका लाभ उठाएं। अटल वयो अभ्युदय योजना आप लोगों के लिए ही है और अपने आसपास के बुजुर्गों को भी इस बाबत आप जानकारियां जरूर उपलब्ध कराएं और इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप और ज्यादा इस योजना के बारे में जान सकते हैं।

कछम तछम तक तक लाते सिखा लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गति तुमंग था खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी।

0: अशोक कुमार की आवाज़ में आपने ये गीत सुना, साथ था आशा भोसले का और फिल्म थी खूबसूरत।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
2: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
1: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
2: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर।
0: जी हाँ दोस्तों, ये विशेष कार्यक्रम सुनना न भूलिएगा हर दिन। और आप ये कार्यक्रम जो भी सुन रहे हैं, ये है एक कदम बुजुर्गों की ओर और मैं हूँ आपके साथ आपके रेडियो हम सफर सोनाली।

हम बात कर रहे हैं बुजुर्गों की। अब देखिए दोस्तों, आप और मैं हमेशा इस माध्यम के जरिए बात करते हैं, और आपकी बातें हम तक कैसे पहुंचती हैं? हम तक पहुंचती हैं आपके ईमेल के जरिए, और ईमेल आईडी हमारा क्या है, वो है fmgoldga@gmail.com। तो दोस्तों, आपकी बातों का, आपकी राय का, आपके मशवरों का, आपके कमेंट्स का इंतज़ार हम लगातार करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कार्यक्रम एक कदम बुजुर्गों की ओर। वैसे भी जाने माने उपन्यासकार ऑस्कर वाइल्ड है ना, वो हमेशा कहते हैं कि बुढ़ापे की सच्ची त्रासदी ये नहीं है कि हम बूढ़े हो जाते हैं, बल्कि बुढ़ापे की सच्ची सुंदरता ये है कि हमारी आत्मा जवान ही रहती है। वैसे भी उम्र मन की बात है, शरीर की नहीं। अगर आप परवाह नहीं करते तो उम्र का कोई महत्व नहीं। हमारा मानना है कि जीवन का दूसरा भाग पहले भाग से बेहतर होता है। पहला भाग जीवन जीने के तरीके खोजने में व्यतीत होता है, और दूसरा, जी हाँ, दूसरा भाग उसका आनंद लेने में। बुजुर्ग होने में ना एक मौन सुंदरता होती है, बुद्धि गहराती है, यादें बढ़ती जाती हैं, और फिर हमारे भीतर अक्सर वही जिज्ञासु अनियंत्रित युवा आत्मा जीवित रहती है। दुनिया हमसे उम्मीद करती है कि हम अपनी उम्र के अनुसार व्यवहार करें, लेकिन हमारा दिल जो है ना, वो अब भी सपने देखता है, अब भी वैसा ही हंसता है, अब भी वैसे ही जोश के साथ वो हर बात करने की उम्मीद करता है जैसे कि अपनी जवानी में करता था। और उम्र ना, बार बार हम एक ही चीज कहेंगे, ये एक संख्या है। आत्मा जो होती है वो मोमबत्तियाँ नहीं गिनती, वो सिर्फ वो पल गिनती है जो हमें जीवित होने का एहसास कराते हैं। कभी भी युवा दिल से जीना मत छोड़िए, जिंदा दिल रहिए और जीवन को भरपूर तरीके से जिए, और इसे अपनी खुली बाहों से अपनाइए, रोटिए, मनाइए, खूब हंसिए, खूब खिलखिलाइए, अपने जितने शौक हैं उनको पूरा कीजिए, जिंदगी का लुत्फ लेते रहिए, और हाँ, खूब अच्छे अच्छे गाने सुनते रहिए, जैसे कि कौन सा गाना, ये वाला।

फिल्म दाग में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के साथ मीनू पुरुषोत्तम की आवाज़ में ये गीत। और दोस्तों, हमने आपसे गुजारिश की थी कि आपकी बातें हमारे साथ बिल्कुल होनी चाहिए। और देखिए, ऐसा कभी हो कि हम आपसे कोई भी चीज़ मांगें और आप हमें ना दें। देखिए, हमारे साथ हमारे नियमित श्रोता जुड़े हुए हैं। जी हाँ, ये है नवीन भाटिया जी, मोतीनगर नई दिल्ली से। लिखते हैं, चेहरे की चमक और मुस्कान की ऊंचाई और मकान की ऊंचाई पे मत जाना। जिस घर में बुजुर्ग हंसते हुए मिल जाएं, समझ जाना घर अमीरों का है। क्या बात है, बहुत सही बात आपने कही नवीन जी। और आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, हमेशा आपकी मेल समय हर दिन आती हैं और आप हमारे नियमित श्रोता हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हमारे साथ कौन जुड़े हैं? जी हाँ, ये राजू अग्रवाल, केशव दक्ष, प्रियांशी चौधरी, वास हिसार, हरियाणा से जुड़े हैं। और ये लिखते हैं कि 2012 को ये भूल नहीं सकते, क्योंकि तब उन्हें रेडियो ने बहुत उनका साथ दिया। वो बहुत शायद बीमार थे उन दिनों, और उनका पूरा साथ रेडियो ने उनका दिया। मतलब वो पूरे समय हमारे गाने सुनते रहे। और लिखते हैं कि आपके प्रोग्राम के सफलता की यही पूंजी है, शुक्रिया। और लिखते हैं कि FM गोल्ड की क्या तारीफ करूं, रोज़ाना सुनता हूं, पेश करने का अंदाज अच्छा होता है। शुक्रिया आपका कि आप हमारे रेडियो के प्रोग्राम सुनते हैं, FM गोल्ड के प्रोग्राम आप सुनते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, हमारे साथ आप लोग लगातार बने रहते हैं, आप लोगों की ईमेल्स के ज़रिए हम आपकी बात आप तक पहुंचा पाते हैं और आपकी बात हम तक पहुंच पाती है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, बढ़ती उम्र को अक्सर लोग ठहराव से जोड़कर देखते हैं, लेकिन कुछ व्यक्तित्व ऐसे भी होते हैं जो अपने कार्यों से पीढ़ियों तक को प्रेरणा देते रहते हैं। पद्मश्री सालूमरदा थिमक्का ऐसी ही एक प्रेरक शख्सियत थीं, जिन्होंने यह साबित किया कि सेवा और संकल्प की कोई उम्र नहीं होती। कर्नाटक की रहने वाली सालूमरदा थिमक्का ने अपने पति के साथ मिलकर वर्षों तक सैकड़ों बरगद के पेड़ लगाए

और उनकी देखभाल की। सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद उनका प्रकृति के प्रति समर्पण कभी कम नहीं हुआ। सालू मर्दा जी नाम है ना, ये जो एक शब्द है ये कन्नड़ भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ होता है पेड़ों की कतार। ये नाम उन्हें इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने सड़क किनारे लंबी कतारों में बरगद के पेड़ लगाए थे। 100 वर्ष से अधिक आयु तक उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और अपने जीवन में यह साबित किया कि उम्र बढ़ने के साथ व्यक्ति समाज के लिए और अधिक प्रेरणादायक बन सकता है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2019 में पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया गया। वर्ष 2025 में उनके निधन के साथ देश ने पर्यावरण संरक्षण की एक ऐसी प्रेरक आवाज को खो दिया जिसने सादगी और समर्पण से प्रकृति सेवा का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। दोस्तों, सालू मर्दा जी का जो देहांत है वो 14 नवंबर 2025 को 114 वर्ष की आयु में हुआ और वे अपने पीछे हरियाली की एक जीवंत विरासत छोड़ गईं जो गांवों और लोगों के जीवन में फैली हुई है। उनका पेड़ छाया प्रदान करते रहते हैं और वन्य जीवों का भरण पोषण करते रहते हैं, मिट्टी को समृद्ध करते हैं और व्यक्तियों और समुदायों को प्रकृति को लगाने, मतलब प्रकृति में पेड़ लगाने, उसकी रक्षा करने और इसे संरक्षित करने के लिए प्रेरित करते हैं।

यसुदास की आवाज़ में आनंद आश्रम फिल्म से आप ये गाना सुन रहे थे। दोस्तों, हमारे साथ हमारे एक और श्रोता जुड़े हैं। ये हैं उग्रसेन यादव नई दिल्ली से, और इन्हें गाने और कार्यक्रम पसंद आ रहा है, इसके लिए आपका शुक्रिया। फिर हमारे साथ जुड़े हैं, जी हाँ, हमारे एक और नियमित श्रोता सुदर्शन मुखी जी। इनके साथ अनीता मुखी और सिमरन मुखी, ये भी कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं और इन्हें गाने अच्छे लग रहे हैं। और देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को प्रोग्राम अच्छे लगते हैं। देखिए, प्रशंसा और तारीफ़ें किसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन ना इसके साथ एक चीज़ और भी होती है कि आपके मशवरे, आपकी बातें जो हम तक बहुत ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा इनका इंतज़ार रहता है। आप अपनी बातें और कभी कभी शिकायतें भी हमारे साथ बिल्कुल साझा कर सकते हैं, क्योंकि आपकी इन्हीं राय और मशवरों के साथ ही हमारे कार्यक्रम और निखार पाएगा। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में परिवार को हमेशा साथ रहने और एक दूसरे का सहारा बनने की परंपरा से जोड़ा गया है, लेकिन बदलती जीवन शैली, व्यस्त दिनचर्या और एकल परिवारों के बढ़ते चलन के बीच आज वृद्धाश्रम समाज की एक वास्तविकता बनते जा रहे हैं। कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके लिए ये ओल्ड एज होम सुरक्षा, देखभाल और साथ का एक सहारा बनकर सामने आते हैं। वहाँ उन्हें रहने, भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और अपनी हमउम्र लोगों के साथ समय बिताने का अवसर मिलता है। लेकिन दूसरी ओर यह प्रश्न भी उठता है कि क्या वृद्धाश्रम केवल आवश्यकता है या बदलते सामाजिक संबंधों का एक संवेदनशील सच भी? कभी जिन माता पिता ने अपना पूरा जीवन परिवारों को संवारने में बिताया, बढ़ती उम्र में वही कई बार अकेलेपन और उपेक्षा का सामना करते दिखाई देते हैं। ऐसे में वृद्धाश्रम केवल भवन नहीं रह जाते, बल्कि समाज के बदलते रिश्तों का आईना भी बन जाते हैं। हालांकि ये भी सच है कि हर परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। कई परिवार परिस्थितियों वश या फैसले लेते हैं, और कई बार बुजुर्ग अपनी इच्छा से भी इन ओल्ड एज जो जगह होती है, यहाँ का जीवन चुनते हैं। इसीलिए आवश्यकता केवल बुजुर्गों को सहारा देने की नहीं है, है ना, बल्कि उन्हें सम्मान, संवाद और अपनापन देने की भी है, क्योंकि जीवन की सांझ में सबसे अधिक ज़रूरत किसी सुविधा की नहीं बल्कि अपनेपन की होती है। और इस अपनेपन में एक सबसे अच्छा जो एक सहारा होता है, वो अच्छा संगीत होता है। और अच्छा संगीत आप कहाँ सुनते हैं? जी हाँ, यहाँ FM गोल्ड पर। तो अभी हम बहुत गमगीन, मतलब जिसे कहते हैं एक बहुत ऐसे विषय पर बात कर रहे थे जिसको सुनकर, जिसके बारे में बात करके हम भावुक हो जाते हैं। और देखिए, अपने घर के बुज़ुर्ग हमारी नज़रों के सामने आ जाते हैं। बस हर बुज़ुर्ग अपने घर में उसी सम्मान और इज्जत के साथ रहे और हर जगह उन्हें वही प्यार और अपनापन मिले जिसके वो हकदार हैं। तो बस यही तो हमारी आशा और आप सभी से हमारी गुजारिश भी होती है। तो ये तो सब खैर बातें हैं ही, आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गाना।

फिल्म दूसरा आदमी में आप सुन रहे थे किशोर कुमार के साथ लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत। अच्छा दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बुजुर्गों की, और जीवन का जो सांझ का समय होता है ये केवल बढ़ती उम्र का नाम नहीं होता, बल्कि ये वो दौर होता है जब व्यक्ति को सबसे अधिक अपनापन, संवाद और सम्मान की आवश्यकता होती है। बचपन में जिन हाथों ने हमें चलना सिखाया, समय के साथ वही हाथ सहारे की प्रतीक्षा करने लगते हैं। आज बदलती जीवन शैली, हमारी व्यस्त दिनचर्या और एकल परिवारों के बढ़ते चलन के बीच कई बुजुर्ग अकेलेपन का अनुभव करते हैं। ऐसे में उनके लिए केवल सुविधाएं ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि ना एक आत्मीय बातचीत, जी हाँ, साथ में बैठना, उनके साथ बात करना और उनके साथ ऐसा व्यवहार करना जो उन्हें अच्छा लगे, वो हंसें, वो खुश रहें और उन्हें लगे कि हाँ, आज भी उनकी ज़रूरत हमें है। तो कई बार ना एक कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके लिए दरकार नहीं होती। क्या होता है, बस एक हल्का सा संवाद, कुछ पल उनके साथ बैठना और उनकी बातों को ध्यान से सुन लेना, ये भी बहुत बड़ी ना एक ऐसी चीज़ है जो उनके चेहरे पर मुस्कान ले आती है। जो हमारे बुजुर्ग हैं वे केवल परिवार के सदस्य नहीं हैं, जब बल्कि वो अनुभव, परंपरा और जीवन मूल्यों की जीवित धरोहर हैं, मानेंगे ना। और इसीलिए क्या ज़रूरी है, ज़रूरी है कि जीवन के सांझ में उन्हें यह महसूस हो कि वो अकेले नहीं हैं, बल्कि परिवार और समाज का एक सम्मानित और बहुत प्यारा हिस्सा भी हैं। क्योंकि उम्र ढलने के साथ ज़रूरतें कम नहीं होती, बस इन्हें कहने का तरीका हल्का सा शांत हो जाता है। हाँ, और देखिए, उन्होंने जीवन भर अपनी सारी चीज़ों को एक तरफ रखकर हमें

फिल्म चोर मचाए शोर में आप सुन रहे हैं आशा भोसले के साथ मोहम्मद रफी की आवाज़ में ये गीत, और इसी गीत के साथ मुझे यानी आपके रेडियो हम सफर सोनाली को आज के इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। नमस्कार।

रामगन आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन। घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर बातचीत की। बातचीत के बाद इस समय समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया जा रहा है। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स की भारत की ये पहली यात्रा है। श्री क्रिस्टोडोलाइट्स आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार हैं। यह एक महत्वपूर्ण

0: यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
1: निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने समाप्त हो रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की एक एक सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की एक एक सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधा कृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधा कृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। उन्होंने उनके आगामी कार्यकाल के सफल होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड इस समय संयुक्त प्रेस सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं।
2: पूरी विजिट के दौरान आपकी आत्मीयता, आपका स्नेह और भारत के प्रति आपका विशेष जुड़ाव हमने बहुत गहराई से महसूस किया और आज आपकी भारत यात्रा हमारी शेयर्ड जर्नी का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है। फ्रेंड्स, भारत और साइप्रस की मित्रता मजबूत भी है और फ्यूचरिस्टिक भी है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारी साझेदारी के आधार है। हम सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। भारत इन सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगा।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा को चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक क्षेत्रीय जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल BSF के अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि कई तरह की कमजोरियों और चुनौतियों के बावजूद बल ने लगातार देश के गौरव को बनाए रखा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi is holding talks with President of Cyprus Nikos Christodoulides in New Delhi to further strengthen bilateral cooperation. We now go over live to the Prime Minister's address.
2: और इस संकल्प को साकार करने के लिए आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
3: Prime Minister Narendra Modi chaired a meeting of the Council of Ministers in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Modi said the meeting involved exchange of perspectives and best practices

आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम एक ही फिल्म से, जहां हम हर बार सिनेमा के सुनहरे सफर से चुन कर लाते हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ पर्दे पर नहीं दिलों में भी बस जाती है। और आज हम आपको लिए चलेंगे 1974 की उस फिल्मी दुनिया में, जहां रहस्य था, रोमांच था, मोहब्बत की कसक थी और संगीत की ऐसी मिठास थी जिसने लाखों दिलों को छू लिया। एक ऐसी फिल्म जिसके नाम ने जितनी जिज्ञासा जगाई उसकी कहानी ने उतना ही रोमांच पैदा किया, और जिसके एक गीत ने टूटे दिलों की आवाज़ बनकर हर गली मोहल्ले में अपनी गूंज छोड़ दी। जी हाँ, तो आज की फिल्म कौन सी है इसका अंदाज़ा तो आपको गीत सुनकर लग ही जाएगा, और जब आपको अंदाज़ा लग जाएगा तो हमेशा की तरह अपने जवाब आपको मेल कर देना है। मेल आईडी है ip.radiodelhi@gmail.com। और आज इस प्रोग्राम को लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। आप सभी का स्वागत करती हूँ।

आशा जी की आवाज में इस गीत को सुनने के बाद तो आपने अंदाजा लगा ही लिया कि आज हम कौन सी फिल्म लेकर आए हैं, क्योंकि आपके ढेर सारे संदेश हम तक पहुंच रहे हैं सही जवाब के साथ। तो हम भी आपको बता दें कि आज हम 1974 में बनी एक भारतीय हिंदी फिल्म जिसे सावन कुमार ने निर्मित भी किया, निर्देशित भी किया और लिखा भी था। फिल्म में नजर आए थे अनिल धवन, नीतू सिंह, बिंदु और विनोद मेहरा, इन्होंने अभिनय किया था। और साथ ही साथ जो गीत अभी आपने सुना ना, आओ यारो गाओ, इसमें नजर आई थी रेखा। जी हाँ, हम सबकी खूबसूरत सी अभिनेत्री रेखा, जो कि एक विशेष भूमिका उन्होंने इस फिल्म में निभाई थी। और फिल्म का संगीत था उषा खन्ना, इन्होंने तैयार किया था। नाम बताने की जरूरत है, फिर भी बता देती हूँ, ये फिल्म है 1974 की फिल्म हवस। फिल्म और संगीत विशेषक राजेश सुब्रमण्यम के अनुसार जो गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी, उन्होंने फिल्म के लिए अपनी फीस कम करने से इनकार कर दिया था। खैर, ये जो किस्सा है जो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको मैं थोड़ी देर बाद बताऊँगी जब वो गीत मैं आपको सुन पाऊँगी। फिलहाल आपको बता दूँ कि ये मर्क्यूरी प्रोडक्शन के बैनर तले फिल्म बनी थी और ये एक रोमांस थ्रिलर और एक ड्रामा फिल्म थी। इसकी जो अवधि थी वो 2 घंटे 10 मिनट की ये फिल्म थी। और अभी आपने जो गीत सुना आओ यारों गाओ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस गीत में नजर आई थी रेखा। दरअसल ये गाना जो था ये मूल रूप से फरियाल को मुख्य नर्तकी के रूप में लेने की एक योजना थी, लेकिन जब रेखा जी ने इस गाने को सुना तो उनको इसकी धुन इतनी ज़्यादा पसंद आ गई तो उन्होंने इसमें भाग लेने की अपनी इच्छा जताई। गाने में रेखा जी ने जो एक ड्रेस पहनी है, जब आप इस गीत को देखेंगे, फिल्म में देखेंगे या वैसे भी कभी आप देखें, तो जो उन्होंने ड्रेस जो पोशाक पहनी है उसको उन्होंने खुद डिज़ाइन किया था। और अब इस गीत के बाद मैं वो गीत सुनवाने जा रही हूँ जिस फिल्म की जान भी कह सकते हैं, और वो फिल्म कैसे बना, वो गीत कैसे बना था ये भी मैं आपको बताऊँगी। फिलहाल तो आप रफ़ी साहब की आवाज़ में ये दिल को छूने वाला गीत सुनिए।

ये गीत, थोड़ा सा इस गीत को मैं रोक रही हूँ और आपको इस गीत से जुड़ी एक दिलचस्प बात बतानी थी। फिल्म का सबसे लोकप्रिय गीत है ये, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, और आज भी जो दर्द है इस गीत में है वो आज भी महसूस किया जा सकता है। कहा जाता है कि गीतकार साबन कुमार टाक और संगीत की जो रिकॉर्डिंग थी उसके दौरान कुछ उनमें मतभेद हो गया था और उसी भावुक माहौल में ये गीत की पंक्तियाँ जन्मी थीं, और शायद यही वजह है कि गीत में दर्द इतना सच्चा महसूस होता है। जब इनके बीच में कुछ अनबन हुई थी और जब उनके घर से निकले तो उनके जुबान पर यही लाइन आई कि तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। शायद हमने और आपने भी कई बार इस तरीके से इस लाइन को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में भी ज़रूर हमने इस बात को लाइन को यूज़ किया होगा जब हमारी किसी से बहस हो जाती है यारी दोस्ती में, घर परिवार में, कि तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। तो जब ये गीत लिखा गया तो शायद सोचा भी नहीं गया था कि ये गीत इतना ज़्यादा कमाल कर जाएगा, लोगों के दिल में इतने सालों तक इसकी याद रह जाएगी। आपको बता देते हैं कि इस फिल्म में नज़र आए थे अनिल धवन, जो कि अनिल कुमार के किरदार में नज़र आए थे, नीतू सिंह थी जो नीतू के ही किरदार में थी, रेखा हमने आपको बताया कि एक विशेष भूमिका में थी, प्रदीप कुमार शैलेंद्र सिंह के रूप में दिखाई दिए थे, बिंदु कामिनी के रूप में दिखी थी, इनके साथ ही विनोद मेहरा थे जो कि डॉक्टर बाली के किरदार में थे, विद्या सिन्हा विद्या कुमार के रूप में नज़र आई थी, इंस्पेक्टर महमूद के रूप में महमूद नज़र आए थे, और भी कई कलाकार थे, लेकिन इन सब कलाकारों ने अपनी कलाकारी का जो इस फिल्म में ये अपना कारनामा दिखाया वो लोगों को आज तक याद है। तो चलिए इसी गीत को हम फिर से आपको सुनवा रहे हैं, क्योंकि बीच में हमने इसको रोक कर ये बात आपको बताई थी। और हाँ, आपको भी अगर इस फिल्म से जुड़ी कुछ खास बात याद है, कुछ खास जानकारी भी आपके पास है तो आप बता दीजिए, क्योंकि वैसे तो आपके ढेर सारे संदेश हम तक पहुंच रहे हैं, लेकिन कई बार होता है ना कि कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें हमने जब देखा था और कई वर्षों बाद जब हम उस फिल्म से कोई गीत जुड़ा हुआ या फिर उस फिल्म के कोई किस्से सुनते हैं तो वो यादें अपने आप ही जहन में चली आती हैं। तो बस उन यादों को भी आप हमेशा की तरह अपने संदेशों में हम तक पहुंचा सकते हैं, और इसके बाद सिलसिला आपके जो संदेश हैं उनको पढ़ने का भी हम करेंगे। बहुत सारी जानकारी अभी इस गीत, इस फिल्म से जुड़ी हुई भी हमारे पास है। तो चलिए इस फिल्म का जो फेवरेट गीत है उसको आप इंजॉय कीजिए।

फिल्म की कहानी अनिल कुमार के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक अपराधी गिरोह का सरगना एक अमीर परिवार में नौकरी करने के लिए भेजता है। मकसद होता है उस परिवार की बेटी को अपने प्रेम जाल में फंसाकर संपत्ति हत्याना। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब उस परिवार की दूसरी पत्नी कामिनी खुद अनिल के प्रति आकर्षित हो जाती है। इसके बाद प्रेम, लालच, छल और रहस्य का एक ऐसा जाल बुनता है कि दर्शक अंत तक बंधे रहते हैं। इस फिल्म का संगीत इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। आप सुन ही रहे हैं, दो गीत मैंने आपको सुनवा ही दिए हैं और आपको मैंने बताया कि तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम ये गीत कैसे बना था। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में एक गीत अमर हो गया और उस वक्त भी इस गीत ने खूब लोकप्रियता हासिल की थी और आज भी ये गीत लोगों के पसंदीदा लिस्ट में शामिल है। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने इस जो गीत थे इस फिल्म के उनको गाया था और रफ़ी साहब को तो तेरी गलियों में गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक का फिल्म वर्ल्ड मैगजीन पुरस्कार भी मिला था। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जो कि बिंदु थी वो और सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका यानी कि आशा जी को ये हवस क्या है ये जो गाना इन्होंने गाया था कुछ देर में अगर होगा तो गीत मैं आपको सुनवाऊंगी, इनके लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के का नॉमिनेशन इन्हें दोनों को दिया गया था। आपके ढेर सारे संदेश आ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि उन संदेशों को भी मैं शामिल कर लेती हूँ। साथ ही साथ प्रदीप द्विवेदी जी देवरिया उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं कि वेटिंग फॉर योर अवर फेवरेट प्रोग्राम, तो आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया है और प्रोग्राम अब अंतिम चरण में भी पहुंच गया है। गांव लोहरगढ़ ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप गुरनूल गुरनाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार डेनी, मनीष पवार जी लिख रहे हैं कि आज की फिल्म हवस है और इस फिल्म का जो बजट था वो काफ़ी कम था, इसीलिए इसे उस दौर की बी ग्रेड फिल्मों में की श्रेणी में रखा जा रहा था। जब निर्देशक सावन कुमार टाक मशहूर गीतकार मजरू सुल्तानपुरी के पास गाने लिखवाने गए थे तो उन्होंने कम बजट और फिल्म के नाम हवस जो रखा गया था इसके कारण गीत लिखने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सावन कुमार ने खुद पेन उठाया और फिल्म के सारे गाने लिखे जो कि ब्लॉकबस्टर साबित हुए थे। वाह, क्या जानकारी आपने लिखे भेजी है, बहुत बहुत शुक्रिया। नितेश कुमार देवानगन, दुर्गा प्रसाद पराल, पुना देवानगन, कृष्णा जी हमारे साथ पलारी छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं, वीरन गांव गुजरात से अजीत भापसर, प्रमिला जी ने भी बहुत बेहतरीन जानकारी लिखी हुई है। इस फिल्म के बारे में जो अभी तक हमने आपको बताया वो सब जानकारी लिखी है और रियली आप लोग इस जो भी प्रोग्राम में शामिल होते हैं और उसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी इकट्ठी करते हैं, हमारे साथ साथ आप भी मेहनत करते हैं, शुक्रिया आपका। अगला जो संदेश है वो हमारे पास फालसिका पंजाब खेड़ा से खेड़ा परिवार भूषण विष्णु और बाकी के सदस्य जुड़े हुए हैं। गाँव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी जी हमारे साथ हैं, रिंगनी छत्तीसगढ़ से।

दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा जी हैं, सुदर्शन मुखिया नेता सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से जुड़ चुके हैं, और चौधरी बास से राजू अग्रवाल, केशव प्रियांशी, विवेक जी हैं, वटिंगखेड़ा पंजाब से विंचू टॉमस, लवली पिंकी आरती हमारे साथ हैं, समडी नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा अदिति, राधे, दीपक और अंकुर राघव जी हैं, गाँव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता हैं, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवानगन, कौशल्या हेमलता, डिम्पल जी हमारे साथ हैं, जीवी राणा नेहरू बैर दिल्ली से हैं, जलालाबाद बेस्ट से सुरेश गंगनेजा, पूनम जी हमारे साथ हैं, गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पवार, डेनी जी का एक और संदेश आया है, गुरमीत सिंह मीठा साउथ एक्सटेंशन से, और शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल जी हैं, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल पूजा परिहार हैं, दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मिगलानी, बबीता सुभाष योगी, बब्बू जब्बू जी हैं। अगला संदेश जो पहुंचा है हमारे पास वो हीरामणि वर्मा जी का दतरंगी भाटापारा से है, ऊपरकोट मोहल्ला चौकंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सिद्धपासी निगत, परवीन शेनवास, सरफराज फरदीन, सुहान अरजान परिवार के सभी सदस्य हैं। अगला ये संदेश हमारे पास मुकेश कासलीकर जी का पहुंचा है, जो कि तहसील बरुण अमरावती महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कभी रेडियो श्रोता संघ डोंजी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव जी हैं, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, चिल्लू जी प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, वो आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं हम। और कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित जी हैं, दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा हमारे साथ हैं, संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर जी के साथ जालंधर पंजाब से जुड़े हुए हैं, नलवेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर, निर्मला विशाल नारायण जी हमारे साथ हैं, और ये जो अगला संदेश है पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी का आया हुआ है, गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी जी हैं, रामशरण विश्वकर्मा, साहिल मंजू, रंजना वंजना जी हमारे साथ, ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से हैं, चिरमिरी कुलारसिया कालरी से इंद्रवान सिंह, अनुभव ऋषभ, राम सहोदर, नारायण, दिनेश और कालिंद्री जी हैं, और भी कुछ संदेश हैं उनको हम शामिल करेंगे। फिलहाल हम आपको आशा जी की आवाज़ में ही इस फिल्म का एक और खूबसूरत सा गीत सुनवा रहे हैं।

बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया, नमन डिंगिया अपार डिंगिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता जी को प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। संदीप मक्कर जी ज्योति जी के साथ एक और संदेश में हमारे साथ शामिल हैं और ये संदेश हमारे पास पहुंचा है रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना हर्षित और खुशी का। सुदर्शन मुख्य नेता जी एक बार फिर संदेश के जरिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल मोहन जी कह रहे हैं कि आपकी प्रस्तुति शानदार है, बधाई स्वीकार करें जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से हमारे साथ हैं। प्रिंस वर्मा प्रकाश छत्तीसगढ़ पलारी से हमारे साथ हैं।

उस दौर में फिल्म का नाम हवस काफी बोल्ड माना गया था। नाम सुनकर दर्शकों में जिज्ञासा पैदा हुई, लेकिन फिल्म देखने पर पता चला कि इसकी कहानी सिर्फ सनसनी नहीं बल्कि एक मजबूत सामाजिक और मनोवैज्ञानिक ड्रामा है। निर्देशक सावन कुमार टाक ने इस फिल्म से यह साबित किया कि वे सिर्फ रोमांटिक कहानियां ही नहीं बल्कि रहस्य और मनोवैज्ञानिक तनाव से भरी फिल्में भी प्रभावशाली ढंग से बना सकते हैं।

0: हमारी साझेदारी के आधार हैं। हम सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। भारत इन सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत ते साइप्रस अगले 5 साल विच निवेश प्रवाह नूं दुबारा दुगना करन दा टीचा रखदे ने। उन्हां इस गल ते जोर दिता कि साइप्रस नाल रक्षा सहयोग भी वध्या ए। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोवां देशां ने साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा ते दहशतगर्दी विरोधी खेतरां विच सहयोग वधाउण दा भी फैसला कीता ए। क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग 26 मई नवी दिल्ली होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के सदे से आस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सो मोटोगी, अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो मीटिंग में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक स्वतंत्र ते खुले हिंद प्रशांत खेतर लई क्वाड दे दृष्टिकोण मुताबिक क्वाड विदेश मंत्री तरजीही खेतरां विच सहयोग वधाउण ते क्वाड पहलकदमियां ते प्रगति दा जायजा लैण ते चर्चा करनगे। हिंद प्रशांत खेतर विच हालिया गतिविधियां ते होर अंतरराष्ट्रीय मुद्दयां ते भी चर्चा कीती जाएगी। ऑस्ट्रेलिया, जापान अते अमरीका दे विदेश मंत्रियों दे दुबले मीटिंगां करन अते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल मुलाकात करन दी भी उम्मीद ए। चोन कमिशन ने अज 10 राज्यों तो राज्यसभा दीआं 24 सीटां लई 2 साल च होण वालियां चोणां लई चोण प्रोग्राम दा ऐलान कीता है। साबका प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन अते रवनीत सिंह अगले महीने अपना कार्यकाल पूरा कर रहे मैंबरां विच शामिल ने। आंध्र प्रदेश, गुजरात ते कर्नाटका विच 4-4 सीटां, राजस्थान ते मध्य प्रदेश विच 3-3 सीटां, झारखंड विच 2 सीटां अते मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश ते मिजोरम विच 1-1 सीट खाली हो जाएगी। कमिशन मुताबिक नोटिफिकेशन अगले महीने की 1 तरीक नूं जारी किया जाएगा ते 18 जून नूं वोटिंग होगी। वोटां दी गिणती उसे दिन की जाएगी। कमिशन ने महाराष्ट्र ते तमिलनाडु विच 1-1 सीट लई राज्यसभा जिमनी चोणां दा भी ऐलान किया। ए सीटां महाराष्ट्र दे उप मुख्यमंत्री सुनित्रा जीत पवार अते एआईए डीएमके दे संसद मैंबर सीवी शनमुगम वल्लों खाली कीतियां गईयां ने, जो हाल ही विच राज विधानसभा लई चुणे गए ने। जिमनी चोण भी अगले महीने दी 18 तरीक नूं होगी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सरहदां दी सुरक्षा नूं चुनौतियां नाल निजिठण लई एक व्यापक खेतरी जिम्मेवारी वजों देखा जाना चाहिदा है। अज नवी दिल्ली विच सरहदी सुरक्षा बल बीएसएफ दे सम्मान समारोह नूं संबोधन करदिआं श्री शाह ने कहा कि कई कमजोरियां अते चुनौतियां दे बावजूद बल ने देश दे माण नूं लगातार बनाई रख्या है। श्री शाह ने उभर रहे सुरक्षा खतरा का हवाला दिता, जिन्हां विच गैर कानूनी घुसपैठ, नशीले पदार्थां दी तस्करी, नकली करंसी दा चलन अते हथियारां ते नशीले पदार्थां दी तस्करी शामिल ए। गृहमंत्री ने वधेरे एकीकृत अते व्यापक सुरक्षा ढांचे दी जरूरत ते जोर दिता। उन्हां ने राज पुलिस, केंद्री हथियारबंद बलां, खुफिया एजेंसियां ते स्थानक प्रशासन दरम्यान बेहतर तालमेल किया।
2: पद्म विभूषण केएफ रुस्तम जी के नेतृत्व में बीएसएफ की स्थापना हुई और जब से बीएसएफ की स्थापना हुई है सैन्य सैंड बीएसएफ ने पूरे देश को सीमाओं की सुरक्षा के बारे में सुनिश्चित सुरक्षा कर निश्चिंत करने का काम सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने किया है, इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता है।
1: ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਹੈ @AIRR ਨਿਊਜ਼ ਜਲੰਧਰ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਬੰਬ ਦੇ ਝੂਠੇ ਈਮੇਲਸ ਭੇਜਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਇਕ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਏ। ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੌਰਭ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਫ ਮਾਰਕਲ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਐ। ਸ਼੍ਰੀ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇੰਟਰਪੋਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਗਈ ਏ। ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੇਸਬੁੱਕ ਗਰੁੱਪਸ ਰਾਹੀਂ ਈ ਮੇਲ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਰੀਬ 300 ਜੀ ਮੇਲ ਖਾਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 219 ਖਾਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਥਿਤ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਖਾਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਧਾਰਿਤ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵਾਲੇ ਈ ਮੇਲਸ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਈਬਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ।
3: ਬੰਬ ਥਰੈਟ ਦੀਆਂ ਈਮੇਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕੁਝ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੌਰਵ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਏਲੀਅਸ ਮਾਈਕਲ, ਅਰੈਸਟ ਇਹਦੀ ਪਾਈ।

0: इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
1: कुब्रुस के सदर जनाब निकोस ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात और यूरोपीय यूनियन भारत ताल्लुकात में पिछले साल काफ़ी वसअत आई है। उन्होंने कहा कि पिछले साल इन ताल्लुकात में वज़ीर आज़म मोदी के कुब्रुस के दौरे से शराकत दारी की रफ्तार में काबिल ज़िक्र इजाफा हुआ है। कुब्रुस के सदर आज शाम राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। भारत और कुब्रुस के दरमियान करीबी और देरीना शराकत दारी है। दोनों मुल्कों के दरमियान अगले साल फरवरी में सिफारती ताल्लुकात के 65 साल पूरे होंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत पूरी सरहद को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट शुरू करेगी। आज नई दिल्ली में बीएसएफ के यौम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में ड्रोन, रडार, कैमरे और दीगर तकनीकी वसाइल शामिल किए जाएंगे। उन्होंने ये काम एक ऐसी सरहद के हिफाजती फ्रेमवर्क की तरफ बढ़ रहा है जिसे पार करना मुमकिन न हो, जिसके लिए स्मार्ट बॉर्डर तसव्वुर के तहत आने वाले साल में सरहदी हिफाजती फोर्स के सलामती निज़ाम में हर तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा।
2: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि बैन अल-अक़वामी सरहदों की सिक्योरिटी को चैलेंजों से निपटने के एक अलहदा काम के बजाय वसीतर इलाकाई जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाना चाहिए। जनाब शाह ने कहा कि कई तरह के चैलेंजों और दुश्वार हालात के बावजूद बीएसएफ ने लगातार मुल्क का नाम रोशन किया है। जनाब अमित शाह ने दरअंदाजी, मनुष्यात की स्मगलिंग, जाली करेंसी के चलन और हथियारों और नशावर अद्वियात की स्मगलिंग समेत उभरते हुए सिक्योरिटी खतरात को उजागर किया। वजीर दाखिला ने ज्यादा मरबूत और जामे सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की जरूरत पर जोर दिया और रियासती पुलिस, मरकजी मुसल्ला फोर्सेज, सुराग रसा एजेंसियों और मकामी इंतजामिया के माबैन और ज्यादा तालमेल की जरूरत भी उजागर की। इंतखाबी कमीशन ने आज 10 रियासतों की राज्यसभा की 24 सीटों के लिए इंतखाबात की तारीखों का ऐलान किया है। साबिक वजीर आजम एचडी देवगौड़ा, मरकजी वजरा जॉर्ज क्यूरिन और रवनीत सिंह वारकान हैं जिनके मुद्दतकार अगले महीने खत्म हो रही है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3-3 सीटें, झारखंड की 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट खाली हो जाएगी। कमीशन के मुताबिक इस सिलसिले में यकुम जून को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और 18 जून को पोलिंग होगी। उसी दिन वोटों की गिनती की जाएगी। कमीशन ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा के जिमनी इंतखाबात का भी ऐलान किया है। ये सीटें महाराष्ट्र की नायब वजीर आला सुनेत्रा अजीत पवार और AIADMK के रुकन पार्लियामेंट CV शनमुगम के हालिया रियासती असेंबली इंतखाबात में मुंतखब होने के बाद खाली हो गई हैं। इन सीटों के लिए भी 18 जून को ही इंतखाबात कराए जाएंगे। केरलम में 7 मरतबा के कांग्रेस MLA तिरुवंचूर राधा कृष्णन को एक तारीखी सहरुखी मुकाबले में 16वीं केरलम कानून साज असेंबली का स्पीकर चुन लिया गया है। पहली बार ऐसा है कि इस चुनाव में बरसरे इकतदार UDF बाएं बाजू और BJP की क्यादत वाले NDA के उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: बरसरे इकतदार UDF उम्मीदवार तिरुवंचूर राधाकृष्णन को 140 रुकनी असेंबली में 101 वोटों से स्पीकर मुंतखब कर लिया गया है। अपोजिशन LDF उम्मीदवार AC महीउद्दीन ने 65 वोट, जबकि BJP उम्मीदवार BB गोपागोपाल ने 3 वोट हासिल किए। ऐसा पहली बार है कि BJP ने केरलम में स्पीकर का चुनाव लड़ा हो। नायब स्पीकर के लिए इंतखाब यकुम जून को होगा। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलूर्थी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं हबीबुर रहमान।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट ने आज यूएपीए केस में उमर खालिद को 3 दिन की उबूरी जमानत दे दी है। इस केस का ताल्लुक 2020 के शिमाल मशरकी दिल्ली के फसादात के पीछे मुबैना एक बड़ी साजिश से है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मधु जैन की एक डिवीजन बेंच ने उमर खालिद की रिहाई के लिए सख्त शराइत के साथ 1 से 3 जून तक की इजाज़त दी है। उमर खालिद ने 15 दिन की उबूरी जमानत चाही थी ताकि वो अपने मरहूम चचा के चहलुम की रसूम में शिरकत कर सकें और अपनी वालिदा के ऑपरेशन से पहले और बाद में उनकी निगहदाश्त कर सके। अदालत ने हिदायत दी कि खालिद को सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना होगा और तफ्तीशी अफसर के साथ लगातार रबते में रहना होगा। दिल्ली की एक अदालत ने आज राष्ट्रीय जनता दल के सरबराह लालू प्रसाद यादव, उनके कुनबे के अफराद और दीगर के खिलाफ इल्जाम तय करने के बारे में अपना फैसला 9 जून तक मुलतवी कर दिया है। इस केस का ताल्लुक IRCTC होटल घोटाले में मुबैना तौर पर काले धन को जायज बनाने से है। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक शदीद गर्मी के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए शदीद गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आइंदा 2 दिन के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी शदीद गर्म लहर चलने का इम्कान है। IPL क्रिकेट में आज हैदराबाद के राजीव गांधी बैन अल-अक्वामी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टो डोलाइडस के साथ 2 तरफ़ा बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत और कुब्रुस का मकसद अगले 5 साल में सरमायाकारी को 2 गुना करना है। इंतखाबी कमीशन ने अगले माह की 18 तारीख को 10 रियासतों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए इंतखाबात का ऐलान किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने UAPA केस में उमर खालिद को 3 दिन की उबूरी जमानत दे दी है। IMD ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में शदीद गर्मी के पेश नज़र कल तक के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और IPL क्रिकेट में आज शाम हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।

0: Light rainfall has been recorded in various districts, including the state capital Shimla, as well as Chamba, Kangra, Kullu, Hamirpur and Lahol Spiti, leading to a slight drop in temperatures across the state. According to the Meteorological Center Shimla, this change in weather is due to the activation of a western disturbance. The center has issued an orange alert for heavy rain accompanied by thunderstorms and strong winds at multiple locations in seven districts, Kullu, Shimla, Chamba, Una, Hamirpur, Mandi and Bilaspur over the next 48 hours. Ritesh Kapoor, Akashvani News, Shimla.
1: In Malaysia Masters, Indian shuttler Ashmita Chaliha's campaign came to an end after she lost to former European Games champion Line Kjærfelt of Denmark in the women's singles quarterfinals today. With Chaliha's exit, India's challenge also concluded at the BWF Super 500 tournament. Chaliha, 71st in the badminton rankings, won the opening game but eventually went down against the 23rd ranked opponent, 23-21, 18-21, 11-21 in 61 minutes. In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad will take on Royal Challengers Bengaluru in Hyderabad today. The match will start at 7:30 p.m. Earlier, Gujarat Titans defeated Chennai Super Kings by 89 runs at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad last night. Chasing a target of 230 runs set by Gujarat Titans, Chennai Super Kings were all out for 140 in 13.4 overs. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.7% higher in afternoon trade today. The Sensex climbed 535 points to 75,718, while the Nifty rose 154 points to 23,808 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds discussion with President of Cyprus Nikos Christodoulidis in New Delhi. Says India and Cyprus aim to double investment flows in next 5 years. Election Commission announces biennial elections for 24 Rajya Sabha seats from 10 states on 18th of next month. Supreme Court to hear plea next week against CBSE's three-language compulsory study for Class 9 students from July 1st. IMD issues red alert for severe heat wave over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbh till tomorrow. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad to take on Royal Challengers Bengaluru in Hyderabad this evening. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Kanak Lata. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस ने आज आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि भारत और साइप्रस के बीच मित्रता न केवल मजबूत है बल्कि भविष्योन्मुखी भी है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
3: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।

0: ने कहा कि पिछले कुछ वर्ष में साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा है।
1: हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश यूक्रेन और पश्चिम एशिया संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और शांति के प्रयासों का समर्थन करते हैं।
1: यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इससे पहले आज सुबह विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और भारत यूरोपीय संघ सहयोग के लिए राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स के विचारों और मार्गदर्शन की सराहना की। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए श्री क्रिस्टोडोलाइट्स का ये पहला भारत दौरा है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सू मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
2: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार हैं। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। एक रिपोर्ट।
3: आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई है। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ अमीशा।
0: केरलम में 7 बार के कांग्रेस विधायक तिरुवंचूर राधाकृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। विधानसभा के इतिहास में पहली बार इस चुनाव में सत्ताधारी यूडीएफ, वामदल और भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार मैदान में थे। एक रिपोर्ट।
4: 140 सदस्यों वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ यूडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार तिरुवंचूर राधाकृष्णन 101 वोटों के साथ स्पीकर चुने गए। विपक्षी एलडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार एसी मोहिद्दीन को 35 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बीबी गोपाकुमार को 3 वोट हासिल हुए। ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी ने केरल में स्पीकर पद का चुनाव लड़ा है। डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव 1 जून को होगा। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम

0: लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधाकृष्णन को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधाकृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। सर्वोच्च न्यायालय

0: वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ये जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज उमर खालिद को वर्ष 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित बड़ी साजिश से जुड़े गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA मामले में 3 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने उन्हें 1 जून से 3 जून तक कड़ी शर्तों के साथ रिहा करने की अनुमति दी। खालिद ने अपने दिवंगत चाचा के 40वें में शामिल होने और अपनी मां की शल्य चिकित्सा के दौरान उनकी देखभाल करने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। दिल्ली की एक अदालत ने IRCTC होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ED कर रहा है और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरभ दास को एक आपराधिक अवमानना याचिका के मामले में नोटिस जारी किया। यह याचिका आबकारी नीति मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को निशाना बनाने वाली कथित तौर पर अपमानजनक और अवमाननापूर्ण सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दायर की गई थी। रेल सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। उन्होंने जोधपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली कैंट के लिए 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। इस रेलगाड़ी में पहले 8 डिब्बे थे। इस अवसर पर उन्होंने भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर कोच कार्यशाला के 2रे चरण की भी घोषणा की। उन्होंने जैसलमेर स्टेशन पर नवनिर्मित कोच केयर कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि पूरे देश में रेल संपर्क तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री आज शाम जालौर जाएंगे, जहां वे नई भुज बरेली एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल BSF के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे।
1: आने वाले 1 साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृहमंत्री ने कहा कि BSF ने 1965 में 25 बटालियन और सीमित संसाधनों के साथ शुरुआत की थी। लगभग 2,70,000 कर्मियों की संख्या के साथ अब यह सीमाओं की रक्षा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बल बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्री अधिकारी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास समृद्ध राजनीतिक और विधायी अनुभव है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमेरिका विमानन और अंतरिक्ष संस्थान द्वारा 2026 के गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन देश को गौरवान्वित करता रहा है। पंजाब पुलिस ने देश भर के स्कूलों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर बम की धमकी भरे ईमेल भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोप है कि इस गिरोह में बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले लोग शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में

0: बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह से कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम के इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। एक रिपोर्ट।
1: राजधानी शिमला सहित चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर व लाहौल स्पीति जिलों में हल्की वर्षा होने से प्रदेश भर में तापमान में हल्की गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में यह बदलाव आया है। विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 7 जिलों कुल्लू, शिमला, चंबा, ऊना, हमीरपुर, मंडी और बिलासपुर में अनेक स्थानों पर अगले 48 घंटों में बारिश के साथ अंधड़ और तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: सरकार ने आज सूचित किया कि ईद उल अजहा बकरीद पर दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय 28 मई को बंद रहेंगे। पहले ये छुट्टी 27 मई को निर्धारित थी। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोराइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। 2:30 हुए हैं और वक्त हुआ है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार का। एक ही कलाकार कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
2: चलो
1: कहाँ
2: एडमिशन कराने?
4: खाता हुआ एक्टिव,
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: कार्यक्रम एक ही कलाकार में आप सभी सुनने वालों का, आप सभी श्रोताओं का स्वागत खैर मकदम करती हूँ। मैं आप सभी की होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अक्सर जब हम कोई पुरानी सुपरहिट फिल्म देखते हैं तो हमारी नज़रें सिर्फ और सिर्फ हीरो पर टिकी रहती हैं, लेकिन आप ज़रा सोचो, क्या वो नायक, वो हीरो बिना किसी वफादार दोस्त के, बिना किसी मजबूत हम सफ़र के अपनी मंजिल तक पहुँच पाता है? यकीनन नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब तक कोई साथी साथ ना हो तब तक वो हीरो भी हीरो नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और आज का जो हमारा ये सफ़रनामा है, वो जो हमारा कार्यक्रम है, बॉलीवुड के एक ऐसे ही सदाबहार सारथी के नाम, जिन्होंने पर्दे पर दोस्ती की नई परिभाषा लिखी, एक ऐसा कलाकार जिसने राजेश खन्ना साहब की जीप में बैठकर मुस्कुराते हुए माउथ ऑर्गन बजाया तो पूरा देश झूम उठा उनकी उस अदा पर। और जब अपनी मातृभाषा के सिनेमा में कदम रखा तो भोजपुरी सिनेमा का पहला महानायक बन गया। जी हाँ दोस्तों, आज बात होगी यारों के यार सुजीत कुमार की। तो दिल थाम कर बैठिए और शुरू करते हैं यादों का।

कदा दिलो जान से हुआ हूँ मैं तो उस पे फिदा, कोई जाने ना जाने कोई माने ना माने, मैं तो कहता हूँ उनको खुदाओं के खुदा। मेरा यार मेरा प्यार, मेरा यार मेरा प्यार, वो तो

फूल जैसी दिल नशी, दिया लेके भी जो ढूंढो तो मिलेगी ना कहीं। मेरा यार

जी दोस्तों, ये गीत अभी आपने सुना, ये फिल्म लाल बंगला से था गीत, और ये थी सुजीत कुमार की पहली बॉलीवुड फिल्म। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना। वैसे सुजीत कुमार जो कि ताल्लुक़ रखते थे उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के एक काफ़ी संपन्न काफ़ी अच्छे परिवार से, और उनके पापा चाहते थे, उनके पिता चाहते थे कि वो बड़े होकर एक वकील बने, और यही वजह थी कि उन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी की। लेकिन पढ़ाई के दौरान ही उनका जो दिमाग था, जो दिल था उनका, वो थिएटर और नाटक की तरफ जाने लगा, और वो कॉलेज में पढ़ाई कम किया करते थे, नाटकों में हिस्सा ज़्यादा लिया करते थे। और 60 के दशक की शुरुआत में मुंबई में एक बहुत बड़ा जो नाटक था वो हुआ, जिसमें सुजीत कुमार ने मुख्य भूमिका निभाई थी, और वो नाटक इतना शानदार रहा कि उस नाटक के बाद उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला दोस्तों। लेकिन उस ज़माने में इस पुरस्कार जो उनको मिला था, वो उस इनाम के तौर पर उन्हें लंदन जाकर एक्टिंग सीखने की स्कॉलरशिप मिली थी, और उसके लिए उन्हें एक एयर टिकट भी मिला था। अब सुजीत कुमार जो कि नाटकों में एक्टिंग कर बहुत खुश थे, और अब उन्हें वो एक्टिंग सीखने का मौका मिला, वो भी लंदन से, तो वो बहुत खुश थे जाने के लिए, और जाने की उन्होंने पूरी तैयारी की। लेकिन लंदन रवाना होने से ठीक पहले उनकी मुलाकात उस दौर के मशहूर निर्देशक फणी मजूमदार साहब से हुई। वो उस नाटक को उन्होंने देखा था, और जब उन्होंने उस नाटक में सुजीत कुमार की स्क्रीन प्रेजेंस को देखा, तो वो बहुत ज़्यादा उनसे प्रभावित हुए। तो उन्होंने कहा कि भाई, लंदन जाकर तुम क्या करोगे, तुम तो सीधा फिल्मों में काम करो, क्योंकि तुम्हें सीखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे अंदर तो जो एक्टिंग है वो कूट कूट कर भरी हुई है। और बस यहीं से मौका मिला सुजीत कुमार को फिल्मों में काम करने का, उनके फिल्मी सफ़र की शुरुआत हुई यहीं से। और बतौर एक लीड हीरो उन्होंने फणी मजूमदार की फ़िल्म आकाशदीप में काम किया।

और उसके साथ ही साथ उन्हें एक और फिल्म मिली, वो थी लाल बंगला, जिसका गीत अभी आपने सुना था। और जब उनकी फिल्म आकाशदीप आई, तो शुरुआती कुछ फिल्मों में उन्होंने हीरो के रूप में काम किया था, और जो उनकी एक्टिंग थी उसको हर किसी ने सराहा। और उन्होंने जो फिल्म में एक्टिंग की, हर किसी ने उसको सराहा था, लेकिन फिल्म में हीरो के तौर पर काम करते करते उन्हें ये ऐसा लगा कि भाई लीड हीरो या लीड रोल के भरोसे तो बैठना नहीं चाहिए, कुछ ऐसे मजबूत किरदार ढूंढने चाहिए जिसमें हीरो से भी ज़्यादा दम हो। जी हाँ दोस्तों, आगे का सफ़र, आगे की बातें हम ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं आकाशदीप फिल्म से ये खूबसूरत सा गीत लता जी की आवाज़ में।

जी दोस्तों, कोर्ट रूम को छोड़कर सीधे सिनेमा में सीधे कैमरा के सामने आने वाले सुजीत कुमार, जिनका सफ़र शुरू हुआ आकाशदीप, लाल बंगला, एक साल पहले जैसी सस्पेंस फिल्मों से, लेकिन फिर भी उनकी किस्मत में वो चमक तब तक भी नहीं आई थी जब तक 1969 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म आराधना नहीं आई थी। जी हाँ दोस्तों, आराधना फिल्म आई और इसके बाद तो जैसे वो सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब के ऑन स्क्रीन सबसे पक्के वाले यार बन गए। और सुजीत कुमार की जो पहचान थी वो बॉलीवुड में एक ऐसे सदाबहार को एक्टर की बन गई जिनके बिना 70 और 80 के दशक की कोई भी बड़ी फिल्म अधूरी थी। और अगर बात करें राजेश खन्ना साहब के साथ की, तो उनके बिना तो उनकी दोस्ती

बेकार थी। और सिर्फ पर्दे पर नहीं बल्कि असल ज़िंदगी में भी उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। और यही वजह थी कि दोनों रोज़ाना सुबह एक साथ जिम भी जाया करते थे।

जी दोस्तों, राजेश खन्ना साहब के साथ सुजीत कुमार की दोस्ती ऐसी चली चाहे वो फिल्म हाथी मेरे साथी हो, उसका वफादार दोस्त हो, अमर प्रेम, रोटी, महबूबा या फिर अवतार और आखिर क्यों जैसी फिल्में जिसमें सुजीत कुमार ने हर किरदार में अपनी एक अलग छाप छोड़ी, राजेश खन्ना साहब के होते हुए। जी हाँ दोस्तों, सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब के साथ स्क्रीन प्रेजेंस देना और उसमें अपनी पहचान को दिखाना, एहसास कराना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। इसके अलावा रामन सागर की जासूसी फिल्म आंखें में उनका विलन वाला किरदार तो लोग आज भी नहीं भूले हैं। लेकिन ये थी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की बात। लेकिन दोस्तों, सुजीत कुमार की कहानी सिर्फ हिंदी सिनेमा तक नहीं थी,

अगर हम उन्हें कहें कि वो भोजपुरी सिनेमा के अमिताभ बच्चन थे, जी हाँ दोस्तों, या कहें कि असली सुपरस्टार कहे तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। भोजपुरी सिनेमा जब अपने शुरुआती दौर में था, तब सुजीत कुमार ने वहाँ पर विदेशिया, लोहा सिंह, दंगल, पान खाएं सैया हमार जैसी खूबसूरत फिल्मों में मेन अहम किरदार निभाया। और सन 1977 में आई उनकी फिल्म दंगल ने तो कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे उस वक्त में। और अपनी मातृभाषा को जो सम्मान, जो पहचान उन्होंने दिलवाई, इसके लिए आज भी वहाँ के लोग उनको मानते हैं।

जी दोस्तों, 90 का दशक आते आते सुजीत कुमार जी ने अभिनय के साथ साथ फिल्म निर्माण यानी कि प्रोडक्शन में भी कदम रखा और दरार, चैंपियन जैसी बड़ी और कामयाब फिल्मों का निर्माण किया। हम यही कहेंगे कि वो एक बेहतरीन अभिनेता तो थे ही, साथ ही साथ फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें एक बेहद ही नेक दिल, मददगार और यारों के यार के रूप में जाना जाता है। और हमारे जो दोस्त हैं वो भी हम तक बहुत से संदेश पहुंचा चुके हैं, उनके संदेश भी हम शामिल कर लेते हैं। गांव टोरोवाल, जिला नवांशहर, पंजाब से गगन थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम और बीबी वामिका।

0: वाणी थांदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज हमारे साथ जुड़े हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से। गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मशरूर, साइना हसन, नाजिया इब्राहिम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता जी हमारे साथ जुड़े हैं। हीरामणि वर्मा दतरंगी भट्टापारा से हमारे साथ जुड़े हैं। वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, पूजा परिहर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्राम नागरकोरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा, बीबी आराध्या साहू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहार बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहजी बोड़के, श्रीमती नंदा बोड़के, हनुमान उत्तम जामदाड़े हमारे साथ जुड़े हैं हिंगोली महाराष्ट्र से। अगला संदेश हम तक पहुँचाया छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल, प्रिंस और यशस्वी वर्मा ने। चिरमिरी कोरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कालिंद्री लहरे के साथ। और ये जो अगला संदेश है उसको पहुंचाया है अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक जी ने पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से। हमारे साथ जुड़े हुए हैं फारूक अली खान जी और इन ये संदेश उन्होंने भेजा कस्बा गन्नौर यूपी से। इनके साथ हैं फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया, ताहिरा के साथ। ज्योति मक्कर, मन्नत, भारत, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गुरैया, जालंधर, पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा नलेश्वर नगर, नरवेल, महाराष्ट्र से पीएस नवान का, निर्मला, विशाल, सोपान, ताड़े, नारायण इंग्लेजी हमारे साथ जुड़े हैं। गोवर्धन कॉलोनी दिल्ली कॉलोनी दिल्ली से जुड़े हैं तुलसी मस्कीन, वीना, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित खुराना, केशोर धान खुराना के साथ। ऊपरकोट मोहल्ला चौकोटी बुलंदशहर से जुड़े हैं मोहम्मद सईद अब्बासी जी और उनके साथ हैं निगत प्रवीण अब्बासी, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपा ढींगिया हमारे साथ जुड़े हैं बागपत उत्तर प्रदेश से। सुदर्शन मुखी, अनिता जी और सिमरन मुखी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं शांतिनगर सोनीपत से। और ये अगला जो संदेश है इसको हम तक पहुँचाया है एक बार फिर से तुलसी मस्कीन जी ने। स्वर्ण सिंह गिल जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं और उषा मोहन जी हमारे साथ जुड़ी हैं पीटीआई संसद मार्ग से। तो दोस्तों ये थे वो संदेश जिनके ज़रिए सभी हम तक जुड़े। हमारे इस कार्यक्रम को आपने सुना, सराहा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज कार्यक्रम एक ही कलाकार में हमने बात की सुजीत कुमार जी के बारे में। सुजीत कुमार जो कि 5 फरवरी 2010 को कैंसर जैसी लंबी बीमारी से लड़ते हुए इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन अपनी 150 से ज़्यादा हिंदी और दर्जनों से ज़्यादा भोजपुरी फिल्मों में काम के ज़रिए वो आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। तो दोस्तों अगली बार जब भी आप मेरे सपनों की रानी वाला गाना देखें या कोई भी उनकी फिल्म देखें और उस मुस्कुराते हुए चेहरे यानी सुजीत कुमार साहब को देखें तो सलाम ज़रूर भेजिएगा। तो दोस्तों आज का ये कार्यक्रम बस यहीं तक। अब मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम समाप्ति के, लेकिन जाने से पहले यही कहूँगी कि भाई आप यूं ही हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। और आपके लिए छोड़े जाती हूँ उन्हीं की एक खूबसूरत सी फिल्म से, खूबसूरत सा गीत लता जी और किशोर की आवाज़ में। तो अनुमति नमस्कार।
1: अच्छा तो हम चलते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है प्रायोजित कार्यक्रम का, तो लीजिए सुनते हैं NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक बार फिर से एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा जी ने।
2: जब तक इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता, तब तक इंसान को छोटी से छोटी मुसीबत भी बड़ी पहाड़ सी लगती है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सही हिम्मत के दम पर वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी आसानी से पार कर सकता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और अब बारी है श्रोताओं के नाम और उनके संदेशों को सुनने की। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू।
2: मिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश वर्मा, श्रीमती सविता शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा।
0: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
2: पगबंदी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
0: और ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और कुसुमबाई।
2: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। श्रोताओं कल हमने चर्चा की थी पश्चिमी घाट के वर्षा वनों की और ली थी ढेर सारी रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी, आज की हमारी चर्चा का विषय तो बताइए हमारे श्रोताओं को।
2: जी अजीत जी, वर्षा वनों की तो चर्चा हो गई, अगली कड़ियों में हम भारत के अन्य वर्षा वनों की भी जानकारी लेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे एक और प्रकार के वन के बारे में।
0: जी,
2: वो वन है सुंदरवन। इस स्थान को हम सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियाँ इस डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
0: जी, वही सुंदरवन ना जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है।
2: बिल्कुल सही,
0: ये तो सचमुच एक अद्भुत वन है, रहस्यों और रोमांच से भरा हुआ। तो फिर आप ही चर्चा को आगे बढ़ाइए ना।
2: जी अजीत जी, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये कहाँ है। ये भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। भारत में 40% और बांग्लादेश में 60%। अजीत जी, आप

0: आपने भी सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि सुंदरवन वर्षा वन या रेन फॉरेस्ट है,
1: जी सुना तो है।
0: जबकि तथ्य बिल्कुल अलग है।
1: अच्छा
0: सुंदरवन दरअसल तकनीकी रूप से वर्षा वन नहीं है,
1: क्यों?
0: ये मैंग्रोव वन है। तो आइए श्रोताओं, वर्षा वन और मैंग्रोव वन के अंतर को समझते हैं।
1: जी विमलेश जी, देखिए श्रोताओ, रेन फॉरेस्ट या वर्षा वन वो होते हैं जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है,
0: जी
1: वर्षा के कारण घने जंगल होते हैं और पेड़ जमीन पर ही उगते हैं।
0: जी
1: लेकिन मैंग्रोव वन में ऐसा नहीं है। लेकिन इससे पहले कि आगे चले, हमें ये जरूर जान लेना चाहिए कि मैंग्रोव वन को हिंदी में क्या कहेंगे।
0: वैसे तो मैंग्रोव वन ही प्रचलित है, लेकिन इसे हिंदी में ज्वारीय वन भी कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए कि यहाँ वन ज्वार भाटा के प्रभाव से विकसित होते हैं। सागर से जुड़े होने के कारण सुंदरवन में पेड़ पौधे खारे अर्ध खारे पानी से उगते हैं। ये जानना रोचक होगा कि मैंग्रोव शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है दलदली पेड़ों का जंगल।
1: जी, मैंग्रोव वनों की मिट्टी दलदली होती है। सुंदरवन एक ऐसा ही वन है, यहाँ भी वर्षा होती है और हरियाली भी बहुत है, लेकिन यहाँ की पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम अलग होने के कारण ये वर्षा वन नहीं कहलाता।
0: जी
1: विमलेश जी, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि वर्षा वन में पेड़ पौधे जमीन पर ही उगते हैं, ऐसा क्यों कहा था आपने?
0: अजीत जी, बड़ा रोचक प्रश्न पूछा है आपने। जी हाँ, वर्षा वन के पेड़ जमीन पर ही उगते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पेड़ पानी पर भी उगते हैं, जो बड़े अनोखे होते हैं। ऐसा इसलिए कि सुंदरवन में रोज दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है। यहाँ के कुछ इलाके 6 घंटे पानी में डूबे होते हैं और बाकी के 6 घंटे पानी के बाहर। इसलिए यहाँ के पेड़ों की जड़ें पोषण लेने के लिए पानी के बाहर निकली हुई होती हैं।
1: विमलेश जी, कहा जाता है कि यहाँ के पेड़ चलते हैं।
0: चलते हैं, ऐसा भला कैसे हो सकता है?
1: दरअसल चलते नहीं हैं, ये चलते हुए लगते हैं। होता यह है कि ज्वार के आने से जब मिट्टी कट जाती है तो नए पौधे पानी में सरकते हुए वहाँ आगे चले जाते हैं जहाँ मिट्टी है, तो ऐसा लगता है कि पूरा जंगल खिसक रहा है।
0: सचमुच प्रकृति बड़ी अनोखी है। एक बात और बता दूं श्रोताओं को, बड़ी रोचक है, ध्यान से सुनिएगा श्रोताओं। क्योंकि सुंदरवन में मीठे पानी और खारे पानी दोनों मिश्रित हैं, ऐसे में मैंग्रोव के पौधों को जीने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
1: लेकिन भला वो कैसे?
0: वो ऐसे कि जीवित रहने के लिए मैंग्रोव वन के पौधे एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा खारे पानी का नमक छान कर निकाल देते हैं, यानी उन्हें समुद्र के खारे पानी से लड़ना पड़ता है। साधारण पेड़ पौधे खारे पानी से मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पत्तियां और जड़ें नमक को छान कर निकाल देती हैं। और हाँ अजीत जी, जब सुंदरवन की बात चल ही रही है, तो वहाँ के विशेष प्राणी बंगाल टाइगर की चर्चा कैसे छूट सकती है?
1: जी विमलेश जी, इन्हें रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं।
0: जी
1: आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर बाघ के शरीर की धारियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम इंसानों की फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से नहीं मिलती।
0: जी
1: इन्हें घने जंगलों में पानी के पास रहना पसंद होता है क्योंकि ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं।
0: सुंदरवन में सफेद बाघ भी पाए जाते हैं। ये बाघ दुनिया में एकमात्र ऐसे हैं जो खारा पानी भी पी सकते हैं।
1: और हाँ, यूनेस्को ने सुंदरवन को वर्ल्ड हेरिटेज या विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है।
0: जी
1: जी हाँ, सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ये दुनिया की सबसे रोमांचक जगहों में से एक है।
0: बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, मीठा पानी, खारा पानी, जीवित रहने के लिए नमक को छानकर बाहर निकालने वाले पेड़, जैव विविधता, खिसकने वाले और पानी में जड़ जमाने वाले पेड़, रातों को एक विशेष प्रकार के फंगस से निकलता हल्का नीला प्रकाश और ज्वार भाटा, कुल मिलाकर सचमुच हमारा सुंदरवन बहुत ही रोचक और रहस्यमय है।
1: जी हाँ श्रोताओ, और आइए अब अंत में जानते हैं कि भारत में और कहाँ कहाँ मैंग्रोव वन है।
0: सुंदरवन के अलावा उड़ीसा में भितरकानिका, तमिलनाडु में पिचवरम और आंध्र प्रदेश में गोदावरी कृष्णा नदी का डेल्टा।
1: तो श्रोताओ, ये थी जानकारी मैंग्रोव वनों की और विशेष करके सुंदरवन की।
0: जी
1: अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है,
0: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800044559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी, यानी audio@ciet.nic.in पर भी हमारे प्रश्नों के जवाब और संदेश भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पुस्तक की एक लघु कविता पर आधारित ये कार्यक्रम विशेष रूप से संदेश देता है कि हमारे द्वारा किए जाने वाले छोटे छोटे कार्यों में भी अगर लगन और निरंतरता बनी रहे, तो उनके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।
2: CIET NCERT presents the program Little Drops of Water।

0: अभी आपने सुना यह खूबसूरत कार्यक्रम, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मरदा थिमक्का।
1: ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण संरक्षिका सालू मरदा थिमक्का के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए योगदान की जानकारी देता है। कार्यक्रम एक नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मरदा थिमक्का।
1: भारत में प्राचीन काल से ही पेड़ पौधों और वनस्पति को आदर देने का शास्त्रीय और सामाजिक प्रचलन रहा है। वेदों और अन्य शास्त्रों में हमें ऐसे मंत्र और विवरण प्रचुरता से मिलते हैं। भारत की जनजातीय संस्कृति में पर्यावरण से संबंधित पर्व त्योहार, लोक कथाओं और रीति विधियों की भरमार है।
2: शेष विश्व ने बहुत बाद में ये महसूस किया कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी में पेड़ पौधों और वनस्पति का सीधा संबंध जीवन के अस्तित्व से है।
1: ऐसे में हमारा ध्यान जाता है उन महान व्यक्तित्वों पर जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम बात करेंगे एक विलक्षण पर्यावरणविद स्त्री की, जिन्होंने पर्यावरण के संरक्षण में अभूतपूर्व काम किया है।
2: लेकिन कैसे हुआ ये सब? किन बातों ने उन्हें प्रेरित किया पर्यावरण की सेवा करने के लिए? आइए जानते हैं। इनका नाम है
3: सालू मरदा थिमक्का, समाज सेवा।

0: श्रीमती थिमक्का। इनका जन्म 8 जुलाई 1911 में दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के तुमकुरु जिले के गुब्बी गांव में हुआ था। श्रीमती थिमक्का कर्नाटक में ही रहती हैं। ये बहुत ही निर्धन परिवार से आती हैं। पैसे के अभाव के कारण इन्होंने जंगल में मवेशी चराने का काम किया और बाद में एक स्थानीय खदान में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य करना शुरू किया। इन्हें पौधों से बहुत प्यार था।
1: समय बीतता गया। गरीबी और सुविधाओं की कमी के कारण वो कभी स्कूल नहीं जा पाई।
0: खदान में काम करते करते उनका विवाह पास के ही होलिकल गांव के श्री बिक्काला चिकैया से हो गया और वो दोनों अपने दाम्पत्य जीवन में व्यस्त हो गए।
1: अपने छोटे से घर के बाहर भी उन्होंने बहुत सारे पौधे लगाए।

0: प्रतिदिन खदान में काम पर जाना और सुबह शाम खदान और घर के पौधों की देखभाल करना उनकी दिनचर्या थी।
1: इस काम में उन्हें अपने पति का भी भरपूर सहयोग मिला। उनका घर एक छोटी मोटी नर्सरी बन गया था जिसमें पौधों की बहुत सी किस्में थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बस एक कमी थी जो दोनों को बहुत खलती थी।
0: उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो अक्सर बहुत दुखी रहते थे। गांव वालों के ताने और लोगों द्वारा तरह तरह की बातों को सुनकर वो बहुत आहत हो जाते। इस बारे में अक्सर पति पत्नी में बातें होती।
2: जी सुनिए, विवाह को इतने वर्ष बीत गए, अभी तक हमें संतान का सुख नहीं मिला है।
3: तिमक्का, तुम इन बातों को ज्यादा मत सोचो। देखो, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। सिर्फ उसकी कृपा हो जाए तो ये सुख भी हमें मिल जाएगा।
2: लेकिन कब तक हम ऐसे ही रहेंगे?
3: हाँ।
2: मुझसे गांव वालों के ताने नहीं सुने जाते।
3: कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
2: लोग कहते हैं मैं मनहूस हूँ।
3: नहीं, बिल्कुल नहीं।
2: किसी को खुशी नहीं दे सकी। मुझे लगता है मेरे जीवन का।
3: अरे नहीं नहीं नहीं तिमक्का, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहते। अरे ऐसे तो कोई बात नहीं है, लोगों का तो काम ही है कहना, कहने दो उन्हें। सब ठीक हो जाएगा तिमक्का, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा क्यों ना एक काम करें, हम थोड़ी देर के लिए बगीचे में चलें। चलो आओ, उठो उठो, शाबाश। हाँ हाँ, उठो, आजा, आओ। हाँ, देखो कितने सारे पौधे लगे हैं यहाँ, ये तुमने तो लगाए हैं अपने हाथों से। देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता तिमक्का कि तुम्हें देखकर ये कितने ज्यादा खुश हो रहे हैं?
2: क्यों खुश नहीं होंगे, ये तो मेरे बच्चे के समान है।
3: अरे बच्चे के समान नहीं, ये तुम्हारे बच्चे हैं थिमक्का, तुम्हारे बच्चे।
2: हाँ।
3: संतान ना होने के कारण दुखी होकर रोते रहने से तो अच्छा है कि क्यों ना हम अपना पूरा प्यार इन्हीं बच्चों पर उड़ेल दें।
2: शायद आप ठीक कहते हैं। हाँ। ये हमारे बच्चे ही है।
3: हाँ। हाँ। बिल्कुल सही कहा तुमने। ये हुई ना बात।
1: फिर क्या था, अब उन्हें खुशी से जीने की मानो एक मंजिल मिल गई थी, एक लक्ष्य मिल गया था। इस घटना के बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके गांव के सामने से होलिकल और कुदुर का राजमार्ग जाता था।
0: उन्होंने देखा कि राजमार्ग पर पेड़ बहुत कम थे। मक्का अक्सर सोचती,
2: सुनिए देखो कितना अच्छा होता यदि सड़क के किनारे किनारे बहुत से पेड़ होते।
3: हाँ, ये तो है।
2: राहगीरों को सस्ताने के लिए ठंडी छांव तो मिलती।
3: सही कहा।
2: और हाँ, पक्षियों को भी बसेरा मिल जाता।
3: बिल्कुल,
2: उन्हें खाने के लिए फल मिल जाते। तो ऐसा ही क्यों ना करें।
3: बिल्कुल सही सुझाव है तुम्हारा। हम लोग ऐसे ही करते हैं।
2: ठीक है,
3: इसके दोनों तरफ पेड़ लगाते हैं, ठीक है ना?
2: बिल्कुल ठीक है।
1: पति पत्नी ने निर्णय किया कि शुरुआत में वो सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी तक पेड़ लगाएंगे। उन्होंने सड़क के दोनों ओर बरगद के 20 पौधे लगाए।
0: कोई भी सोच सकता है कि पौधे लगाना भला कौन सी बड़ी बात है, मिट्टी खोदी और पौधा लगा दिया। लेकिन साथियों, किसी को वास्तविकता का पता तभी चलेगा जब वो स्वयं न सिर्फ पौधे लगाएंगे बल्कि उनकी पेड़ बनने तक रक्षा करेंगे।
1: काम आसान नहीं था, उन्हें बरगद के इन पौधों की रक्षा करनी थी। कर्नाटक का ये क्षेत्र शुष्क है, इसलिए पौधों को पानी भी देना था और उन्हें जानवरों से भी बचाना था।
0: वो दोनों सुबह शाम और छुट्टियों के दिन सड़क पर बाल्टी लेकर आते जाते हुए दिखते। उपहास करने वालों को क्या पता था कि पौधों

0: लोगों से उनका रिश्ता साधारण नहीं बल्कि माता पिता और बच्चों का है।
1: जी सुनिए।
2: हाँ।
1: ये बाल्टी इधर लेकर आइए।
2: ये लो थिमक्का, ये भी ले लो, इसे भी भर दो।
1: हाँ।
2: अब मैं यहाँ डालता हूँ पानी।
1: अरे इधर इसको भी डालो।
2: हाँ,
1: ये देखो
2: देखो देखो कितना छोटा था ना ये पौधा, कितना हाँ। छोटा था, देखो अब कितना बड़ा हो गया है ना।
1: प्यारा लग रहा है। हाँ।
3: लोगों की बातों की परवाह ना करते हुए उन्होंने कभी अपने उस संकल्प को हारने नहीं दिया, लेकिन हाँ, उन्होंने धीरे धीरे ये महसूस किया कि मानसून के समय यदि वो पौधों को लगाएं, तो पौधों को पर्याप्त मात्रा में जल मिलेगा और वो अच्छी तरह से बढ़ेंगे भी।
0: बात निकली तो दूर तक पहुंचती चली गई। उन्होंने अपना पूरा स्नेह पौधों पर उंडेल दिया और हर साल पेड़ों की गिनती बढ़ती चली गई। धीरे धीरे लोगों ने भी साथ देना शुरू किया। सड़क के दोनों ओर धीरे धीरे बरगद के पौधे पनपने लगे और बढ़ते चले गए।
2: देखा थे मक्का, तुम्हारी मेहनत रंग लेकर आ गई है। कितने अच्छे लग रहे हैं ना पौधे ये। हाँ। और कितने बड़े भी लग रहे हैं।
1: अरे ये तो देखो कितना बड़ा हो गया।
2: हाँ।
1: सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी बड़े हो जाएंगे।
2: हाँ, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है।
4: अरे देखो तो कैसी हरियाली हो गई।
5: ऐसा हमारा शहर हो,
3: लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना घटी। श्रीमती थिमक्का के पति का निधन हो गया। उन्होंने पति के साथ पेड़ लगाने के जिस काम को शुरू किया था उस काम को जारी रखा। 1940 के दशक से वो आज तक पेड़ लगा रही हैं। थिमक्का होलिकल और कुदूर के बीच स्थित 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 400 पेड़ लगाने के लिए विख्यात हैं। साथियों, सालू मर्दा थिमक्का की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। उन्हें पर्यावरणविदों ने वृक्ष अम्मा की संज्ञा दी है। उन्होंने अपने क्षेत्र में जैव विविधता वाले कुल 8,000 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं, जिससे स्थानीय पर्यावरण को बहुत लाभ पहुंचा है। उन्हें 8,000 पेड़ों की माता की उपाधि भी दी गई है।
0: उनके क्षेत्र में मौसम पहले बहुत शुष्क हुआ करता था, लेकिन अब उसमें नमी बढ़ी है और वर्षा भी पहले से अधिक होने लगी है। पर्यावरण के प्रति उनकी इस विलक्षण सेवा को देखते हुए सन 2019 में भारत सरकार ने उन्हें देश के द्वितीय नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया।
6: सालू मर्दा थिमक्का, समाज सेवा।
3: 113 वर्ष की सालू मर्दा थिमक्का का कहना है,
7: किसी पौधे को देखिए तो उसे धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन को खुशहाल और बेहतर बना सकता है। पेड़ हमारी जीवन रेखा है, जीवन रेखा, समझे? हाँ।
3: सालू मर्दा थिमक्का, वृक्ष अम्मा और 8,000 पेड़ों की माता, आपको हमारा आभार। अपने वात्सल्य और ममता को आपने पेड़ पौधों में उंडेल कर और उन्हें अपनी संतान बनाकर मातृत्व का एक ऐसा नूतन, अनुकरणीय और अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसे सदा याद रखा जाएगा।
8: अभी आप सुन रहे थे विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मर्दा थिमक्का। इस रेडियो नाटक के सभी पात्र काल्पनिक हैं। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय पटी लैंगलिंगडो, ध्वनिंकन विकास सांगवान, कलाकार सुषमा शर्मा, सुनील लोहिया, प्रवीण शर्मा, परवेज गौहर और शिमाइला परवेज, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो,

निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण कुसुमलता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मरदा थिमक्का। CIET NCERT द्वारा

0: वन में मेरा मन है।
1: पेड़ों की हरियाली, ठंडी ताजी हवा एक नई ऊर्जा का एहसास दिलाती है। सच में वन एक बहुत उपयोगी प्राकृतिक संपदा है, फिर भी पता नहीं क्यों हम अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ये भूल जाते हैं कि इनकी देखभाल और सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है। अरे, ये आवाज कैसे सुनाई दे रही है इधर से? लगता है कोई गा रहा है, जरा सुना जाए।

0: देखो वनों के होते हैं कितने प्रकार। कुछ वन पर्वतीय, कुछ पतझड़ीय, तो कुछ सदाबहार।
1: कहीं तेंदू तो कहीं महुआ, कहीं साल तो कहीं पलाश। बचाएं इनको हमें कहीं करनी न पड़े फिर तलाश।

0: अरे वाह, कितना सुंदर संदेश था। सच ही तो कहा है, वन से ही जीवन है। वन है तभी तो हम हैं। तो क्यों ना हम सभी अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों में सावधानी बरतकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें और वनों के संरक्षण में अपना योगदान दें। जैसे वनों से मिलने वाली चीजों, कागज, लकड़ी का समुचित उपयोग, पेड़ों की कटाई को रोकना, नए पेड़ लगाना और भी बहुत कुछ। आप भी सोचिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए।
1: वन में मेरा मन है। अभी आप सुन रहे थे ये पर्यावरण गीत। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रुचि वर्मा, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, आलेख अंजलि, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, गायन स्वर पुन्यांशी और अनुष्का, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, परामर्श अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री IVRS नंबर है 8800440559। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब हमें आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा दीजिए। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के

0: कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी, कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
2: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिस, जिसमें आज आप सुनेंगे कवाली पर आधारित कार्यक्रम महफिल शमा।

सामिन, अभी आप महमूद नियाजी, अनवर हुसैन और उनके हमनवाओं की आवाज़ों में यह कव्वाली सुन रहे थे। तो सामिन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम महफिल समा। इसी के साथ अपनी मेज़बान फरहीन इकबाल को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। 4 बजने को है, आपसे कुछ ही देर में समाचार प्रसारित होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस ने आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा की। दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
1: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश यूक्रेन और पश्चिम एशिया संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इससे पहले आज सुबह विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल BSF के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सरकार घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर करेगी। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देशभर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के CBI के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष ये मामला उठाया था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हाल के परिपत्र के अनुसार 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंप दी है।

ट्विशा शर्मा 12 मई को कटारा हिल्स स्थित अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और उनके सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। गिरिबाला सिंह सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेगाबालिन दवा को औषधि नियम के अनुसूची H1 में शामिल करने की अधिसूचना जारी की है ताकि युवाओं में इसके दुरुपयोग को रोका जा सके। ये दवा पुराने दर्द, तंत्रिका संबंधी विकारों और तंत्रिका संबंधी स्थितियों के उपचार के लिए निर्धारित है, परंतु इसकी आदत और इसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है। प्रेगाबालिन की बिक्री अब केवल पंजीकृत चिकित्सक से जारी वैध पर्चे के आधार पर ही की जा सकती है। रेल मंत्रालय ने यात्रियों की सुविधा के लिए अगरतला रानी कमलापति स्पेशल रेलगाड़ी संख्या 01665 के नियमित संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी अब 11666 और 11665 अगरतला रानी कमलापति एक्सप्रेस के नाम से नियमित रूप से चलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आधिकारिक पत्र के माध्यम से सांसद विप्लव कुमार देव को इस संबंध में सूचित किया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। 4:10 हुए हैं और वक्त हुआ है गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में सूचना का। ये गुमशुदा व्यक्ति हैं गुंजन, पुत्री संदीप, निवासी गांव नादरपुर। ये 9 साल की लड़की हैं, रंग गोरा, पतला फुर्तीला शरीर, कद 3.5 फीट। गुंजन अपनी माता के साथ चली गई हैं अपनी मर्जी से और अभी तक वापस नहीं आई हैं। इनके बारे में अगर आपको कोई भी सूचना मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं ASI संजय कुमार, थाना सेक्टर 65, गुरुग्राम से। अगली गुमशुदा व्यक्ति है सीमा, पुत्री संदीप। इनकी उम्र 4 साल है, हष्ट-पुष्ट शरीर, रंग गोरा, कद 2.5 फीट। ये भी अपनी माता के साथ चली गई हैं और अगर इनके बारे में आपको कोई भी सूचना मिलती है तो संपर्क कर सकते हैं SHO पुलिस स्टेशन सेक्टर 65, गुरुग्राम से। अगली जो गुमशुदा हैं वो हैं लक्ष्मी, पुत्री विजेंद्र, निवासी सरस्वती कुंज गली नंबर 2, उम्र 20 वर्ष, आंख नाक कान औसत, कद 5 फीट, रंग गोरा। इनके बारे में अगर आपको कोई भी सूचना मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं उपनिरीक्षक अनुज कुमार, पुलिस स्टेशन बिसरख, जनपद गौतम बुद्ध नगर से। आप इनसे मोबाइल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7355491409। अगली गुमशुदा है विद्या, पुत्री चंदू, निवासी। इनको आखिरी बार सी ब्लॉक मकान नंबर 285 सेक्टर 3 में देखा गया। उम्र 20 वर्ष, हल्का शरीर, कद 5 फीट 1 इंच और ये घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं। इनके बारे में अगर कोई भी सूचना आपको मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं मनोज कुमार, उपनिरीक्षक थाना बिसरख, जनपद कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से। इनसे आप मोबाइल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7017

0: 4769 16। नंबर एक बार फिर से नोट करें, 7017746916 पर। अगली गुमशुदा है निशा कुमारी, उम्र 20 वर्ष, इकहरा पतला बदन, कद 5 फीट 4 इंच। बिना बताए ये घर से कहीं चली गई हैं। इनके बारे में अगर आपको कोई भी सूचना मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं प्रभारी निरीक्षक थाना इकोटेक 3, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से। अगले गुमशुदा हैं प्रांशु कुमार, आखिरी बार इनको आचार्य प्रशांत प्लॉट नंबर C83 सेक्टर ग्रेटर नोएडा में देखा गया। इनकी उम्र 46 वर्ष, कद 5 फुट 8 इंच, रंग गोरा। इनके बारे में अगर आपको कोई भी सूचना मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं प्रभारी निरीक्षक थाना B2 कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से। अगली गुमशुदा हैं अंजलि, पुत्री सुरेंद्र, ग्राम आकलपुर थाना बादलपुर गौतम बुद्ध नगर। उम्र 19 वर्ष, इकहरा बदन, कद 5 फीट 1 इंच, रंग गेहुआ। ये घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं। इनके बारे में अगर आपको कोई सूचना मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं SI नितिका गोयल थाना बादलपुर गौतम बुद्ध नगर से। आप इनसे फोन के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। कोई भी सूचना अगर आपको मिलती है तो आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं। नंबर है 9315699829। नंबर एक बार फिर से नोट करें, 9315699829 पर। एक और नंबर है जिसे आप नोट कर सकते हैं, 9555964115। अगले गुमशुदा हैं तमन्ना, पुत्री यशपाल, पुत्री ये हैं मटोना से हैं और इनकी उम्र करीब 22 वर्ष है। आंख नाक कान औसत, इकहरा बदन, कद 5 फीट 2 इंच। ये बिना बताए घर से चली गई हैं। इनके बारे में अगर आपको कोई भी सूचना मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रबुपुरा जनपद गौतम बुद्ध नगर से। अगले गुमशुदा व्यक्ति हैं चंदन कुमार, उम्र 35 वर्ष, रंग सांवला, कद 6 फिट, सीधे हाथ की उंगली में जले का निशान है। मानसिक रूप से ये ठीक नहीं है। इनके बारे में अगर आपको कोई भी सूचना मिलती है तो 10,000 की इनाम राशि रखी गई है। आखिरी बार तकरीबन 9 बजे इन्हें 12 नंबर प्लेटफॉर्म नई दिल्ली पर देखा गया। इनके बारे में अगर आपको कोई भी सूचना मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं दिलीप कुमार से। ये थी गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में जानकारी।
1: आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
0: अभी आपने सुना गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में जानकारी।

The Lal Bahadur Shastri Krishi Vigyan Kendra, under the Deen Dayal Research Institute and sponsored by the Indian Council of Agricultural Research, has invited applications for the post of an assistant, program assistant computer, stenographer grade 2 and driver under an ICAR funded project in Gopalgram, Gonda, Uttar Pradesh. The post carry pay scales from level 3 to level 6 as per the 7th CPC. Candidates must possess qualifications ranging from matriculation to bachelor's degree along with relevant experience in accounting, computer application, stenography or driving, depending on the post applied for. The maximum age limit is 30 years. Applications must be submitted within 30 days from the release of this advertisement in the Employment News. For details, kindly refer to the website at www.gonda.kvk4.in. And now we have the employment news in Hindi. Samachar Seva Prabhag prastut karta hai Rozgar Samachar. नमस्कार, रोजगार समाचार के साथ हाजिर हूँ मैं विनीता। आइए कुछ जानकारी लेते हैं रेतियों से संबंधित। जयपुर में डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित डॉक्टर अंबेडकर चेयर कुछ पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम हम आपको बता दें, सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अंबेडकर चेयर, ये है 5 वर्ष की अवधि पर आधारित और पदों की संख्या 1 है। श्रेणी होगी, खुली हुई श्रेणी है ये। दूसरा पद है डॉक्टरल अध्येता का और पदों की संख्या यहाँ पर है 2, श्रेणी खुली हुई है। पात्र उम्मीदवार जो पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें आवेदन पत्र के साथ 10 जून 2026 तक उन्हें भेज देना है। इस विषय के विकल्प तौर पर पूर्ण आवेदन पत्र आप भेज सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं jnujaipur.ac.in/dr-ambedkar-chair। इससे संबंधित और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं jnujaipur.ac.in पर। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान शिक्षण एवं गैर शिक्षण पदों के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करता है। फैकल्टी पदों के लिए ये विज्ञापन है, एसोसिएट प्रोफेसर, इनके लिए एससी एसटी एनसी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी इन सब के लिए विशेष भर्ती अभियान के लिए ये विज्ञापन है। सहायक प्रोफेसर के लिए भी नियमित और संविदा विजिटिंग के लिए भी विशेषज्ञता होनी चाहिए, उनके पास कॉरपोरेट फाइनेंस, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक थ्योरी, टाइम सीरीज इकोनॉमिक्स, साथ में ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, ऊर्जा एवं जलवायु परिवर्तन, राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर डिग्री होनी चाहिए। गैर शिक्षण की बात अगर करें तो पद का नाम हम आपको बता देते हैं, निदेशक के निजी सचिव पे लेवल 7 के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर रिक्ति है 1 और अधिकतम आयु सीमा है 35 वर्ष। मानव संसाधन अधिकारी पे लेवल 10 के अंतर्गत ये आते हैं और कुल रिक्ति यहाँ पर भी 1 ही है, 40 वर्ष इसमें अधिकतम आयु सीमा है। शैक्षणिक एवं छात्र मामलों के अधिकारी पे लेवल 10 के अंतर्गत 1 स्थान यहाँ पर रिक्त है, 40 वर्ष यहाँ अधिकतम आयु सीमा है। सहायक सिस्टम विश्लेषक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे लेवल 10 के अंतर्गत आते हैं, 1 स्थान रिक्त है, 40 वर्ष के लिए। सहायक प्रशासनिक अधिकारी मानव संसाधन एवं प्रशासन के लिए जो कि पे लेवल 7 के अंतर्गत आते हैं, कुल रिक्तियां यहां पर भी 1 है और अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष। लेखा सहायक के लिए भी 35 वर्ष अधिकतम आयु सीमा है, 1 स्थान रिक्त है। और सहायक मानव संसाधन पे लेवल 6 के अंतर्गत आते हैं, 1 स्थान रिक्त है, 35 वर्ष इसमें अधिकतम आयु सीमा है। संविदा आधार पर प्रतिनियुक्ति आधार पर पद जो है उसकी जानकारी आपको दें, अनुसंधान अनुदान एवं योजना अधिकारी पे लेवल 10 के अंतर्गत आते हैं, कुल रिक्तियां हैं 1, अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है। सहायक प्रशासनिक अधिकारी छात्र एवं शैक्षणिक मामले के लिए पे लेवल 7 है और कुल रिक्तियां यहां पर 1 है, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है। प्लेसमेंट अधिकारी पे लेवल 7 के अंतर्गत आते हैं, कुल रिक्तियां 1 है और 35 वर्ष यहां अधिकतम आयु सीमा है। सहायक विद्युत अभियंता पे लेवल 7 है, 35 वर्ष यहां अधिकतम आयु सीमा है। पुस्तकालय सहायक के लिए पे लेवल 4 है, कुल रिक्तियां 1 है, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है। आवेदन विंडो खुल चुका है, 8 जून 2026 तक अपने आवेदन दे देने हैं। संस्थान का वेबसाइट पर भी समस्त जानकारी अपलोडेड है, www.igidr.ac.in/careers पर जाएं और वहां से समस्त जानकारी आप ले सकते हैं।

0: आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: अभी आपने सुना एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ को। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर 4:30 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे देश विदेश की खबरों को समेटे हुए कार्यक्रम परिक्रमा। तो लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम परिक्रमा।
3: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
4: नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में आपको देंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार और चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ खास है उनके पास। खेल के मैदान की हलचल भी रहेगी और आर्थिक जगत पर भी होगी हमारी नजर। इसके अलावा बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। और सेगमेंट होगा डेडलाइन, जिसमें आज बात होगी जैव विविधता, यानी इस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में जो छोटे से लेके बड़े जीव जंतु, जानवर, मनुष्य, हम सभी रहते हैं। आज का दिन उन सब के नाम है, तो इसके बारे में भी बात होगी। आज के इस अंक में मैं हूँ जागृति शर्मा और मेरे साथ हैं अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
5: हेलो जागृति, हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द न्यूज़ मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा 100.1 FM गोल्ड। I am Abhishek Mukhopadhyay and with me today is of course my co-host Jagriti Sharma. And well listeners, Sherlock Holmes remains enduringly popular because of his captivating personality. Secondly, his brilliant method of using logic and science to solve mysteries. And thirdly, the relatable friendship he shared with Dr. Watson. Yes, we are talking about Sherlock Holmes because Sir Arthur Conan Doyle celebrates his birthday today. And Sir Arthur Conan Doyle remains globally popular because firstly, he created Sherlock Holmes, one of the most adapted and enduring fictional characters in history. Secondly, his works revolutionized the mystery genre by introducing early forensic techniques. And lastly, his dynamic engagement writing style that has captivated audiences for generations. And we shall talk about him later in a program. But first, we begin with the news headlines at this hour.
4: जी, शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ चर्चा की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना।
5: इलेक्शन कमीशन अनाउंसेस बायनियर इलेक्शंस फॉर 24 राज्यसभा सीट्स फ्रॉम 10 स्टेट्स ऑन द 18th ऑफ नेक्स्ट मंथ।
4: सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के सीबीआई के फैसले के खिलाफ याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा।
5: आईएमडी इश्यूज रेड अलर्ट फॉर सीवियर हीट वेव ऑफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड विदर्भ टिल टुमारो।
4: और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से।
5: And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about International Day for Biological Diversity. Well, Jagriti, every year, May 22nd is marked as the International Day for Biological Diversity by the United Nations. And this day serves as a reminder of the incredible diversity of species, ecosystems and genetic resources that make a planet unique. Biodiversity is the foundation of our food, water, air and overall well-being, and the increasing rate of species extinction, habitat loss and degradation poses a significant threat to biodiversity. And the International Day for Biodiversity aims to raise awareness about these challenges and promote efforts to protect and conserve biodiversity. And the theme for this year's International Day for Biological Diversity is Acting Locally for Global Impact. And this theme emphasizes that reversing global biodiversity loss starts on a small local scale and relies heavily on the combined efforts of

0: communities, local organizations, and individuals.
1: बिल्कुल, और जैव विविधता अपने आप में एक बहुत ही व्यापक शब्द है जिसका उपयोग पौधों, जानवरों, सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियों और उस पारिस्थितिकी तंत्र के लिए किया जाता है जिसमें सब मिलकर रहते हैं, आपस में मेलजोल रखते हैं और फलते फूलते भी हैं। जैव विविधता प्रजातियों के बीच, प्रजातियों के भीतर और पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच पाई जाने वाली विविधता है। जैव विविधता में ऊंचे ऊंचे रेडवुड पेड़ों से लेकर सूक्ष्म एक कोशिकीय शैवाल तक सब कुछ शामिल हो सकता है जिन्हें बिना माइक्रोस्कोप के देखना असंभव है। जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्रों के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि प्रत्येक प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ पर जो प्रजातियाँ हैं वो आपस में जुड़ी हैं, एक दूसरे पर कई बार निर्भर भी होती हैं। जिस तरह से हम कई बार देखते हैं कि जंगल जो है जानवरों का आवास है, जानवर पौधे खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं, कई जानवर दूसरे जानवरों को भी खाते हैं। पौधों को बढ़ने के लिए स्वस्थ मिट्टी की आवश्यकता है। कवक जीवों को विघटित करके मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। मधुमक्खियां और अन्य कीट पराग एक पौधे से दूसरे पौधे तक ले जाते हैं और इसी से पौधों का प्रजनन संभव होता है। जैव विविधता कम होने पर ये जो हम एक साइकिल देखते हैं आपस में जो जुड़ा हुआ है वो संबंध कमजोर होने लगते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये संबंध टूट भी जाते हैं और इससे पारिस्थितिकी तंत्र की जो सभी प्रजातियां हैं इनको नुकसान भी होता है। और अधिक जैव विविधता जहां पर होती है जिस भी पारिस्थितिकी तंत्र में और जहां पर कम प्रजातियां हैं जिस किसी पारिस्थितिकी तंत्र में, तो जो अधिक विविधता वाला पारिस्थितिकी तंत्र है वो अधिक स्थिर होता है और आपदाएं वहां कम आती हैं और वो उसके लिए और अधिक प्रतिरोधी बन जाता है।
0: एब्सोल्युटली जागृति, एंड बायोडाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड ऑन अर्थ। प्लांट्स फॉर इंस्टेंस आर द ओनली सोर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑल्सो प्रोवाइड फूड, मेडिसिन, फाइबर एक्सेट्रा। Plants, fungi and worms keep the soil fertile and water clean. And as biodiversity decreases, these systems break down. And biodiversity loss is a decrease in the number of particular species in a certain habitat. Loss of biodiversity can lead to extinction of plant and animal species. Around 1 million species already face extinction, many within decades, unless urgent action is taken, and one out of every 8 living species is in danger of extinction.
1: बिल्कुल, जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन का सबसे अनमोल खजाना है। छोटे कीड़ों से लेकर विशालकाय पेड़ों तक सभी जीवों के आपसी संतुलन और निर्भरता को दर्शाता है। और देखा जाए तो कुछ पंक्तियां अगर इस पे हम देखें कि अंबर से लेकर पाताल तक फैला जीवन का संसार, छोटे कीड़े और विशालकाय जीव सब करते प्रकृति का श्रृंगार। कोई उड़ता नभ में उन्मुक्त, कोई तैरता सागर की गहराई में, हर एक जीव की अपनी कहानी जो बसती है प्रकृति की इस पनाही में। और ये जो लगातार अभी हाल ही में हो या फिर अतीत में हो, कीमती प्रजातियां जो हैं इनका अंधाधुंध दोहन हो रहा है और उनके आवासों के नष्ट होने के कारण कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। उदाहरण के लिए पक्षियों की कई ऐसी प्रजातियां हैं जो अब विलुप्त हो चुकी हैं, जैसे कि डोडो पक्षी, ग्रेट ऑक, पैसेंजर कबूतर और गौरैया भी। अभिषेक, अगर आप गौर करें तो बहुत कम हो गई है।
0: Absolutely.
1: बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं, कुछ चिड़िया ऐसी हैं जो हमारे जमाने में हुआ करती थी, लेकिन अभी जो शहरों में बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें हैं या कह लीजिए ये टावर्स हैं, उनकी वजह से अब वो एक तरह से नष्ट हो गई, हमें दिखती ही नहीं है। पृथ्वी की वैश्विक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में जबकि ये जो प्रजातियां हैं ये बहुत ही अहम रोल अदा करती हैं। जैव विविधता के नुकसान से जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया भी तेज हो जाती है, जो आजकल हम देख रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग है, हीट वेव लगातार हो रहा है, सर्दियां होती है तो सर्दियां बहुत ज्यादा होती हैं कहीं पर, मतलब क्लाइमेट चेंज है और जो डिजास्टर्स हैं बहुत सारे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो जैव विविधता के बीच जो असंतुलन पैदा हुआ है, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कारण है उसके लिए।
0: Jagriti, biodiversity is vital for sustainable development and it plays a crucial role in providing ecosystem services such as clean air, water, pollination, soil fertility and climate regulation. And the International Day for Biodiversity emphasizes the link between biodiversity conservation and achieving the sustainable development goals. Private organizations, government institutions, NGOs and individuals should all join hands to protect biodiversity which is vital for the sustenance of mankind. And every day we have to be very sensitive towards biodiversity. So

0: that it survives and supports life on the planet, isn't it, Jagriti?
1: बिल्कुल. और अगर बात करें हम कि वर्तमान में जो मानवीय गतिविधियों के कारण जैव विविधता को गंभीर खतरा हुआ है, इसके कुछ कारण ये भी हैं कि प्राकृतिक आवासों का लगातार विनाश हो रहा है, अंधाधुंध शिकार है, पेड़ों की कटाई हो रही है, जलवायु परिवर्तन की जैसे अभी हमने बात की है, प्रदूषण इसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार कारक है, और विदेशी या आक्रामक प्रजातियों का जब प्रवेश बायोडाइवर्सिटी में होता है तो ये भी इनके लिए कहीं ना कहीं एक गंभीर खतरा पैदा करता है. और अगर हम बात करें कि जैव विविधता का हमारे लिए कितना महत्व है, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूं. पारिस्थितिकी तंत्र का जो संतुलन है ये पर्यावरण को स्थिर और संतुलित रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है. खाद्य सुरक्षा और विविधता के लिए बहुत ज़रूरी है. कृषि फसलों में जो आनुवांशिक विकास है उसमें ये मदद करता है. औषधि निर्माण और स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी जो दवाएँ हैं, एंटीबायोटिक्स हैं या पारंपरिक अगर उपचार जो होते हैं वो हमें पौधों से, कवक और जीवों से ही प्राप्त होते हैं. और जलवायु नियंत्रण तो अपने आप में है ही, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो हमें ऑक्सीजन देता है. और मृदा का स्वास्थ्य और निर्माण करता है, जल का शुद्धिकरण करता है. पॉलिनेशन की प्रोसेस बहुत ज़रूरी है जो हमें पारिस्थितिकी तंत्र से मिलती है. और ये सब मिलकर हमारे आर्थिक विकास और आजीविका का साधन बनते हैं, रोजगार देते हैं. वैज्ञानिक और शैक्षिक जगत में भी इनका बहुत महत्व है, और कहीं ना कहीं हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक जो मूल्य हैं उनमें भी इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है.
0: सो दैट कंक्लूड्स अ वेरी एक्सटेंसिव डिस्कशन ऑन द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. And as part of a series, People's Padma on Akashvani, in an upcoming episode, we speak to N. Rajam, a renowned violinist. She will be honored with the prestigious Padma Bhabhushan. To listen to the conversation, tune into 100.1 Akashvani Gold today evening at 5:10 p.m. And you can also listen to it on the News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. It will also be broadcast tomorrow morning at 9:10 a.m.
1: और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से ये जानने का कि उनके पास आज के लिए क्या विशेष है.
0: Yes, and straight away we start off with a story from the exciting state of Goa. And the two-day Shackathon Goa 2026 event concluded at Kalangut after showcasing Goa as an emerging destination for remote working, innovation and startup culture. And the event focused on promoting a new work from beach concept by bringing together technology, tourism and creative industries. We have more from a correspondent.
2: Shackathon Goa 2026 highlighted Goa's growing popularity among professionals looking for flexible and remote work opportunities. The event promoted Goa as a hub for tourism, technology, innovation and startups. Speaking at the event, Chief Minister Pramod Sawant said,
3: "The Gen Z looks at a career through the completely fresh lens. They refuse to be a typical office setup and they want the flexibility. It is a mental peace and environmental that sparks creativity. That opens the huge opportunity for the Goa, and we are creating the foundation for Goa become the India's preferred the work from home destination and work from beach, where the people can work with a beautiful view. The government is putting the system in place because the talent should find the opportunity here itself."
2: On this, IT and Tourism Minister Rohan Khaunte said,
4: "Goa Shackathon has been creating awareness. Today, as they sit on the beach, they do some problem solving, they create an ecosystem. I think this will be a very strong message to the whole country. We are different. We have absolutely everything that is there but never been showcased. In the last 4 years we have been trying to do it through tourism. Now technology allows us to complement each other and take it one step ahead."
2: The initiative is expected to strengthen Goa's image as preferred destination for workation events where work and vacation are combined and innovation driven activities. According to the state government, Goa has received 1.8 crore tourists in 2025, while international tourist arrivals increased by 10%. The first day of the event focused on artificial intelligence, robotics and startup creation, while the second day highlighted creator economy, AI based design and digital storytelling. For Parikrama, Nikhil Upadhyay, Akashvani News, Panaji.
1: और गोवा से आते हैं उत्तर प्रदेश, जहां प्रदेश सरकार एक जिला एक उत्पाद की सफलता के बाद अब एक जिला एक नदी अभियान के जरिए जल संरक्षण और पर्यावरण पुनरुद्धार की नई कहानी लिख रही है। इसके जरिए नदियों को साफ करने, विलुप्त हो चुकी जलधाराओं को पुनर्जीवित कर

0: ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी तंत्र में सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया जा रहा है। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में।
1: स्वच्छ गंगा मिशन के तहत नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने कई विभागों के साथ मिलकर प्रदेश भर में छोटी नदियों के पुनरुद्धार के लिए परिवर्तनकारी पहल की है। योजना के तहत पीलीभीत में 16 ग्राम पंचायतों में फैली 47 किलोमीटर के क्षेत्र में गोमती नदी का पुनरुद्धार किया गया। कई जगहों पर नहर को चौड़ा व गहरा किया गया। बुलंदशहर में VBG राम जी के जरिए 29 किलोमीटर में नीम नदी का पुनरुद्धार किया गया। इसमें किसानों ने भी स्वेच्छा से सहयोग किया। इस पहल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में सराहना भी की थी। इसके साथ ही कारवां नदी और काली नदी का भी पुनरुद्धार किया गया, जहां दर्जनों ग्राम पंचायतों में गाद निकालने, पौधरोपण और सामुदायिक भागीदारी से घाटों पर सिंचाई, जैव विविधता और सांस्कृतिक प्रथाओं को बहाल किया गया। इसी तरह छोटे छोटे नालों में बदल चुकी संभल की सोत नदी को जन भागीदारी से जीवन दान दिया गया। रामपुर में रेवती, नाहल और नीली तीन मौसमी धाराओं को पुनर्जीवित किया गया। राज्य स्वच्छ गंगा मिशन परियोजना निदेशक जोगिंद्र सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में छोटी नदियों के जीर्णोद्धार से शानदार परिणाम सामने आए हैं। ये नदियाँ जो कभी लगभग विलुप्त हो चुकी थीं, अपने वास्तविक रूप में लौट रही हैं। परिक्रमा के लिए राघवेंद्र त्रिपाठी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: Yes, and Ladakh Astro Week is underway in the Union Territory, turning the region's dark Himalayan skies into a week-long celebration of stars, science and tourism. We have more from a correspondent.
3: The second edition of Ladakh Astro Week is underway in the Union Territory from May 20th to 26th, with the Tourism Department positioning Ladakh as a global hub for astronomy and astrotourism. Building on last year's two-day debut, the festival has been expanded into a week-long celebrations of the cosmos. The event is currently hosting expert-guided stargazing sessions, talks by scientists, astrophotography exhibitions, and theme stall across multiple locations. Activities are being held in Nubra Valley, Sham Valley, Dras and Hanle, which houses the Indian Astronomical Observatory, one of the world's highest. Organizers says the festival showcases Ladakh's pristine environment and exceptionally dark skies, ideal for astronomical observations. The director of Tourism Department, UT Ladakh, Sringpaldan, has said that the ongoing event aims to boost tourism while spreading scientific awareness about astronomy and related fields.
4: Ladakh Astro Weeks manane ka jo मेन पर्पस है लद्दाख को ग्लोबल एस्ट्रो टूरिज्म पे ले जाने का, और दूसरा जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है लद्दाख में जो साइंटिफिक नॉलेज एस्ट्रो टूरिज्म, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी के बारे में वो करने के लिए ये फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज किया था। लास्ट ईयर हमने 2 दिन का ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था और इस साल हमने वीक लॉन्ग ये फेस्टिवल रखा है। इस फेस्टिवल को हमने नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए डेट हमने फिक्स किया है, सो देट वी कैन प्रमोट एट अ ग्लोबल एंड डोमेस्टिक लेवल ऑल्सो। इस फेस्टिवल को प्रमोट करने के लिए OTM या साटे जितने भी ट्रेवल ट्रेड शोज फेस्टिवल होते हैं, वहाँ पे हमने इस फेस्टिवल को प्रमोट करने की हमने कोशिश किया है। हमारा तो यही कोशिश है कि लद्दाख को एस्ट्रो टूरिज्म के फील्ड में ग्लोबल एक हब बनाने का हमारा मेन उद्देश्य है।
3: ऑर्गेनाइजर्स बिलीव एस्ट्रो वीक विल हेल्प डाइवर्सिफाई लद्दाख टूरिज्म बाय अट्रैक्टिंग एस्ट्रोनॉमर्स, रिसर्चर्स, एस्ट्रो फोटोग्राफर्स एंड ट्रेवलर्स सीकिंग यूनिक नाइट स्काई एक्सपीरियंसेस इन द हिमालयस। फॉर परिक्रमा, दिस इज सेतन ताशी फ्रॉम लेह लद्दाख।
0: लेह लद्दाख से चलते हैं चाय के बागानों की ओर। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कल भव्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया, और इस अवसर पर चाय बागानों में वर्षों से काम करने वाले चाय के श्रमिकों को सम्मानित किया गया। कई जगहों पर निशुल्क दार्जिलिंग चाय के स्टॉल लगाए गए। उद्योग कर्मियों और उनसे जुड़ी कंपनियों के इसमें विशेष कार्यक्रम हुए। आइए जानते हैं और अधिक इस रिपोर्ट में।
5: पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, तराई तथा डुअर्स में कल भव्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस का पालन किया गया। राज्य के इन इलाकों में करीब 400 से अधिक छोटे बड़े चाय बागान हैं, जहां लाखों श्रमिक काम करते हैं। सन 1853 से यहां के चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों को याद किया गया। दार्जिलिंग पहाड़ में 87 पंजीकृत चाय बागान है, जो प्रतिवर्ष लगभग 150 से 200 मिलियन किलोग्राम चाय का उत्पादन करते हैं, जिसका करीब 50% उत्तम गुणवत्ता के चाय यूरोप, अमेरिका, जापान आदि देशों में निर्यात किया जाता है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दार्जिलिंग पहाड़ के लिए चाय केवल एक कप का प्याला नहीं है, बल्कि यहाँ की संस्कृति, आजीविका तथा आर्थिक स्रोत का मेरुदंड है। इस वर्ष के चाय दिवस की थीम चाय को बनाए रखना तथा समुदाय को समर्थन देना है।

0: राम सिकसरिया की आज पुण्यतिथि है। उन्हें भारत के कॉटन किंग के नाम से भी जाना जाता था। कपास बाजार में सफलता प्राप्त करने के बाद गोविंद राम सिकसरिया ने अपने क्षितिज का विस्तार किया और सर्राफा तथा अन्य कमोडिटी बाजारों में भी प्रवेश किया। वे भारतीय स्टॉक एक्सचेंज के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। कॉटन किंग गोविंद राम ने अपने जीवन काल में लगभग 2 करोड़ रुपए समाज कल्याण के लिए दान भी किए।
1: Yes, and Victor Hugo passed on this day in 1885. He was an immensely influential French romantic author, poet, playwright, and political activist. He is widely regarded as one of the greatest and the most versatile writers in French literary history. While revered in France primarily as a master poet, he achieved global fame for his legendary historical novels. His most famous works are the novels The Hunchback of Notre Dame in 1831 and Les Misérables in 1862. In France, Hugo is renowned for his poetry collections such as Les Contemplations and La Légende des Siècles, The Legend of the Ages.
0: 20वीं सदी के जाने माने चिंतक, इतिहासवेत्ता, संस्कृतज्ञ और सौंदर्य शास्त्री गोविंद चंद पांडे की आज पुण्यतिथि है। वे संस्कृत, हिब्रू और लैटिन सहित अनेक भाषाओं के असाधारण विद्वान थे। प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति, बौद्ध दर्शन, साहित्य, इतिहास लेखन और दर्शन आदि में गोविंद चंद्र पांडे को विशेषज्ञता हासिल थी। वर्ष 2010 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
1: Yes, and Langston Hughes passed on this day in 1967. He was a pioneering American poet, novelist, and playwright. As a central figure of the Harlem Renaissance, Hughes is best known for being one of the first innovators of jazz poetry and for vividly capturing the realities of working-class black life in America.
0: काशी के प्रकांड विद्वान रेवा प्रसाद द्विवेदी की आज पुण्यतिथि है। उन्होंने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रतिमान गढ़े। रेवा प्रसाद द्विवेदी साहित्य शास्त्र के मूर्धन्य विद्वान थे। उन्होंने अनेकों ग्रंथों की रचना की। इनमें विशेष है सबसे बड़ा महाकाव्य स्वातंत्र्य संभव।
1: Born on November 20, 1921, Chidananda Dasgupta passed away on this day. He was a film critic, historian, and a pioneer of the film society movement in India. A close association with the legendary filmmaker Satyajit Ray led to the formation of the Calcutta Film Society in 1947 with Sergei Einstein's classic Battleship Potemkin as his first screening.
0: और भारत में शायद ही ऐसा कोई खेल प्रेमी हो जो गामा पहलवान के नाम से परिचित ना हो। आज ही के दिन गामा पहलवान ने इस दुनिया में कदम रखा। उन्हें रुस्तम-ए-जमा पहलवान के नाम से भी जाना जाता था। गामा पहलवान भारत में एक किंवदंती बन चुके हैं। शारीरिक ताकत के लिए जिस प्रकार आजकल दारा सिंह की मिसाल दी जाती है, इसी तरह से कुछ समय पहले तक गामा पहलवान का नाम लिया जाता था। अपने पहलवानी के दौर में गामा पहलवान की उपलब्धियां इतनी आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय रहीं कि साधारणतः लोगों को विश्वास ही नहीं होता था कि गामा पहलवान वाकई में थे। गामा अपने पहलवानी जीवन में अजय रहे, जो किसी भी पहलवान के लिए आज भी असंभव है। ये गुण गामा को विश्व का महानतम पहलवान का दर्जा दिलाता है।
1: Yes, and Sir Arthur Conan Doyle was a prolific British writer and physician, best known for creating the legendary fictional detective Sherlock Holmes, like as we are mentioning in the beginning of our program, and his loyal companion Dr. Watson. Born on May 22, 1859 in Edinburgh, Scotland, he wrote 4 novels and 56 short stories featuring Holmes, which became massive milestones in the evolution of modern crime fiction. Though his legacy rests primarily on his master sleuth, Doyle was a versatile author who penned over 200 works, including science fiction, historical romances, poetry, and political essays.
0: हिंदी और रूसी साहित्य के आधुनिक सेतु निर्माताओं में से एक मदन लाल मधु की आज जयंती है। मॉस्को के प्रमुख प्रकाशन गृह प्रगति और रादुगा प्रकाशन में लगभग 4 दशकों तक संपादक अनुवादक पद पर रहते हुए उन्होंने 100 से अधिक क्लासिक रूसी पुस्तकों का हिंदी अनुवाद भारतीय पाठकों को सुलभ कराया। और प्रोफेसर मधु मॉस्को रेडियो से भी जुड़े रहे। इन दो भाषाओं में विशिष्ट रचना के लिए उन्हें पद्मश्री से विभूषित किया गया। और आज हिंदी सिनेमा जगत के प्रसिद्ध संगीतकार राम लक्ष्मण की पुण्यतिथि है। राजश्री प्रोडक्शंस की ब्लॉकबस्टर फिल्म में मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, इनके काम के लिए विशेष तौर पर इन्हें याद किया जाता है। तो आइए उनकी शानदार फिल्मों से गीत आपको यहाँ सुनाते हैं।
2: फूलों में खुशबू है, इस दिल में एक तू है। जन्मों के

लक्ष्मण का असली नाम विजय पाटिल था। वे संगीतकार जोड़ी राम लक्ष्मण में से एक थे। उनका नाम लक्ष्मण और जबकि उनके जोड़ीदार राम यानी कि राम सुरेंद्र थे। और राम सुरेंद्र की मृत्यु के बाद विजय पाटिल यानी लक्ष्मण ने अपने नाम के साथ राम भी जोड़ लिया और इस तरह से वे बन गए राम लक्ष्मण।

0: इसके साथ ही अनुमति दीजिए जागृति और अभिषेक को कार्यक्रम परिक्रमा यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और साइप्रस ने आतंकरोधी, नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
2: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
1: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, मोबिलिटी, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत और यूरोपीय संघ के बीच संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि साइप्रस ने मुंबई में व्यापार कार्यालय खोलने की घोषणा की है। साइप्रस आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में हमेशा भारत के साथ रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठियों को देश से बाहर करेगी। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी। मतदान और मतगणना 18 जून को होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। गिरिबाला सिंह सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। उन्हें अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई है, जबकि समर्थ सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला को वाग्देवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद ये पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसलों को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हाल के परिपत्र के अनुसार 3 भाषाओं में कम से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के

माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ में प्रवेश कर चुकी हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। समय हुआ है शाम के 5:10:15। आइए सुनते हैं लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी।

0: मिट जाएंगे सारे रंज जब छाएगा लोक रंजनी का रंग।
1: लोक रंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को
0: नमस्कार।
1: देखिए वीरेंद्र भाई, लोक गीतों का और मनोरंजन का गहरा संबंध है। लोक गीत जो है पीढ़ियों से मनोरंजन के साथ साथ हमारी संस्कृति को भी जीवित रखते हैं और सबसे सहज और प्रभावी माध्यम है अपनी भावनाओं को जताने का।
0: जी, और उसमें से कुछ तो ऐसे होते हैं प्रियंका बहन के, उन पर नृत्य करने का मन करता है, नाचने गाने और झूमने का मन करता है। तो अब
1: बिल्कुल हमारी जो पहला जो हम लोकगीत सुनवा रहे हैं उसमें हमारे जो वादक हैं और जो हमारे गायक हैं उनका जो तालमेल है वो आपको जरूर झूमने पे मजबूर कर देगा। और हमारी कलाकार हैं सुनीता पांचाल।

0: प्रियंका बहन, इतनी बार बोला है तो कलकत्ता तो घुमा ही दिया होगा, और घूम फिर के आए हैं तो भूख लगनी तय है।
1: और बिल्कुल भूख लगनी तय है, लेकिन अभी क्या हम लोग सोच रहे हैं कि वे श्रीअन्न की ओर रुख किया जाए, क्योंकि कहते हैं ना कि जब नाम ही श्रीअन्न है, क्योंकि उसमें पोषक तत्व इतने ज़्यादा है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है, और हमारी जो अगली कलाकार हैं वो भी हमें इसकी की महत्व के बारे में बता रही है, और हमारी कलाकार हैं यमुना गर्ग।
0: गर्ग।

0: जी हाँ साथियों, अब हमारा श्रेयन खा के पेट भर गया है, और जब प्रियंका बहन पेट भर जाता है तो हमें थोड़ी सी भक्ति भी करनी चाहिए। कहते हैं
1: बिल्कुल
0: ना, भूखे भजन ना होए गोपाला,
1: बिल्कुल
0: ये लो
1: बिल्कुल।
0: अपनी कंठी माला। तो अब पेट भर गया है तो अब क्या करना चाहिए
1: अब सुनवाते हैं आपको राजपाल मिठारिया की आवाज़ में ये भजन।
0: जी?

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे राजपाल मिठारिया की आवाज़ में ये भजन।
1: भाई भजनों की बात चल रही है तो अगर ब्रिज की बात करें तो राधा कृष्ण पे तो भजन ही भजन है, और हम भी अपने कार्यक्रम में एक बहुत ही खूबसूरत सा भजन आपको सुनवाते हैं, और कलाकार होंगे
0: जय प्रकाश शर्मा।

0: जयप्रकाश शर्मा जी के गाए इस भजन के साथ ही आज का ये लोक रंजनी यहीं पर समाप्त होता है।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को
0: नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के संयोजक थे शिवनंदन लाल और प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर।

0: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंजनी, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में। आज मैं हूं आपके साथ दीपिका जसवाल और आज मेरे साथ हैं
1: आकाश। आइए जानते हैं क्या खास है आज के कार्यक्रम में।
0: बिल्कुल, सबसे पहले जानते हैं कार्यक्रम में खास क्या है। आज हर बार की तरह कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आईपीएल से, क्योंकि बेहद रोमांचक मुकाबले हो चुके हैं आईपीएल के, और साथ ही साथ कल खेले गए मुकाबले की भी बात करेंगे और आज शाम होने वाले मुकाबले पर भी नजर डालेंगे और पॉइंट्स टेबल की भी बात करेंगे। बैडमिंटन की बात करेंगे, मलेशिया मास्टर्स में क्या चल रहा है वो जानेंगे। इसके अलावा सुपर चेस क्लासिक रोमानिया राउंड 7 के रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। नेशनल सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन रांची में किया गया है और वहां से क्या खबरें आ रही हैं वो भी जानेंगे। अंडर 18 हॉकी एशिया कप मेन एंड वुमेन की बात करेंगे, उसके ड्रॉ और फिक्स्चर्स आदि आप सभी को आपको इस कार्यक्रम के जरिए बताया जाएगा। साथ ही साथ WTT कंटेंडर लागोस 2026 के क्वार्टर फाइनल्स का क्या है हाल वो जानेंगे, और अंडर 23 एंड अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप्स जो वियतनाम में आयोजित की गई हैं उसके बारे में भी बात करेंगे इस कार्यक्रम में। आईपीएल अपने रोमांचक सफर में पहुंच चुका है और कई टीम्स क्वालिफाई कर चुकी हैं और कई टीम्स क्वालिफाई करने का सपना देख रही हैं। प्लेऑफ्स की भी बात हो रही है, तो पूरी रिपोर्ट के लिए चलते हैं आकाश के पास और जानते हैं कल खेले गए गुजरात टाइटंस और सीएसके के मुकाबला कैसा रहा और क्या खास रहा कल के मुकाबले में।
1: आईपीएल 2026 में कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक ऐसा मुकाबला खेला गया जिसने प्लेऑफ की तस्वीर पूरी तरह से साफ कर दी। गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रनों के बड़े अंतर से हराकर टॉप टू में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स का इस सीजन का सफर यहीं समाप्त हो गया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस की शुरुआत बेहद विस्फोटक रही। साई सुदर्शन ने शानदार 84 रन बनाए, जबकि कप्तान शुभमन गिल ने 64 रनों की कप्तानी पारी खेली। दोनों बल्लेबाजों के बीच पहले विकेट के लिए 125 रनों की बड़ी साझेदारी हुई। इसके बाद आखिरी के ओवरों में जॉश बटलर ने सिर्फ 27 गेंदों में नाबाद 57 रन बनाए। गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 229 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। 230 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत बेहद खराब रही। पावर प्ले में ही टीम के बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। मोहम्मद सिराज ने शुरुआती विकेट झटके, हालांकि शिवम दुबे ने 17 गेंदों में 47 रन बनाकर संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें कोई बड़ा साथ नहीं मिला। गुजरात के गेंदबाजों के सामने चेन्नई की पूरी टीम सिर्फ 13.4 ओवर में 140 रन पर सिमट गई। गुजरात के लिए मोहम्मद सिराज, कागिसो रबाडा और राशिद खान ने 3-3 विकेट अपने नाम किए। इस मुकाबले में अपनी शानदार स्पिन गेंदबाजी से चेन्नई के मध्यक्रम को पूरी तरह से तोड़ने वाले गुजरात टाइटन के स्टार गेंदबाज राशिद खान ने मैच के बाद क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: Well, I think wicket didn't change. I think you got to see it's not a day-night match that a wicket could be changed, but it's a night game and I think you can see, you know, the bowling attack we have, especially the fast bowling unit we have done a really great job throughout the tournament, and I feel like on this wicket, if you hit the right area consistently with a good pace, there is something for the bowler. And I think while putting score on the board, you know, you just don't go with the flow. Like, you just see the condition first and then you try to play accordingly. I think that's the kind of main strength which remained for us throughout the competition, is that we adjust ourselves with the condition very, very quickly, and as a bowling unit and also as a batting unit. So I feel like we adjusted ourselves with the condition, you know, with the wicket quicker than then, and I think that's the reason behind we won again.
1: इस जीत के साथ गुजरात टाइटंस 18 अंकों के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई। वहीं प्लेऑफ की बाकी दौड़ अब और भी रोमांचक हो गई, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद की नजरें आखिरी मुकाबले पर टिकी हुई हैं। फिलहाल चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल 2026 का सफर यहीं समाप्त हो गया।
0: आईपीएल 2026 में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है इस वक्त। टीम्स में जो शुरुआती दौर में पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर थी वो नीचे खिसक गई, और जो नीचे की टीम्स थी वो अपने पॉइंट्स बढ़ाकर मैच जीतकर ऊपर आ गई। और पॉइंट्स टेबल का क्या है हाल, और साथ ही साथ आज शाम होने वाला मुकाबला आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच, उसका क्या नतीजा हो सकता है या फिर क्या संभावनाएं हैं, उसके लिए चलते हैं आकाश के पास।
1: आईपीएल 2026 अब अपने सबसे रोमांचक दौर में पहुंच चुका है, जहां हर मैच प्लेऑफ की तस्वीर बदल रहा है। आज यानी 22 मई 2026 को मुकाबला है सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच, और ये मैच खेला जाएगा हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में। आरसीबी पहले ही प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन अब लड़ाई है टॉप टू में जगह बनाने की। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद के पास बड़ा मौका है अंक तालिका में लंबी छलांग लगाने का। आईपीएल 2026 की ताजा पॉइंट टेबल्स की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 18 अंकों के साथ नंबर एक पर मौजूद है और प्लेऑफ में जगह पक्की कर चुकी है। गुजरात टाइटंस भी 18 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। तीसरे नंबर पर है सनराइजर्स हैदराबाद, जिनके पास 16 अंक है और 14 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है राजस्थान रॉयल्स। यानी प्लेऑफ की ये रेस अभी पूरी तरह खुली हुई है और हर रन, हर विकेट, हर मैच बेहद अहम बना हुआ है। अब नजर आज के मुकाबले पर डालें तो अगर पैट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद आज का मैच जीत जाती है तो टीम सीधे 18 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच सकती है। इसका मतलब होगा प्लेऑफ में फाइनल तक पहुंचने के दो मौके। वहीं आरसीबी चाहेगी कि वो अपनी टीम की लय बरकरार रखे और टॉप टू में अपनी जगह मजबूत रखे। और अगर बात पिच की करें तो हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम इस सीजन बल्लेबाजों के लिए काफी मददगार रहा। यहां पहली पारी का औसत स्कोर 195 रन है, यानी आज भी चौके छक्कों की बारिश देखने को मिल सकती है और फैंस को उम्मीद है एक हाई स्कोरिंग थ्रिलर की।
0: और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं आईएसएल की। अंतिम दिन के रोमांचक मैच में अंतिम क्षणों में विजयी गोल की बदौलत पूर्वी बंगाल ने अपना पहला आईएसएल खिताब जीत लिया, यानी कि आईएसएल 2026 हुआ पूर्वी बंगाल के नाम।

0: और अब बात करते हैं बैडमिंटन की और चलते हैं आकाश के पास।
1: मलेशिया के कुआलालंपुर में खेले जा रहे मलेशिया मास्टर्स 2026 टूर्नामेंट में भारत की युवा शटलर अस्मिता चालिहा का शानदार सफर अब थम गया है। महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अस्मिता को डेनमार्क की अनुभवी खिलाड़ी और टूर्नामेंट की आठवीं वरीयता प्राप्त लाइन होजमार्क कजासफेल्ड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, लेकिन स्कोर लाइन जितनी आसान दिख रही है मुकाबला उतना ही रोमांचक और संघर्षपूर्ण रहा। करीब एक घंटे तक चले मुकाबले में अस्मिता चालिहा ने जोरदार शुरुआत की। पहले गेम में भारतीय खिलाड़ी ने आक्रामक खेल दिखाते हुए कोर्ट पर पूरा नियंत्रण बनाए रखा और सटीक डीप शॉट्स की मदद से अस्मिता ने 10-6 बढ़त बना ली। हालांकि डेनमार्क की अनुभवी खिलाड़ी लाइन कजासफेल्ड ने वापसी की कोशिश की और स्कोर 19-18 तक पहुंच गया, लेकिन दबाव में भी अस्मिता ने शानदार खेल दिखाया और पहला गेम 23-21 से जीतकर मैच में बढ़त बना ली। दूसरे गेम में कजासफेल्ड ने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी और उन्होंने रैलियों की गति बढ़ाई और अस्मिता को लगातार कोर्ट के पिछले हिस्से में धकेलना शुरू कर दिया और दूसरा गेम 21-18 से जीतकर कजासफेल्ड ने मुकाबले को निर्णायक गेम तक पहुंचा दिया। कजासफेल्ड ने शुरुआत में ही बड़ी बढ़त बना ली और नेट पर लगातार तेज इंटरसेप्ट करते हुए पॉइंट्स बटोरती रहीं। अस्मिता वापसी की लय पकड़ नहीं सकी और निर्णायक गेम में 11-21 से हार गईं। इसी के साथ डेनमार्क की लाइन होजमार्क कजासफेल्ड ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। हालांकि हार के बावजूद अस्मिता चालिहा ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया। आखिरी समय पर टूर्नामेंट में एंट्री पाने वाली अस्मिता ने दूसरे दौर में घरेलू पसंदीदा खिलाड़ी गो जिन वई को सीधे गेमों में हराकर सबको प्रभावित किया था, लेकिन क्वार्टर फाइनल में अनुभव और बेहतर कोर्ट कवरेज उनके रास्ते की सब

सबसे बड़ी चुनौती बनी। इस हार के साथ ही मलेशिया मास्टर्स 2026 के महिला सिंगल्स वर्ग में भारत की चुनौती पूरी तरह समाप्त हो गई। इससे पहले मालविका भी इसी डेनिस खिलाड़ी कजासफेल्ड के खिलाफ हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी थी। फिलहाल भारतीय फैंस को निराशा जरूर हुई है, लेकिन अस्मिता चालिया ने अपने प्रदर्शन से ये जरूर दिखा दिया कि भारतीय बैडमिंटन का भविष्य मजबूत हाथों में है।

और अब बात कर लेते हैं WTT कंटेंडर जो लागोस में खेला जा रहा है और इस समय टेबल टेनिस जगत का बड़ा आकर्षण बना हुआ है। 19 से 24 मई तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में दुनिया भर के स्टार खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और भारत की चुनौती इस बार काफी मजबूत मानी जा रही है। विजेता को 400 ITTF रैंकिंग पॉइंट्स मिलेंगे। सिंगल्स और डबल्स दोनों वर्गों में मुकाबले बेहद कड़े रहने वाले हैं। अफ्रीकी खिलाड़ियों के साथ जापान, यूरोप और भारत के स्टार पेडलर्स भी चुनौती पेश कर रहे हैं और पुरुष वर्ग में एंडर्स लिंड और यूरोप के कई अनुभवी खिलाड़ी खिताब के दावेदार हैं। वही भारतीय खिलाड़ियों के सामने शुरुआती दौर से ही कठिन ड्रॉ की चुनौती है और महिला वर्ग में जापानी खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिल सकता है। क्वालिफिकेशन और शुरुआती मुकाबलों में कई करीबी मैच देखने को मिले और यह टूर्नामेंट सिर्फ खिताब के लिए नहीं बल्कि वर्ल्ड रैंकिंग और बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स की तैयारी के लिहाज से भी बेहद अहम माना जाता है। भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की बात करें तो शुरुआती दौर में मिश्रित प्रदर्शन किया और टूर्नामेंट के मेन ड्रॉ मुकाबले अब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और आज खेले जा रहे मुकाबलों की बात करें तो मुदित दानी का मुकाबला एंडर लिंड्स के साथ हुआ और एंडर लिंड्स वो खिलाड़ी हैं जो खिताब के दावेदार माने जा रहे हैं और मुदित दानी इस मुकाबले में यानी कि राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में 3-1 से पिछड़ गए और एंडर्स ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। भारतीय खिलाड़ी अगले मुकाबले में राउंड ऑफ 16 में मानव ठक्कर और अंकुर भट्टाचार्य जी आमने सामने होंगे और इनके अलावा मानुष शाह और उनका मुकाबला होगा नाइजीरिया के सुल्तान से। राउंड ऑफ 16 के मुकाबलों में जीतने वाला खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा। वुमेन सिंगल्स में मनिका बत्रा का मुकाबला पुर्तगाल की 74वीं रैंक प्राप्त की हुई जेनी शाओ से होगा। दिया चिताले का मुकाबला फ्रांस की 97वें वरीयता प्राप्त वाली कैमिले से होगा। वहीं अहिका मुखर्जी कैनेडा की मोजैंग जो 56वां रैंक रखती हैं उनके साथ होगा। सिंड्रेला दास का मुकाबला होनोका होशिमोतो से होगा जो जापान की 14वीं रैंक की खिलाड़ी हैं। और मेंस डबल के क्वार्टर फाइनल्स की बात करें तो इस वक्त मानव ठक्कर और मानुष शाह का मुकाबला हम वतन जोड़ी मुदित धानी और सनील शेट्टी से हो रहा है और इस वक्त मानव ठक्कर और मानुष शाह की जोड़ी 3-0 से आगे है। वहीं एक अन्य मुकाबला विमेंस डबल्स क्वार्टर फाइनल का राउंड ऑफ 16 के मुकाबले जीतने के बाद अहिका सुतीर्था नाइजीरिया की जोड़ी से मुकाबला करेंगी। वहीं मनिका बत्रा और सिंड्रेला दास का मुकाबला कोरियाई जोड़ी से होगा। यशस्विनी घोरपड़े और दिया चिताले भी नाइजीरियन खिलाड़ियों से भिड़ेंगी और मिक्स डबल्स में मनुष शाह और दिया चिताले का सेमीफाइनल मुकाबला कैनेडा से होगा।

रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में खेला जा रहा सुपर चेस क्लासिक रोमानिया 2026 अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। ग्रैंड चेस टूर के दूसरे चरण में अब खिताब की जंग पूरी तरह खुल चुकी है, क्योंकि राउंड 7 के बाद टूर्नामेंट में 3 खिलाड़ी संयुक्त रूप से शीर्ष पर पहुंच गए हैं। राउंड 7 में सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला जर्मनी के विसेंट कीमर के मुकाबले में। अब तक टूर्नामेंट में शानदार लय में चल रहे कीमर को उज़्बेकिस्तान के युवा ग्रैंड मास्टर ज़ोवोखीर सिंदारोव ने मात दे दी। कीमर को सिर्फ एक ड्रॉ की जरूरत थी, लेकिन एक बड़ी गलती उन पर भारी पड़ गई और सिंदारोव ने शानदार जीत दर्ज करते हुए पूरे टूर्नामेंट की तस्वीर बदल दी। कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के बाद सिंदारोव की ये पहली क्लासिकल जीत रही। वहीं भारतीय फैंस के लिए भी राउंड 7 ज्यादा अच्छा नहीं रहा। भारत के युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद को अमेरिका के दिग्गज फाबियानो कारुआना के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। प्रज्ञानंद ने मुकाबले में वापसी की पूरी कोशिश की, लेकिन कारुआना ने

0: अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाया और बाजी जीत ली। इस जीत के साथ फैबियानो कारुआना लाइव रेटिंग में दोबारा दुनिया के नंबर दो खिलाड़ी बन गए। राउंड सेवन का एक और बड़ा नतीजा रहा जॉर्डन वैन फॉरेस्ट के पक्ष में। फ्रांस के अलीरेजा फिरोजा पैर की चोट के कारण टूर्नामेंट से हट गए, जिसकी वजह से जॉर्डन वैन फॉरेस्ट को बिना खेले ही एक पूरा अंक मिल गया। वहीं अनीश गिरी और वेल्सी सौ के बीच दिन की सबसे लंबी बाजी खेली गई, जो करीब 50 चालों के बाद ड्रॉ पर खत्म हुई। और दूसरी तरफ मैक्सिम विचियर लाग्रेव और स्थानीय खिलाड़ी बोगदान डेनियल डिक के बीच भी मुकाबला ड्रॉ रहा। और अगर नजर डाले ताजा अंक तालिका पर तो फाबियानो कारुआना, विसेंट किमर और जॉर्डन वैन फॉरेस्ट तीनों खिलाड़ी 4.5 अंकों के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं। अनीश गिरी 4 अंकों के साथ चौथे स्थान पर हैं, जबकि भारत के आर प्रज्ञानंद फिलहाल 3.5 अंक के साथ पांचवें नंबर पर मौजूद हैं। यानी टूर्नामेंट के अंतिम दौरों में अब हर चाल बेहद अहम होने वाली है। आज का सबसे बड़ा मुकाबला होगा फैबियानो कारुआना और विसेंट किमर के बीच। दोनों खिलाड़ी खिताब के प्रबल दावेदार हैं और ये मुकाबला तय कर सकता है कि ट्रॉफी की ओर सबसे मजबूत कौन कदम बढ़ाएगा। वहीं भारतीय स्टार आर प्रज्ञानंद का मुकाबला फ्रांस के मैक्सिम विचियर लाग्रेव से होगा। आर प्रज्ञानंद के लिए ये वापसी करने का बड़ा मौका माना जा रहा है। इसके अलावा जॉर्डन वैन फॉरेस्ट भिड़ेंगे जावोखीर सिंदारोव से और अनीश गिरी का सामना होगा बोगदान डेनियल डिक से। उधर वेल्सी सौ को इस राउंड में बाई मिला है, यानी बिना खेले ही उन्हें एक अंक मिल जाएगा।
1: अब चलते हैं रेसलिंग की ओर। अंडर 23 और अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप एशिया के युवा पहलवानों का सबसे बड़ा मंच माने जाने वाली अंडर 23 और अंडर 17 का आयोजन 23 से 31 मई तक वियतनाम के दानांग शहर में होगा और इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में एशिया के 20 से अधिक देशों के युवा पहलवान हिस्सा लेंगे। इस टूर्नामेंट में फ्रीस्टाइल, ग्रीको रोमन, महिला कुश्ती के मुकाबले खेले जाएंगे। भारतीय दल से भी शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है, क्योंकि पिछले संस्करण में भारत ने खासकर महिला वर्ग में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कई पदक जीते थे। पूरे कार्यक्रम की अगर बात करें, प्रतियोगिता कैसे कैसे होगी, तो 23 से 27 मई तक अंडर 23 वर्ग के मुकाबले होंगे और 27 से 31 मई तक अंडर 17 वर्ग के मुकाबले होंगे, जिसमें तीन शैलियां होंगी, फ्रीस्टाइल, ग्रीको रोमन और महिला कुश्ती। भारतीय टीम पर अगर नजर डालते हैं तो भारत की नजर इस बार युवा महिला पहलवानों के साथ साथ फ्रीस्टाइल वर्ग में उभरते सितारों पर होगी। पिछले संस्करण में भारतीय महिला टीम ने 4 स्वर्ण सहित 10 पदक जीतकर चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम की थी और उम्मीद की जा रही है कि महिला वर्ग में भारत अपना दबदबा कायम रखेगी। फ्रीस्टाइल में युवा पहलवान फाइनल तक पहुंचने की पूरी उम्मीद भी है और संभावनाएं भी हैं और ग्रीको रोमन में भी पदकों की संख्या इस बार बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। लेकिन कड़ा मुकाबला इनको देंगे जापान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, क्योंकि जापान की महिला कुश्ती की टीम सबसे मजबूत टीम मानी जाती है। ईरान फ्रीस्टाइल और ग्रीको रोमन में अपनी ताकत का दबदबा और लोहा मनवाता है और कजाकिस्तान और किर्गिस्तान की बात करें तो ये तकनीकी कुश्ती के लिए प्रसिद्ध है। युवा वर्ग में लगातार उभरते अपने खिलाड़ियों को, अपने रेसलर्स से काफ़ी उम्मीदें हैं भारत को और उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार कुछ और पदक हमारी झोली में आएंगे, यानी कि पिछली बार से ज़्यादा पदक इस बार भारत की झोली में आएंगे। कई जूनियर विश्व पदक विजेता इस प्रतियोगिता में उतरेंगे और ये भी पॉसिबल है कि इनमें से कोई एक भविष्य में ओलंपिक तक पहुंचेगा और वहां भारत का झंडा लहराएगा। भारतीय पहलवानों के लिए विश्व चैंपियनशिप और सीनियर स्तर की तैयारी के लिए ये बड़ा मंच है और भारत से इस बार महिला वर्ग से काफ़ी उम्मीद दिखा रही है और यदि भारतीय पहलवान शुरुआती दौर में दबाव संभालते हैं तो भारत पदक तालिका में शीर्ष 3 में जगह बना सकता है।
0: एशियाई हॉकी महासंघ के अंतर्गत आयोजित होने वाला पुरुष और महिला अंडर 18 एशिया कप 2026 इस बार जापान के काकामीगहारा शहर में खेला जाएगा। ये प्रतिष्ठित टूर्नामेंट 29 मई से 6 जून 2026 तक आयोजित होगा, जिसमें एशिया की कई मजबूत युवा टीमें हिस्सा लेंगी। भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमें इस प्रतियोगिता में खिताब जीतने के इरादे से उतरेंगी। भारतीय पुरुष टीम को

पूल ए में रखा गया है। इस ग्रुप में भारत के साथ कोरिया, जापान, चीनी ताइपे और कजाकिस्तान की टीमें शामिल हैं। भारतीय पुरुष टीम अपने पूल चरण में 29 मई 2026 को कजाकिस्तान से, 31 मई 2026 को जापान से, 1 जून 2026 को कोरिया से और 3 जून 2026 को चीनी ताइपे से भिड़ेंगी। इसके बाद टीम नॉकआउट चरण में प्रवेश करने की कोशिश करेगी, जिसका सेमीफाइनल मुकाबला 5 जून को और फाइनल मुकाबला 6 जून को होगा। इस टूर्नामेंट में भारतीय पुरुष अंडर 18 टीम की घोषणा हो चुकी है। टीम की कप्तानी केतन कुशवाहा करेंगे। गोलकीपर के रूप में सावन कुमार, डिफेंडर्स के रूप में होंगे आयुष रजक, अंश बहुत्रा, अरमान सोरेंग, आशीष तानीपूर्ति, अर्षदीप सिंह, अवि मणिकपुरी, रोमित पाल। मिडफील्डर्स के रूप में राहुल यादव, प्रेमचंद सोए, वीरेंद्र सिंह, करण गौतम, सिद्धार्थ बेन। फॉरवर्ड्स में कप्तान केतन कुशवाहा, आकाशदीप, गाजी खान, शाहरुख अली, प्रहलाद राजभर मौजूद होंगे। और भारतीय महिला टीम की बात करें तो टीम को पूल ए में रखा गया है और इस ग्रुप में भारत के साथ कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर की टीमें शामिल हैं। भारतीय महिला टीम अपने पूल मैचों में 30 मई 2026 को मलेशिया से, 31 मई 2026 को कोरिया से और 2 जून 2026 को सिंगापुर से भिड़ेंगी। नॉकआउट मुकाबले में सेमीफाइनल 5 जून को और 6 जून को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमें इस टूर्नामेंट में मजबूत दावेदार मानी जा रही हैं। युवा खिलाड़ियों से सजी भारतीय टीमों से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है। खास तौर पर पुरुष टीम में कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी शामिल हैं, जो भविष्य में भारतीय सीनियर हॉकी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। अब सभी की नजरें जापान में होने वाले इस बड़े टूर्नामेंट पर होंगी, जहां भारत की युवा ब्रिगेड एशिया में अपनी ताकत साबित करने उतरेंगी।

और अब बात कर लेते हैं एथलेटिक्स की। 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता 2026 का आयोजन 22 से 25 मई 2026 तक बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम रांची झारखंड में किया जा रहा है। इस चार दिवसीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के मार्गदर्शन से की जा रही है। देश भर के लगभग 700 शीर्ष एथलीट इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं और 4 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में सुबह और शाम के सत्रों में कुल 70 स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें 40 फाइनल मुकाबले शामिल हैं। प्रतियोगिता में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर रिले रेस, लंबी कूद, लॉन्ग जंप, भाला फेंक, शॉटपुट, पुरुषों का डिकैथलन और महिलाओं का हेप्टाथलन जैसे कई मुख्य ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स शामिल हैं। अब बात आज सुबह हुए पुरुषों के 10,000 मीटर दौड़ के फाइनल की करें तो उत्तराखंड के दीपक भट्ट ने 29:42.93 के अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। शैलेश कुशवाहा ने 29:57.56 के साथ रजत पदक हासिल किया और प्रशांत चौधरी ने 30:36.97 के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। आज शाम होने वाले प्रमुख मुकाबलों पर अगर नजर डालें तो शाम 6 बजे महिलाओं की लॉन्ग जंप का फाइनल आयोजित होगा, जहां शैली सिंह और एनसी सोजन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। और इस समय पुरुषों का हैमर थ्रो फाइनल भी खेला जा रहा है। और कुछ अगर अन्य मुकाबलों पर अगर हम नजर डालते हैं तो वो इस प्रकार है, जो इस वक्त मुकाबले खेले जा रहे होंगे उनमें हाई जंप, लॉन्ग जंप, हैमर, 100 मीटर, डिस्कस थ्रो, 400 मीटर, मेन विमेन, 3000 मीटर, स्टीपल चेज जो आज शाम के मुकाबले हैं वो, और डिकैथलन की बात करें तो डिकैथलन के 3 मुकाबले सुबह खेले जा चुके हैं और चौथा और पांचवा मुकाबला आज शाम खेला जाएगा। कल सुबह होने वाले मुकाबलों पर अगर हम नज़र डालें तो डिकैथलन का 6वां, 7वां और 8वां मुकाबला होगा और साथ ही साथ 10,000 मीटर रेस वॉक तो होगी ही, साथ ही साथ लॉन्ग जंप होगा जिसमें क्वालिफिकेशन राउंड ग्रुप ए एंड बी होगा और डिकैथलन के मुकाबले तो होंगे ही, साथ ही साथ महिलाओं का

ग्रुप रिजल्ट में अगर हम नज़र डालें तो वो रिजल्ट इस प्रकार है। अभी शाम को मुकाबला होना भी बाकी है, इवनिंग सेशन जो 5:30 से शुरू हुआ है, लेकिन जो सुबह जो मुकाबले हुए हैं उनमें महिला के मुकाबले 10,000 मीटर फाइनल के मुकाबलों पर नज़र डालें तो रवीना गायकवाड़ 35:38 से उन्होंने गोल्ड अपने नाम किया है। सोनिया ने सिल्वर मेडल जीता है जो उत्तराखंड की हैं, और इनका समय रहा 36:16.22। और आरती पावरा जो महाराष्ट्र की हैं उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया 36:24.79 में। और महिला वर्ग के मुकाबलों की ये बात की थी, और पुरुष वर्ग के मुकाबलों के बारे में तो आपको हम बता ही चुके हैं, और इसके अलावा जो भी अपडेट्स होगी आपको खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में एथलेटिक्स से जुड़ी हुई और बाकी खेलों से जुड़ी हुई अपडेट्स कल के कार्यक्रम में भी ज़रूर दी जाएंगी।

0: और अब वापस लौटते हैं क्रिकेट पर, क्योंकि क्रिकेट से भी एक शानदार खबर सामने आ रही है, जिसमें ट्राई सीरीज़ श्रीलंका के दाम्बुला में 9 जून से 21 जून तक खेली जाएगी। और इस टूर्नामेंट में इंडिया ए, श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए की टीमें हिस्सा लेंगी, और युवा खिलाड़ियों के लिए यह सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। और आईपीएल के बीच में ये खबर आई है कि केकेआर स्टार की चमकी किस्मत और भारतीय टीम में उसको मिला मौका, और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका में होने वाली ट्राई सीरीज में इंडिया ए टीम में बड़ा बदलाव किया है। झारखंड के ऑलराउंडर अनुकूल राय को टीम में शामिल किया गया है, और यह युवा स्पिन ऑलराउंडर हर्ष दुबे की जगह खेलेंगे, जिन्हें पहली बार अफगानिस्तान के भारत दौरे के लिए सीनियर भारतीय टीम में मौका मिला है। और इसके अलावा डोमेस्टिक क्रिकेट पर अगर हम नज़र डालते हैं, तो डोमेस्टिक क्रिकेट के भी जो ऐलान हो चुका है कि कब कब कौन कौन सा मुकाबला होना है डोमेस्टिक क्रिकेट में, उसके बारे में भी अभी जानते हैं। जी हाँ, आप डोमेस्टिक क्रिकेट पर नज़र डालें तो मेन एंड वुमेन कि कब मुकाबले होने हैं और कहाँ होने हैं, उस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले दिलीप ट्रॉफी जो है 23 अगस्त से 10 सितंबर तक बेंगलुरु में होगी, और ईरानी कप 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर में, रणजी ट्रॉफी 11 अक्टूबर से 5 नवंबर तक, और शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी 14 नवंबर से 6 दिसंबर तक होगा। मुंबई, विशाखापट्टनम, कोलकाता, मोहाली और नागपुर केवल नॉकआउट्स होंगे, और विजय हजारे ट्रॉफी 14 दिसंबर से 8 जनवरी तक होगी, और रणजी का दूसरा चरण होगा 17 जनवरी से 4 फरवरी, और रणजी ट्रॉफी का नॉकआउट होगा 9 फरवरी से 3 मार्च। और अब ये तो थी पुरुषों के मुकाबले, और अब बात करते हैं महिला प्रतियोगिता की तरफ नज़र डालें तो सीनियर महिला टी20 ट्रॉफी 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक होगी, और सीनियर महिला इंटर जोनल टी20 ट्रॉफी 20 यानी कि 14 नवंबर से नॉकआउट होगा। लखनऊ, पुणे, दिल्ली, मोहाली और अहमदाबाद केवल नॉकआउट्स होंगे। सीनियर महिला इंटर जोनल टी20 ट्रॉफी 24 नवंबर से 4 दिसंबर तक गुवाहाटी में होगी। सीनियर महिला एक दिवसीय ट्रॉफी 19 दिसंबर से 10 जनवरी तक होगी, और सीनियर महिला इंटर जोनल एक दिवसीय ट्रॉफी 17 फरवरी से 27 फरवरी तक चेन्नई में होगी, और सीनियर महिला इंटर जोनल मल्टी डे ट्रॉफी 13 मार्च से 28 मार्च तक देहरादून में होगी। क्रिकेट की बात चल रही है और आज शाम होने वाले रोमांचक मुकाबले को जो है आनंद लीजिएगा, और उससे जुड़ी पूरी की पूरी जानकारी, पूरा का पूरा खाका जो है कल के खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में आपको ज़रूर सुनवाया जाएगा। और इसके अलावा WTT कंटेंडर पर अगर हम एक बार और नज़र डालें तो मानव ठक्कर और मानुष शाह ने ये मुकाबला अपने नाम कर लिया है 3-0 से, और इनका मुकाबला था हमवतन मुदित दानी और सनिल शेट्टी से। आज के लिए बस इतना ही। कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान और के साथ मुझे दीपिका जसवाल को और मेरे सहयोगी
1: मैं आकाश कुमार को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस ने आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
1: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, मोबिलिटी, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत और यूरोपीय संघ के बीच संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि साइप्रस ने मुंबई में व्यापार कार्यालय खोलने की घोषणा की है। साइप्रस आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में हमेशा भारत के साथ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर करेगी। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला में वाग्देवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद ये पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन देर भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया है। ये पोस्टमार्टम एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्यवाही रिपोर्ट मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हाल के परिपत्र के अनुसार 3 भाषाओं में कम से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर 24 मई कर दी है। ये निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ में प्रवेश कर चुकी हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा

0: इमां वार्तां श्रृण्वन्तः आसन्। अनेनैव एषा वार्ता सम्पन्ना भवति। अहं प्रोफेसर टेकचंद मीणा इति उक्त्वा अनुमतिं वाञ्छामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ल्यां साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिना निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स इत्यनेन सह चर्चितवान्। सः उक्तवान् यत् अग्रिमेषु पञ्चवर्षेषु निवेशप्रवाहः द्विगुणीकर्तुं भारत साइप्रस देशयोः लक्ष्यमस्ति। निर्वाचनायोगेन अग्रिमे मासे अष्टादशदिनाङ्के दशराज्याणां चतुर्विंशतिराज्यसभासनानां द्वितीये वर्षे आयोक्ष्यमाणस्य निर्वाचनस्य घोषणामकरोत्। सर्वोच्चन्यायालयेन जुलाई मासस्य प्रथमदिनाङ्कात् नवमीकक्षायाः छात्राणां कृते CBSE इत्यस्य त्रिभाषीयाध्ययनस्य अनिवार्यतायाः विरुद्धं याचिकां विचारं समारब्धम्। केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः उक्तवान् यत् सम्पूर्णे सीमाक्षेत्रेषु अभेद्यतरं कर्तुं सर्वकारः स्मार्ट सीमापरियोजनायाः आरम्भं करिष्यति। अपि च IPL क्रिकेट् क्रीडायां सनराइजर्स हैदराबाद दलम् अद्य सायङ्काले हैदराबादे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलम सम्मुखी करिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारत साइप्रस देशयोः मध्ये अद्य नवदिल्ल्यां आतंकवादावरोधस्य विषये नवान्वेषण तंत्रज्ञानयोः उच्चशिक्षायाम् अनुसंधाने सांस्कृतिक सहयोगे च संयुक्त कार्यसमूहस्य स्थापने इत्यादीनां विभिन्नेषु क्षेत्रेषु अनेकेषां सन्धिपत्राणाम् आदान प्रदानम् अभवत्। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिना निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स इत्यनेन सह विविधेषु क्षेत्रेषु द्वैपाक्षिक सहकारं सुदृढीकर्तुं चर्चां कृतवान्। बहुपाक्षिक मञ्चेषु सहकारं सह क्षेत्रीय वैश्विक महत्त्वस्य विषयेषु अपि तौ विचाराणाम् आदान प्रदानं कृतवन्तौ। संयुक्त वक्तव्ये प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना भारत साइप्रस देशयोः मैत्री न केवलं दृढः अपि तु भविष्याभिमुखी अपि अस्ति इति उक्तम्। सः अवदत् यत् गतदशके साइप्रस देशात् भारते निवेशः प्रायः द्विगुणितः अभवत्। तेनोदीरितं यत् भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समन्वये अनेकाः नूतनाः सम्भावनाः उद्भूताः सन्ति। उभयोः देशयोः मध्ये विश्वासः च वर्धितः अस्ति। अग्रिमेषु पञ्चवर्षेषु पुनः निवेशप्रवाहं द्विगुणीकर्तुं भारत साइप्रस देशयोः लक्ष्यम् अस्ति इति श्रीमोदी अवदत्।
2: भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी है। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं और इस संकल्प को साकार करने के लिए आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री श्री मोदी अवदत् यत् उपवेशनावधौ तौ वैश्विक विषयेषु अपि चर्चितवन्तौ।
2: भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
1: साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स इत्येषः अवदत् यत् उभयोः राष्ट्रयोः मध्ये द्वैपाक्षिकसम्बन्धाः यूरोपीयसङ्घभारतसम्बन्धाश्च गतवर्षे अत्यन्तं प्रगतिम् अकुर्वन्। प्रातःकाले विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिना सह मेलनं कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् सः द्वयोः राष्ट्रयोः मध्ये द्वैपाक्षिकसम्बन्धान् सुदृढं कर्तुं भारत यूरोपीय सहयोगाय च सकारात्मकभावानां मार्गदर्शनस्य च प्रशंसाम् अकरोत्। साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः भारतस्य चतुर्दिवसीय यात्रायामस्ति। निर्वाचनायोगेन अद्य 10 राज्येषु 24 राज्यसभा आसनानां द्विवार्षिक निर्वाचनस्य

0: राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों को
1: राम राम। और साथियों, आज एक बहुत ही खास दिन है। खास दिन क्या है कि हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। प्रियंका बहन, हम अपने जीवन में इतनी सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं और वो अलग-अलग क्षेत्रों से, अलग-अलग चीज़ों से मिलती हैं, और हम बस यही सोच लेते हैं कि ऐसे ही होता होगा, लेकिन इस पृथ्वी का पूरा एक तंत्र है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए वीरेंद्र भाई, जैसा कि हम जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है, और इसका अर्थ भी यही है कि विविधता किस में होती है। जितने भी जीवित प्राणी हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, उनमें पाए जाने वाली विविधताएं, उनमें आनुवंशिकी अंतर, और साथ ही साथ जिन स्थानों पर पाए जाते हैं, चाहे वो जंगल है, झील है, रेगिस्तान है, इसकी विविधता को ही जैव विविधता कहते हैं। और 22 मई को इसको मनाए जाने का भी मुख्य कारण यही है कि हम ये समझें, हमारे अंदर ये जागरूकता पैदा हो कि वैश्विक स्तर पर जैव विविधता के संरक्षण को हम समझ सके, उसके महत्व को जान सके, क्योंकि वनों की कटाई, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण आज जैव विविधता तेजी से खतरे में है, और उसे बचाना हमारा कर्तव्य है।
1: जी, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब एक चीज़ बचेगी तब दूसरी बचेगी। तो इस जैव विविधता का हमें अपने आसपास में, अपने परिवेश में अच्छे से ध्यान रखना है और ये सोचना है कि ये है तो हम
0: हम हैं
1: हैं।
0: बिल्कुल, ये एक चक्र की तरह है, और सबके विकास से ही ये चक्र निरंतर चलता रहेगा।
1: जी, और आकाशवाणी का तो अपना ही एक रुतबा है, और रुतबा भी इतना लंबा चौड़ा है कि अब तो सदियां होने वाली हैं। एक दशक के बाद फिर से सदी हो जाएगी अपनी आकाशवाणी को किसानों की, दुनिया की सेवा करते हुए।
0: बिल्कुल, और इसलिए हम एक खास वार्ता लेकर आए हैं जिसका विषय है गांव तक जानकारी पहुंचाने में आकाशवाणी की भूमिका, और इसमें वार्ताकार हैं श्रीपाल सांगवान, प्रगतिशील किसान। तो सुनते हैं ये वार्ता।
1: वार्ता
2: ख्यात कवि की कविता के ये बोल क्या भूलू क्या याद करूं, इस वार्ता को लिखते हुए इसी कविता के बोलों की उलझन में फंसा हूं। क्योंकि मेरा जन्म ही रेडियो के आरंभ से पहले सन 1934 में हुआ था। रेडियो सुनने की अकल मुझे सन 1938 ईस्वी में आई थी। तब रेडियो पर सरदार बलदेव सिंह पटेल जी और जवाहरलाल नेहरू जी के अलावा महात्मा गांधी के नामों की अधिक चर्चा हुआ करती थी। दूसरे महायुद्ध के बारे में तो जनता की प्रबल जिज्ञासा थी। इन बातों का उल्लेख तो जिक्र इसलिए किया जा रहा है कि कथन की भूमिका बन जाए। हाँ, तो अब बात करते हैं अपने देहाती प्रोग्राम की। गांवों में रेडियो का आगमन न के बराबर था, लेकिन ग्रामीण जनता के लिए प्रसन्न होते थे। पंडित जी और चौधरी सुल्तान सिंह की नोक झोंक समा बांध देती थी। गुलाम मोहम्मद जी का दखल दाल भात में मूठर चंद की तरह था। करीब करीब आधा घंटे का प्रोग्राम होता था, बस नोक झोंक और गाने ही प्रसारित होते थे। कृषि प्रसारण तो तब भविष्य के गहन गर्भ में था। रेडियो का युवा था, लोग रेडियो के बक्से में पीछे झांक कर देखते थे कि क्या बोल रहा है। आज की पीढ़ी तो शायद इस बात का यकीन ही न करे कि रेडियो एक करिश्मा ही था। दिल्ली रेडियो पर पत्राया करते थे कि ये डब्बा बोल रहा है या बैटरी में, श्रोताओं की जिज्ञासा का शांत किया जाता था। थे ना अजूबा, तब रेडियो सुनने में अपने गांव से 3 कोस दूर एक कस्बे में मैं जाया करता थे। हमारे गांव के आसपास कोई रेडियो था ही नहीं। रेडियो का होना उनकी धनवान की निशानी थी, क्योंकि रेडियो का मूल्य था 200 रुपये और बैटरी थी 50 रुपये की। 250 रुपये उस जमाने में बहुत ही अहमियत रखते थे। देश में विदेशी हुक्मरान भयंकर गरीबी छोड़कर गए थे। पहनने को न कपड़ा था, न खाने को अनाज था, और पैसे का अभाव तो बहुत ही दूर

हम पैदल चला करते थे, जैसा भी पंक्तियों के वाचक ने अपनी आंखों से देखा है और महसूस किया है। अदब विडम्बना थी क्योंकि विदेशी हुक्मरानों की यहाँ के तरक्की में कोई दिलचस्पी नहीं थी, और मैं के वो देश से क्या कच्चा माल अपने देश इंग्लैंड में ले जाते थे और उसे पक्का करके दूसरे देशों में निर्यात करते थे। भारत में बहुत ही थोड़ा माल आता था, यहाँ की जनता की क्रय शक्ति दयनीय थी, सुई भी इंग्लैंड से ही आती थी। यहाँ पर शक्ति पर देश की अर्थव्यवस्था थी, न सड़कें थी और न ही पुल थे, खेल न थी जो कमाई करती थी, नहरें थी जिनका पानी बिकता था, उनकी कमाई का साधन था जिसे फौज का खर्च चलता था। कहने का मतलब यह है कि विदेशी सरकार इस रफ्तार से काम करती थी कि जिससे देश में अराजकता फैले, बहुत ही कष्ट पर जीवन था। आज क्या जमाना है, कहने का मतलब यह है कि यहाँ की सामाजिक दुनिया में भी तोड़फोड़ थी। कृषि के उत्थान की ओर से वे विदेशी सरकार एकदम उदासीन थी। वैसे तो किसान अपना पेट भरने उत्पादन कर ही लेते थे, उसे बाजारों में बेचकर अपने खर्च चलाते थे। गेहूं तो भरण पोषण के लिए स्वप्न था, मटर और चना जो और कई एक मोटे अनाज ग्रामीण गरीब जनता का वार्षिक भोजन था। गेहूं एक बीघे में मेहनत के बाद केवल 2 मणी निकलता था, यानी 2 मण यानी के करीब अदक 1 क्विंटल से भी कम। नामचारे को उन लोगों ने बिहार प्रांत में पूसा गांव में एक कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, लेकिन वो वहां सफल नहीं हो सकी क्योंकि वहां की भूमि दलदली थी। सन 1936 के करीब वो अनुसंधान केंद्र दिल्ली के में ले आए और आज जहाँ पूसा कार्यक्रम फार्म के नाम से मशहूर है। लेकिन पूसा ही क्या करता जो अपने परंपरागत गेहूं के बूढ़े बीज थे वो उनमें ही अदर बदर करते रहते थे। गांव के पटवारियों के ही जिम्मे यह काम था जो किसानों के बताते थे कि अरे भाइयों फला गांव में उस किसान के पास ऐसा गेहूं का बीज आया है जो खेत में घना निकलता है, और अपना गेहूं ले जाओ और बदल लाओ। क्या कुछ भी हो, जमाना परिवर्तनशील है और हर चीज में परिवर्तन आवश्यक है। यूनियन जैक झंडे का स्थान हमारे प्यारे तिरंगे झंडे ने लिया, यानी हम आजाद हुए, हमने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी और आज हम उस परिवर्तन से सड़क जैसा जीवन जी रहे हैं। कृषि धंधा कर्ज पर नहीं था, शहर के लोग खेती की ओर देख रहे हैं, वो खेती में रुचि लेकर गांव की ओर आ रहे हैं। हमारी पंचवर्षीय योजनाएं ने कृषि में ही हर क्षेत्र में कामयाब हासिल की है। हमारे राष्ट्रीय कर्णधारों का सबसे अधिक ध्यान खेती की ओर गया क्योंकि किसी देश की रीढ़ कृषि ही किसी देश की रीढ़ होती है। दो देव महापुरुषों ने इस धरा पर जन्म लिया, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग और स्वामीनाथन। इन ऋषियों ने एक नई क्रांति लाई और विशेष के गेहूं की वो उन्नत किस्मों की खोज की कि दुनिया आश्चर्यचकित हो गई। वरना गेहूं की रोटी खाना आम आदमी जनता के लिए नहीं था। बच्चों को गेहूं की रोटी तब मिला करती थी जब कोई मेहमान घर में आ जाता था। वैसे तो हमारी तत्कालीन सरकार ने अन्न की उपज बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं चलाई, रेलवे स्टेशनों पर और सार्वजनिक स्थानों पर रंग बिरंगे पोस्टर चस्पा किए, हर विषय हर भाषा में DAVP के प्रकाशन हुए, सिनेमाओं में स्लाइड और चलचित्र दिखाए गए, परंतु सब बेकार क्योंकि जनता में शिक्षा का अभाव था। शहर में सिनेमाओं का पहुँचना ग्रामीण जनता के लिए कठिन था, यह भी एक विकट समस्या थी। नए गेहूं के बीज की खोज हुई, उसे आस पास जनता कैसे जानकारी दी जाए, इसे हरित क्रांति का नाम दिया गया। सूचना व प्रसारण मंत्री श्री बी केसवाल, श्री के एन मुंशी, सरदार बलदेव सिंह आदि राजनेताओं ने राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सुझाव दिया कि इस रेडियो को गांव के किसान तक पहुंचाया जाए, मनोरंजक कार्यक्रम तैयार किए जाए। जैसा कि पहले भी उल्लेख किया जा चुका है कि रेडियो आम आदमी की पहुंच से बाहर था। नेहरू जी के बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री आए और जमान आया श्रीमती इंदिरा गांधी जी का। हरित क्रांति पर परवान चढ़ा, लंबे तकड़े पैमान चढ़ा। नेहरू के युग में ही रेडियो का काफी प्रसार हो चुका था, देहाती जनता की रेडियो तक पहुंच न थी, सस्ते रेडियो सेटों का निर्माण हुआ, ग्राम पंचायतों को मुफ्त रेडियो सेट दिए गए और गांव में रेडियो का दखल था वो बहुत तकड़े पैमाने पर हुआ।
कहने का मतलब यह है कि

अगर देहातों में रेडियो सेट न दिए जाते तो हरित क्रांति कभी सफल न होती, हमारे अनुसंधान केंद्र की खोज कुछ ही दूरी तक पहुंच पाती। हम अभी इस रेडियो स्टूडियो में बैठे हैं और हमारी बात सैकड़ों कोस तक पहुंच रही है। हमारे विद्वान कृषि वैज्ञानिकों की कृषि खोजों को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए ही क्षेत्रीय बोलियों के आकाशवाणी के केंद्रों की स्थापना की गई। पहले दिल्ली के बाद लाहौर में ही रेडियो स्टेशन था। दिल्ली केंद्र के कृषि कार्यक्रमों अनेक केंद्रों से लिए किए जाते थे। पहले सप्ताह में एक दो बार ही 5 मिनट का कृषि कार्यक्रम देहाती प्रोग्राम आया करता था। 1962 में देहाती रेडियो गोष्ठी कार्यक्रम सप्ताह में 2 बार आधा आधा घंटे का आया, मंगलवार और शुक्रवार को प्रसारित होने लगा। इस कार्यक्रम ने देश में धूम मचा दी। यह कार्यक्रम बहुत ही लोकप्रिय हुआ। गांव गांव में रेडियो कर्मों के गठन हुआ। एक पत्रिका का भी प्रकाशन हुआ करता था जो देश के किसानों को बेसब्री से प्रतीक्षा रहती थी। देहाती रेडियो गोष्ठी पर सरकार का बहुत धन खर्च होता था। स्टेशनरी, डाक टिकट, पत्रिकाएं और कई एक सुविधाएं गोष्ठी कर्मों को दी जाती थी। सदस्यों का फीस देकर प्रसारण भवन भी बुलाया जाता था। कुछ भी हो, आकाशवाणी की बदौलत हरित क्रांति सफल हुई। अगर फसल भरपूर खेतों पर पैदा हुई, आज मंडी नीचे है और कुछ उत्पादन ऊपर है। सरकार के सामने समस्या है कि इस उत्पादन को कहाँ खपाया जाए। देश की साधारण जनता को मुफ्त में अनाज मिलता है, लेकिन दैविक आपदा के में देश की क्या विदेशी जनता को भी अन्न का दान किया जाता है। यही नहीं, जो भी आज कृषि विद्यालयों में, कृषि वैज्ञानिक केंद्रों में नई खोज हो रही है, उसका भी रोज आकाशवाणी से प्रसारण होता है। आज देश की हर क्षेत्र में कृषि उत्पादों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। धरन का कानपुर में, गन्ने का कोयम्बतूर, आलू का शिमला, चारे का झांसी, आम का लखनऊ, लीची का देहरादून, शकरकंदी का केरला में अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। इन अनुसंधान की गतिविधियों को क्षेत्रीय आकाशवाणी केंद्र कार्य प्रसारित करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो आकाशवाणी कृषि प्रसारणों में इन अनुसंधान केंद्रों का प्रसारण न होता तो किसानों को उसकी जानकारी कैसे मिलती। प्रतिदिन 20 मिनट का कार्यक्रम खेती बाड़ी का ही होता है। यही नहीं, अब देश में FM रेडियो केंद्र की बहुतायत है जो वहाँ की कृषि के अलावा वहाँ की लोकतंत्र को भी जीवित रखे हैं। अब वो जमाना गया जो किसान महिलाएं परंपरागत गीत गाया करती थी, एक मत बोइए रे बड़ी मत बोइए, एक मत बोइए रे बड़ी मत बोइए, पड़ेगी उगाई डंडा बाजे जोई रोई के। क्योंकि उस जमाने में कपास में बहुत ज्यादा कीड़े लगते थे और दवाई कुछ ही नहीं, और गन्ने में पानी बहुत चाहिए तो सिंचाई के साधन भी नहीं थे। लेकिन आज वो जमाना गया, आज पानी की भी रेज है और नई नई दवाइयों की हमारे वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं। और क्या पूछोगे आप कि बहुत थी। किसान जो खेती बाड़ी छोड़कर 7 रुपए महीने पगार पर फौज की नौकरी किया करते थे, फिर वो संस्थान वो समय भी आया कि हमारे राष्ट्रीय कर्मधारों की नीतियों से प्रभावित लोग खेती की ओर आए। आज दादा घाट की कहावत सदियों बाद सच हो रही है, उत्तम खेती भीख निदान, उत्तम खेती मध्यम बाण, निखिल चाकरी भीख निदान। एक युग था जब भारतीय किसान घुटनों तक धोती और नंगे पैर खेतों में हल खग लकड़ी और मरियल भैंसों से हल चलाया करते थे। ये हमारी पहचान थी। लेकिन आज देखिए, हमारे भारतीय नौजवान आलीशान ट्रैक्टर पर बैठे हुए आधुनिक हलों से खेती कर रहे हैं। ट्रैक्टरों पर स्पीकरों का मैं राष्ट्रीय संगीत बज रहा है, अरे उठो जवानो धरो फावड़ा, अरे उठो जवानो धरो फावड़ा, जय बोलो उन वैज्ञानिकों की जिन्होंने करे नाल के कोठी कटले, उन्हें उठाओ देश हमारे राज की। अगर रेडियो न होते तो हमारे कृषि वैज्ञानिकों की खोज गांव के खेती हालों तक कैसे पहुंच पाती। एक सारी दुनिया आश्चर्यचकित है कि हमारी अर्थव्यवस्था विकास की ओर बढ़ रही है। हर क्षेत्र में हम विश्वास कर रहे हैं। दूध उत्पादन में विश्वास विश्व में अपना एक स्थान बना चुके हैं। आज हमारे क्षेत्र में निर्यात की ओर बढ़ रहे हैं। धन और तिलहन के उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्याप्त साधन जुटाए जा रहे हैं। अब और राष्ट्रीय कर्मधारों का विशेष ध्यान है कि अनाज के बाद
अब तिलन और

0: दुल्हन पर बहुत बड़ा जोर दिया जा रहा है।
1: जी प्रियंका बहन, आपने श्रीपाल सांगवान जी की आवाज़ का जो जोश था वो देखा,
2: बिल्कुल,
1: और इनकी आयु भी रेडियो की आयु के बराबर ही है। मैं जो अंदाज़ा लगा रहा था थोड़ा बहुत अंतर ही होगा, और कितनी सारी बातें बताई, पूरा एक इतिहास और एक खाका।
2: बिल्कुल, और उन्होंने बताया कि न सिर्फ आज बल्कि शुरू से ही किसानों तक जानकारी रेडियो के माध्यम से पहुंचती रही है। रेडियो बांटे गए गांव-गांव में, और हरित क्रांति के दौर में भी रेडियो के ज़रिए पूरी तरह से किसानों को जानकारी आकाशवाणी के माध्यम से मिलती रही। तो बहुत ही अच्छी जानकारी उन्होंने दी, और बहुत ही सचमुच एक पूरा जो कह रहे हैं ना आप, तस्वीर सामने आ गई कि उस दौर में रेडियो का कितना क्रेज़ लोगों के अंदर था।
1: जी, और अब सुनवाते हैं आपको रुस्तम सागर की आवाज़ में ये प्रस्तुति। बोल हैं, होनी हो बलवान जगत में।

0: आज़ादी हो, होनी तो होने के लिए होती है और होके ही रहती है, यही बता रहे थे रुस्तम सागर। और अब हम एक ऐसे फूल की बात करने वाले हैं प्रियंका बहन, जो पूरी दुनिया में एक अपना ही रुतबा रखता है,
1: बिल्कुल
0: और जब उसकी बात चलती है तो ना जाने कितनी सारी बातें उससे जुड़ी हुई चली जाती हैं और दूर तक जाती
1: और आप
0: हैं।
1: बात कर रहे हैं गुलाब की, क्योंकि गुलाब की डिमांड बाज़ार में बहुत अधिक है, और इसके साथ साथ कहते हैं ना कि उसकी पंखुड़ी भी बिकती है अगर सूखने के बाद, तो और भी ज़्यादा अच्छा दाम मिलता है। और पॉली हाउस में भी किसान भाई इसकी खेती कर रहे हैं, क्योंकि उसमें मुनाफा बहुत ज़्यादा है, और रख रखाव भी इसका काफ़ी अच्छी तरह रखना चाहिए, तभी आप एक गुलाब की खेती में सफल भी हो सकते हैं।
0: जी, और गुलाब की खेती की खास बात ये भी है कि ये एक नगदी फसल है और व्यावसायिक कृषि में भी ये आती है। तो आप ऐसी एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम देने वाले हैं।
1: देखिए, आज जो है रोज़ स्टेक होल्डर मीट हुई थी, और
0: जी
1: उस दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के निदेशक और कुलपति डॉक्टर C.H. श्रीनिवास राव ने अपना संबोधन दिया, तो सुनते हैं ये संबोधन।
0: जी
2: धन्यवाद आप सबको। आज हम लोग गुलाब का जो स्टेक होल्डर्स मीटिंग है IRI पूसा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से हम लोग किया, एंड मुख्य रूप में आज पुराना DG साहब हैं डॉक्टर परोड़ा साहब हमारा ये प्रोग्राम में शामिल हुआ। उसके साथ साथ जो ऑल इंडिया रोज एसोसिएशन का चेयरपर्सन है साड़ी साहब भी ज्वाइन किया। उसके साथ अलग अलग जगह से जो रोज स्टेक होल्डर्स हैं, कुछ लोग रोज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, रोज़ ग्रो कर रहे हैं, कुछ मौर्य होटल से भी कुछ लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं वो लोग इसमें शामिल हुआ। एंड भारत में अभी कम से कम लगभग 50,000 हेक्टेयर्स में ये रोज़ कल्टीवेशन चल रहे हैं, लेकिन हम लोग ये डिस्कस किया ये रोज़ का एरिया कैसा बढ़ाना है, ये लाभदायक कैसे होना चाहिए। अगर अकेले फार्मर करने से खर्चा ज़्यादा होता है, किसान मिलजुल के रोज़ क्रॉप लेने से, रोज़ का जो फ्लावर कल्टीवेशन लेने से कैसे लाभदायक होगा। कोई इंडस्ट्री का कुछ सुझाव दिया था अनुसंधान कैसा होना चाहिए, ये बड़ का जो

0: साइज कैसे बढ़ाना चाहिए, उसको लॉन्गेविटी कैसा होना चाहिए, एंड उसके अलावा मार्केट का जो चैलेंजेस हैं, जो सरकारी सपोर्ट सिस्टम कैसे लेके सेंसिटिविटी के लिए हम लोग जो रिक्वेस्ट किया था ये पॉलिसी बनाने के लिए, उसके साथ साथ जो रोज का जो अलग अलग समस्याएं, जो पेस्ट एंड डिसीजेस भी हैं, एंड वो भी हम लोग डिस्कस किया। मुख्य रूप में यही है, हमारा भारत में अलग अलग वातावरण है, एंड बीपी पाल साहब का जो खुद का वेराइटीज़ हैं, 100 वेराइटीज़ हैं, एंड हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का निदेशक रहा था, एंड DGP डायरेक्टर जनरल ICR रहा था, तो हम लोग आज रोज़ स्टेक होल्डर्स मीटिंग उनका जो नाम पर हम लोग स्टेक होल्डर्स मीटिंग किया। पिछले साल भी हमारा रोज़ गार्डन में IRI पूसा संस्थान में किया, एंड विशेष रूप में पाल साहब को मैं धन्यवाद करता हूँ, उनको बड़े मात्रा से उनका प्रॉपर्टीज है IRI के लिए उन्होंने दिया। एक जो मीटिंग आज हुआ उनका ग्रीन हिल्स जो जगह में आसपास में, उसमें हम लोग उनको ट्रिब्यूट करने के लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज किए। उसके अलावा हमारा शिमला सेंटर भी है IRI का, उधर भी उन्होंने गेस्ट हाउस, उनका ही मकान था। तो हम लोग आगे जो पाल साहब का जो सोच है, फिलॉसफी आगे ले जाने के लिए किस तरफ अनुसंधान करें, एंड कुछ सलाह ये भी आया इधर स्टूडेंट्स को रिसर्च करने के लिए थोड़ा अच्छा करेंगे, इधर जो रोज़ का जो हमारा फ्लोरिकल्चर में, फ्लावर्स में, फूल में कम से कम 50 विद्यार्थी IRI पूसा संस्थान में काम करता है। तो आज हम लोग डिस्कस किया रोज़ का समस्या, कुछ स्टेक होल्डर्स किसान ने उन्होंने प्रस्तुत किया, उस पर हम लोग रिसर्च अनुसंधान करेंगे, ये उनका समाधान ले आने के लिए हम लोग प्रयत्न करेंगे। उसके अलावा भी IRI संस्थान है, 10 रीजनल सेंटर्स है, तमिलनाडु, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा हैं, बंगाल हैं, एंड अलग अलग जगह में ये रोज़ का एक्सपेंशन कैसे लेके जाए। उधर भी हमारा संस्थान का जो वैज्ञानिक है, जो फूल का, हॉर्टिकल्चर क्राप्स का, उसको हम लोग भाग लेके एक्सपेंड कैसे करें, एंड मुख्य रूप में रोज़ किससे किसान का आमदनी कैसे बढ़े, एंड देश के लिए जो वेल्थ क्रिएशन कैसे करें। जो रोज़ का आज चिंतन तो रोज़ हुआ, बट अन्य फूल से भी काफ़ी हम लोग धान और गेहूं के लिए डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं, इतना लाभदायक नहीं हो रहा है धान और गेहूं, उसके साथ पानी भी लेके जा रहे हैं धान के साथ, हम लोग खाद भी बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं, जलवायु परिवर्तन भी कुछ संभावना उसी से है, ज़्यादा पानी फिर खाद डालने से, उसको लेकर हम लोग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं, ये गुलाब हो, जो क्राइसेंथेमम में हो, मेरी गोल्ड हो, अलग अलग जो फूल हो, सब्जी हो, एंड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए ध्यान देने के लिए ये मौका हम लोग लेके काफ़ी चिंतन किया। रिकमेंडेशन जो सजेशंस आया किसान से हम लोग के अनुसंधान करके रोज़ को आगे ले जाने के लिए जरूर प्रयत्न पूसा संस्थान से होगा।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे ये वक्तव्य है रोज स्टेक होल्डर्स मीट से जुड़ा हुआ, और वक्तव्य दे रहे थे डॉक्टर PH श्रीनिवास राव। आप डायरेक्टर हैं पूसा के और वाइस चांसलर हैं पूसा नई दिल्ली के।
2: और सचमुच देखिए बहुत संभावनाएं हैं फूलों की खेती में भी, बस जानकारी जुटाने की ज़रूरत है, तो आप सभी जानकारियां जुटा कर फूलों की खेती की ओर अपना कदम बढ़ा सकते हैं
1: जी।
2: इसके साथ ही आज का ग्राम संसार कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों को
1: राम राम।
2: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

0: ग्राम संसार, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 810 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। 7 बजने को है, थोड़ी देर में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा।

0: भारत और साइप्रस ने आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
1: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, मोबिलिटी, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत और यूरोपीय संघ के बीच संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि साइप्रस ने मुंबई में व्यापार कार्यालय खोलने की घोषणा की है। साइप्रस आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में हमेशा भारत के साथ रहा है। सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत सभी प्रकार की प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय जल्द ही ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमरे और अन्य उन्नत प्रौद्योगिकी से लैस स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1,00,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज की मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। ये पोस्टमार्टम नई दिल्ली के डॉक्टरों द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। ये निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय 2 भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मौत हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर ये 4थी मौत है। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ में प्रवेश कर चुकी हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम। और प्रियंका
1: देखिए
0: बहन,
1: देखिए, शुक्रवार को हम खास तौर से बात करते हैं कि फल सब्जियों
0: हाँ
1: को और मोटे अनाज को अपने खान पान में शामिल करके कैसे हम अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। भाई,
0: जी
1: फल सब्जी तो मौसम के अनुकूल खाने ही चाहिए, लेकिन अगर उन्हें प्राकृतिक रूप से उगाया गया हो तो सेहतमंद भी होते हैं और पौष्टिक भोजन हमें प्रदान करते हैं। और अगर प्राकृतिक खेती की बात करें तो इसमें लागत भी कम आती है और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ती है। और निरंतर प्रयास किया जा रहा है, जो हमारे किसान भाई हैं वो प्राकृतिक खेती की ओर रुख करें।
0: जी तो इसमें कम दाम और ज़्यादा दाम मिलते हैं, यानी कम दाम लगेंगे और ज़्यादा दाम मिलेंगे, ऐसा भी इसमें कहा जाता है। उत्पादन भी स्वास्थ्यवर्धक होता है, इसकी मांग भी बहुत सारी रहती है। तो आज बातचीत सुनवाते हैं आपको जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के क्या-क्या फ़ायदे हैं, और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर गगनेश शर्मा, और आपसे बात कर रहे हैं शिवनंदन लाल।
2: किसान भाई नमस्कार। आप अपने खेती से अधिक उत्पादन लेने के लिए विभिन्न तरीके के रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। उसके साथ साथ जब उसमें कीट और बीमारियां आ जाते हैं, उससे बचाव के लिए भी आप प्रयास करते हैं कि उसमें बहुत से रासायनिक दवाओं को डालते हैं, जिससे कि आपका उत्पादन तो कुछ स्तर तक बढ़ता है, लेकिन जो उससे दुष्प्रभाव होते हैं, मृदा का स्वास्थ्य खराब होता है, उसके स्वास्थ्य पर भी इन रासायनिक उर्वरकों और रासायनिक दवाओं का प्रभाव पड़ता है। तो क्यों न हम थोड़ा सा इससे हट के अपने प्राकृतिक खेती की तरफ जाएं, और जैविक खेती प्राकृतिक खेती क्या है, किस तरीके से इसे करें, इसके बारे में आज हम विस्तार से जानकारी लेते हैं डॉक्टर गगनेश शर्मा जी से, जो कि निदेशक हैं राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र गाजियाबाद में। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले जानना चाहूंगा कि जैविक और प्राकृतिक खेती दोनों में क्या विशेष अंतर है?
3: देखिए, जैविक खेती हो या प्राकृतिक खेती हो या अन्य कोई नाम हो, इसका बात हम कर रहे हैं केमिकल फ्री खेती,
2: जी
3: मतलब जिसमें हम सिंथेटिक फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का जो इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ऐसी जो खेती है उसको हम लोग प्राकृतिक खेती या जैविक खेती कहते हैं।
2: जी
3: परंतु अब जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के बीच में जो अंतर है वो समझना बहुत ही जरूरी है।
2: जी
3: दोनों ही खेती केमिकल फ्री फार्मिंग की ओर ले जाती हैं,
2: यानी
3: बहुत अच्छी हैं।
2: रसायन मुक्त खेती।
3: रसायन मुक्त खेती, बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। तो रसायन मुक्त खेती है और इसमें हमें सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं करना होता है। और अब हम उसको जैविक खेती कहें, प्राकृतिक खेती कहें, बाहर के देशों में रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर कहा जाता है, सस्टेनेबल फार्मिंग कहा जाता है, सतत खेती, ये सब चीज़ें अगर हम समझना चाहें कि भाई रसायन मुक्त खेती जो नंदन जी ने कहा वो बहुत ही अच्छा कहा, रसायनों से हमें मुक्ति पानी है, उस तरह की खेती होती है जैविक एवं प्राकृतिक खेती। अब जैविक खेती जो है वो पहले से चली आ रही है, बाहर के देशों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग नाम दिया, जैविक खेती नाम दिया हम, और उसमें एक मानक होते हैं, मानक इस तरह से होते हैं, नेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन जिनको हम कहते हैं, राष्ट्रीय जो मानक बनाए गए हैं, इन मानकों को ध्यान में रखते हुए जब हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं और वो अपेडा के द्वारा चलाए गए नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन NPOP प्रोग्राम में 2001 में, उसमें डेफिनेशन क्लियर कट दी गई है कि इस तरह की खेती को जैविक खेती कहा जाता है, जिसमें हम रसायनों की बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाता है और उसमें GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को भी नहीं डाला जाता है, उसका भी इस्तेमाल वर्जित है। अब करना क्या होता है जैविक खेती में, जैविक खेती में हमें क्या डालना है, फिर उसमें
2: जी
3: हमें डालना है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हम कहते हैं, जैसे फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, प्रोम से जाने जाते हैं, सिटी कंपोस्ट, ऑर्गेनिक मैन्योर, जैविक खाद जिसको हम कहते
2: जी
3: हैं,
2: जी जी
3: फार्मयार्ड मैन्योर, ठीक है, ये सारी जितनी भी जैविक के तरीके से हमने खादें बनाई होती हैं, केमिकल उसमें नहीं डाला होता है, उनको हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कहते हैं। तो जब हम उसको बाहर से खरीद के लेके आते हैं या खेत में भी कुछ बनाते हैं किसान भाई, वर्मी कंपोस्ट वगैरह, उसको हम लोग जैविक खेती कहते हैं। और अगर इंसेक्ट पेस्ट डिजीज का अटैक आता है तो हम बायो पेस्टिसाइड डालते हैं।

0: वो भी हम बाहर से खरीद सकते हैं, और साथ ही साथ हम बायो फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल करते हैं, जो जैविक तरीके से, मतलब जो खाद होती है जिसको हम कहते हैं, जैसे राइजोबियम की बात करते हैं, एजोटोबैक्टर की बात करते हैं, जिसके अंदर लाइव माइक्रोब्स होते हैं, मतलब जिंदा जो जीवाणु हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जिसको हम राइजोबियम कहते हैं दलहनी फसलों में, एजोटोबैक्टर है, एजोस्पिरिलियम है, ऐसे अंग्रेजी में नाम रखे गए हैं,
1: जी
0: फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया है, पोटैश मेबोलाइजिंग बैक्टीरिया है। तो जो बैक्टीरिया हैं, जो जिंदा हैं, उनको एक पैकेट में डाल के जब कंपनियां बनाती हैं, उसको जब खरीदते हैं किसान भाई, उसको हम लोग बायो फर्टिलाइजर का नाम देते हैं। तो बेसिकली जैविक खेती वह खेती है जिसमें हम बाहर से भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर खरीद सकते हैं किसान भाई, और उसको खेत में वो डालते हैं। और साथ ही साथ ग्रीन मैन्योरिंग, मल्चिंग और भी जो अच्छी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो किसान भाई करते हैं, ताकि आपकी मृदा का स्वास्थ्य अच्छा हो और पानी का भी बचाव हो। पानी की जो वाटर लेवल है वो बहुत नीचे चला जाता है जब हम केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड डालते हैं, पानी खराब भी हो जाता है, कंटेमिनेट भी हो जाता है रसायनों के कणों से जब वो बह जाते हैं। तो इस तरह की खेती को हम जैविक खेती कहते हैं।
1: जी
0: अब प्राकृतिक खेती के ऊपर अगर हम आते हैं, क्योंकि
1: जी
0: अभी से इसका बहुत प्रचार प्रसार हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी तो सभी देशवासियों से हमेशा कहते रहते हैं कि प्राकृतिक खेती को अपने एक एकड़ में, आधा एकड़ से किसान भाई शुरू करें और प्राकृतिक खेती को अपनाएं, जिसमें गाय का रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि गाय से गाय का गोबर मिलेगा, गौमूत्र मिलेगा। मतलब यहाँ पर किसान भाइयों को ये समझना जरूरी है कि प्राकृतिक खेती भी रसायन मुक्त खेती है, परंतु वहां पर इतना ही डिफरेंस है कि आपको ऑर्गेनिक खाद, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड जो मैंने आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग में गिनाए,
1: जी
0: ये आपको बाहर से खरीद के निर्भर नहीं रहना है। इवन सीड भी आप कोशिश ये करें कि आपके खेत में ही, जो आप बचाते हैं पुरानी पद्धति से, ट्रेडिशनल फार्मिंग हम करते थे, सीड जो है लोकली एक दूसरे से लिया करते थे, जो बचा के रखते थे हम लोग, ट्रेडिशनल सीड मिलेट्स में आज भी यूज किया जाता है। आपको इतना सा मैं शॉर्ट में कहूंगा कि जब आप गाय को पाल रहे हैं, इसको इंटीग्रेशन कहते हैं हम लोग, गाय का और हमारे जो ट्रीज हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, सबका कॉम्बिनेशन, यहाँ हमें ध्यान देना होता है मल्टीपल क्रॉपिंग के ऊपर
1: जी
0: प्राकृतिक खेती में, और इसमें मल्चिंग सबसे महत्वपूर्ण है, और ग्रीन मैन्योरिंग भी की जाती है इसमें, परंतु मल्चिंग और जो ऑन फार्म हम लोग गाय के गोबर से, गौमूत्र से, जो अपने खेत में ही, अपने रिसोर्सेज से, जो हमारे संसाधन आसपास पड़े हैं, चाहे वो खरपतवार हैं, हमारे सड़े गले पत्ते हैं, सूखे पत्ते हैं, इन सब से जब हम अपने गौमूत्र को मिला के कुछ बनाते हैं घोल, जो कि हमारी मृदा के स्वास्थ्य को भी ध्यान रखता है और कीट और बीमारियों से भी हमें बचाता है, इस तरह की खेती को हम प्राकृतिक खेती कहते हैं।
1: जिस तरीके से आपने सर गोबर गोमूत्र का जिक्र किया, तो जैविक और प्राकृतिक खेती में इनकी क्या भूमिका है, जीवामृत है तो उसको कैसे बनाया जाता है?
0: बिल्कुल, जैसे जीवामृत है तो जीवामृत को गाय का गोबर हमें चाहिए, और 200 लीटर का ड्रम किसान भाइयों को लेना होता है, और पूरी की पूरी बुकलेट और पैम्फलेट हमारी वेबसाइट में भी आप देखें, जिसमें अधिक जानकारी हमने दी हुई है कि कैसे इसको बनाना है। आपको 200 लीटर का ड्रम लिया, उसमें 20 किलो गाय का गोबर लिया, उसके अंदर हमने गौमूत्र भी लिया, और उसके साथ में गुड़ भी हमने 2-3 किलो जो है उसके अंदर डालना है, ताकि ये जो जितने भी इसके अंदर जो नेचुरल जीवाणु हैं गाय के गोबर के अंदर, तो वो जो हैं मल्टीप्लाई हो मिलियंस में।
1: जी
0: तो ये इसके पीछे का जो राज है वो ये है कि जब हम गाय का गोबर मिलाते हैं, फ्रेश काऊ डंग है, गाय का गोबर, गौमूत्र, इनसे क्या होता है कि इस तरह का उसके अंदर तत्व आते हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तो चलो बहुत कम मात्रा में होते हैं, परंतु जो जीवाणु हैं, जिसको हम कहते हैं कि जो बैक्टीरियाज हैं, वो बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत बेनिफिशियल हैं हमारी मृदा के लिए। तो सबसे पहले जब हम इस जीवामृत का इस्तेमाल हम अपनी मृदा में करते हैं, अच्छे से जब घोल के इसको ड्रम के अंदर 2-3 दिन रखा जाता है, और इसको स्टरिंग भी की जाती है, इसको हमें क्लॉकवाइज घुमाना होता है ताकि अच्छी ऑक्सीजन भी इसके अंदर प्रवाह हो और जितने भी जो जीवाणु हैं अच्छे वो खूब पनपें, और 10-15 दिन के अंदर ही हम इसको यूज कर लें। ये नहीं कि हम 15 दिन के बाद भी इसको रखें, ऐसा ना हो कि इसके अंदर पैथोजन और कंटेमिनेशन आ जाए, तो ये सावधानी भी बरतनी होती है। तो फटाफट इसको बनाया और उसी वक्त इसको पानी की मेंड में, जहां भी पानी आपने छोड़ा हुआ है उसके अंदर डाल के खेतों में जाने दिया, या आप इसको डाइल्यूट करके पानी के अंदर मिला के अच्छे से स्प्रे भी कर सकते हैं, मृदा के ऊपर डाल दीजिए, या आपने ग्रीन मैन्योरिंग की जो फसल ली हुई है उसको काटा है 10-15-20 दिन के अंदर बीज बोने से पहले, जो हम कहते हैं ना अपने खेत की तैयारी करते हैं,
1: जी
0: उस वक्त भी आप इसको मिला सकते हो, जुताई भी करते हैं उसकी, जब ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप हम यूज करते हैं उसके साथ भी इसको मिक्स किया जा सकता है, तो जल्दी डिकम्पोजिशन होगी और न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी, जो हमारे तत्व हैं, मिनरल्स हैं, उनकी जो अवेलेबिलिटी होगी हमारे मृदा

0: हमें बढ़ जाएगी। मृदा की जो उत्पादकता की क्षमता है, मतलब जो न्यूट्रिएंट सप्लाई करने की जो उसकी क्षमता है, वो बढ़ जाती है। और ऑर्गेनिक कार्बन सबसे बड़ी चीज़ है जो बड़ी स्पीड से बढ़ता है घन जीवामृत के इस्तेमाल करने से। तो घन जीवामृत अगर आप पूछेंगे तो वो कुछ नहीं है, उसमें यही जीवामृत का जो अगर हम थोड़ा सा निकाल के एक मग या 200 मिलीलीटर या 250 मिलीलीटर या 1 लीटर एक छोटी सी ढेरी गोबर की बना लें, तो आपने देखा होगा गोल गोल करके हम लोग इसको सुखा के और अच्छे से थोड़ा सा इसको महीन पीस के जीवामृत का इस्तेमाल भी किया है। एक दही की तरह हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे दही का है
1: ठीक
0: ना
1: है
0: जुगैन रखा होता है हमने, उस तरह से ही कल्चर अगर हम जीवामृत से लें फ्रेश जो 10-12 दिन का बना हुआ है, 6-7 महीने के लिए भी घन जीवामृत के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो घन जीवामृत ड्राई मटेरियल हो गया जिसको किसान भाई अपने स्टोर में स्टोर कर सकते हैं, और जब मृदा को जरूरत है ऑर्गेनिक कार्बन की और मिनरल न्यूट्रिएंट्स की, तब इसको जब फसल कुछ स्टेज बड़ी हो जाती है, 30-35 दिन बड़ी या 45 दिन बड़ी, उस वक्त भी हम किसी स्टेज पे इसको मृदा में डाल सकते हैं और इसकी भी न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई बढ़ जाती है और जड़ें जो हैं ये न्यूट्रिएंट्स को आसानी से ले भी लेते हैं। और मेन एम हमारा क्या है, चाहे वो जीवामृत है, घन जीवामृत है, बीजामृत भी होता है
1: जी।
0: जिसमें हम बीजों का शोधन करते हैं, क्योंकि बीज सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो बीज का शोधन या तो बहुत से लोग ट्रेडिशनली गौमूत्र से भी करते थे डाइल्यूट करके, जो बीजामृत है उसका भी ऐसे ही रहता है, जैसे गाय का जो गौमूत्र है उसका इस्तेमाल किया जाता है, थोड़ा सा गुड़ होता है और गाय का गोबर है, और साथ ही साथ अगर हमें जो गुलर है पीपल है इसके पेड़ के आसपास की मिट्टी मिल जाए, तो जिसमें ऑलरेडी जीवाणु बहुत ज़्यादा होते हैं और उसको कल्टीवेशन में हमने नहीं लाया हुआ है, इस तरह की मिट्टी का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और चाहे वो जीवामृत हो बीजामृत हो, यही गाय के गोबर गौमूत्र और गुड़, ये तीन चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं। अब तो किसान भाई इसको बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, हमारे से भी अच्छा उनको ज्ञान अर्जित कर चुके हैं, क्योंकि वो बार बार प्रैक्टिकली इसको इस्तेमाल करके डाल रहे हैं। गुजरात हो, हिमाचल प्रदेश हो, आंध्रा हो, आंध्रा में देखिए 15-16 लाख किसान जीवामृत बीजामृत घन जीवामृत इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही साथ गौमूत्र से वो बायोपेस्टिसाइड भी बना रहे हैं। बायोपेस्टिसाइड का मतलब है कि वैसे तो जब आप जैविक खेती या प्राकृतिक खेती एक बार अपनाता है किसान भाई या बहन, विज्ञान भी यही कहता है कि जब हम जैविक खेती प्राकृतिक खेती अपनाते हैं तो कीटों का बीमारियों का जो प्रकोप है वो 50 से 75% तक घट जाता है। तो हमें बाहर से कोई भी बायोपेस्टिसाइड खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो भी थोड़ा बहुत हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं उसके लिए हम इतना ही कर सकते हैं कि जितने भी कड़वे पत्ते जिसको हम 10 परनी कहते हैं, 10 पत्तों का जो अर्क बनाना है गौमूत्र के साथ मिला के, कुछ किसान भाई उसको बॉईल करके पत्तों को डाल के रखते हैं, फिर उनको छान लेते हैं, फिर ठंडा करके उसमें काऊ यूरिन में मिला लेते हैं, फिर उसका इस्तेमाल डाइल्यूट करके किया जाता है। फसलों के ऊपर भी छिड़काव कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, ताकि रूट में भी अच्छा रहे, हमारी मृदा का भी इम्यूनिटी बनी रहे। तो ये सब हम जब अपनाते हैं तो किसान भाइयों का हमारा जो, चाहे जैविक खेती है प्राकृतिक खेती है, प्राकृतिक खेती में तो हमारा जो मेन एम है भारत सरकार का, जो देखा गया कि किसान भाइयों ने जब प्राकृतिक खेती अपनाई, तो
1: जी
0: प्राकृतिक खेती अपनाने से किसान भाइयों का मृदा का स्वास्थ्य तो अच्छा हुआ ही हुआ, साथ ही साथ किसान भाई जो स्प्रे करते हैं खेतों में उनकी लागत में भी कमी आई। जैसे आप ये देखें कि अगर 1 एकड़ खेत में मान लीजिए किसी किसान भाई को 10 से 15 हजार रुपये का खर्चा आता है केमिकल्स का या पेस्टिसाइड्स का, यूरिया डीएपी एमओपी का, तो इसको ध्यान में रखते हुए कि जो लागत है किसान भाई की वो कम हो जाती है जब हम प्राकृतिक खेती अपनाते हैं। क्योंकि किसान भाई की जो प्राकृतिक खेती अगर हम प्रति एकड़ बात करें तो इसमें 500 से 1000 रुपये से ज़्यादा खर्चा नहीं आता है किसान भाइयों का, थोड़ा सा उनका अपना लेबर का है कि उनको अपना मेहनत करनी होती है इसको बनाने में और बार बार डालना है, तो ये थोड़ा सा चैलेंज रहता है। और इसकी तकनीक है उसको समझना बहुत ज़रूरी रहता है किसान भाइयों को, तो कहाँ 10 से 15 हजार प्रति एकड़ और कहाँ 1000 से 2000 रुपये प्रति एकड़ तक, इतना फ़ायदा जो है किसान भाइयों को लागत कम करने में मिल जाता है। तो जो भी उनका आगे उत्पाद आता है, क्योंकि पहली साल में अगर आप कन्वर्जन कर रहे हैं केमिकल खेती से प्राकृतिक खेती या जैविक खेती की ओर बढ़े हैं,
1: जी
0: तो वहाँ पर ऑर्गेनिक कार्बन कम है क्योंकि हमने ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं डाला है, ऑर्गेनिक खाद नहीं डाली है, वहाँ पर जीवाणु नहीं है, नेचुरल जो बायोलॉजिकल साइकिल्स हैं जो हमारी प्रकृति की बनाए हुए नियमों के आधार पर जो अपने आप जो न्यूट्रिएंट सप्लाई करने की कैपेसिटी हमारी मृदा की वो इतनी अच्छी नहीं रह जाती है जब हम केमिकल्स का बार बार इस्तेमाल करते हैं, यूरिया डीएपी एमओपी का, और अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं, तब ज़्यादा परेशानी है। अगर हम बैलेंस्ड करें और साथ ही साथ हम ऑर्गेनिक खाद भी डालते रहें 20-25%, तो इतनी दिक्कत नहीं आती है ऑर्गेनिक कार्बन की कमी।

0: इतने देखने को नहीं मिलती है। परंतु प्राकृतिक खेती में जब हम अपनाते हैं तो कुछ किसान कहते हैं कि हमारी पैदावार कम हुई।
1: जी
0: पैदावार कम होती है जब आप मोनोक्रॉपिंग की तरफ जाएं, सेम क्रॉप आप बार बार ले रहे हैं, जैसे राइस कर रहे हैं तो जैसे उड़ीसा है, मध्य प्रदेश हमारा कहीं है, या हमारे पंजाब है, तो वहाँ पर बड़े बड़े खेतों में हमने राइस लगाया हुआ है, गेहूं लगा रखा है, और मल्टीपल क्रॉपिंग नहीं करते हैं हम लोग। तो ऐसी स्थिति में जब ऑर्गेनिक कार्बन बहुत ही कम हो गया है और मृदा का स्वास्थ्य काफ़ी बिगड़ चुका है, जब हम जैविक खेती या प्राकृतिक खेती की तरफ जाते हैं तो हमें 2 साल तक कुछ इंतज़ार करना पड़ता है, जब तक कि हमारी मृदा में न्यूट्रिएंट्स नेचुरल आ ना जाएं, जीवाणु अच्छे से आ ना जाएं, ऑर्गेनिक कार्बन अच्छे से बिल्डअप ना हो जाए, 1% तक पहुंच ना जाए, तब तक फिर वो प्रोडक्शन में थोड़ी कमी महसूस की जाती है। परंतु अगर किसान भाई सजग हैं और प्राकृतिक खेती को अपनाते हैं और फटाफट वो ऑर्गेनिक कार्बन को ग्रीन मैन्योरिंग करके जो आपको सुझाए जाते हैं स्टेप वो बताए जाते हैं पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस में कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा, अधिक जानकारी के लिए आप उनसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी नेचुरल फार्मिंग के मॉडल लगाए गए हैं किसान भाइयों के लिए। 725 के करीब लोकल नेचुरल फार्मिंग इंस्टीट्यूशंस हैं पूरी कंट्री में मिशन नेचुरल फार्मिंग में। तो किसान भाई अपने नज़दीकी KVK में देख सकते हैं कि किस तरह से वो KVK मॉडल तैयार किए हैं प्राकृतिक खेती का, वहाँ सीख सकते हैं जीवामृत बीजामृत कैसे बनाया जा रहा है। 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स बनाए गए हैं, BRCs बनाए गए हैं किसान भाइयों के फायदे के लिए मिशन नेचुरल फार्मिंग में। तो मिशन नेचुरल फार्मिंग में ये जो 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स हैं, कुछ किसान भाइयों का कहना है कि उनको बहुत चैलेंज लगता है। चैलेंज इस तरह से होता है कि उनके पास साउथ में या ईस्टर्न साइड में गाय नहीं है, तो गाय का पालन उनके लिए बड़ा मुश्किल भी है। कुछ जगहों में गाय नहीं पाल पाते, रख नहीं सकते हैं किसी कारणवश, तो अगर गाय नहीं है तो गाय का गोबर नहीं है, गौमूत्र नहीं है, तो कैसे बनाया जाए। तो इसके लिए सरकार ने बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स का गठन करवाया है सभी राज्य सरकारों से, डिस्ट्रिक्ट वाइज, ब्लॉक वाइज, और यहाँ से जो किसानों के क्लस्टर हैं समूह में जो काम कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के मिशन में, तो वो इन BRC से, क्योंकि बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर ऐसा सेंटर होता है जहाँ पर बीज से लेके, चाहे वो ट्रेडिशनल बीज है, हाइब्रिड सीड है, और केमिकल रहित, मतलब उसको ट्रीटमेंट नहीं दी गई है, इस तरह का सीड का उपलब्धता करवाने की जिम्मेवारी बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर के पास है। जीवामृत बीजामृत घन जीवामृत अगर किसान भाई घोल के नहीं बना पाते हैं
1: जी
0: तो मुश्किल लगता है। कई कई कहते हैं कि हमें स्मेल भी आती है, कुछ किसान भाइयों का ये भी कहना होता है। तो ठीक है, अगर उनसे नहीं होता है तब भी सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलके ये बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर का प्रावधान रखा है। तो जो एंटरप्रेन्योर है BRC का, उनको 1 लाख रुपए का कुछ इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं BRC तैयार करने के लिए, ड्रम वगैरह रखने के लिए, और गाय का गोबर वो नजदीकी गौशाला से या कहीं से सोर्स कर सकते हैं दूर से, ट्रैक्टर वगैरह में लाके, और वहां पर वो जीवामृत बीजामृत बना के लोकल लेवल पर किसानों को सप्लाई भी कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने काफ़ी विस्तार से बताया कि किस तरीके से हमारे किसान भाई जैविक खेती और प्राकृतिक खेती करके अपना उत्पादन ही नहीं बढ़ा सकते हैं, अपने मृदा के स्वास्थ्य को भी अच्छा रख सकते हैं और स्वयं भी उसके उत्पाद को प्रयोग करके स्वस्थ रह सकते हैं। और बहुत सी सरकार की योजनाएं भी ऐसी हैं कि जो प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को बढ़ावा दे रही हैं, उनका भी लाभ ले सकते हैं। डॉक्टर गगनेश शर्मा जी, आप स्टूडियो में आए और बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी हाँ साथियों, कहते भी हैं ना कि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, तो जो जैविक खेती के उत्पाद खाएंगे, प्राकृतिक खेती के उत्पाद खाएंगे, तो हमारा शरीर भी स्वस्थ और निरोगी बनेगा। अभी आप सुन रहे थे बातचीत जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के फायदे, विषय विशेषज्ञ थे डॉक्टर गगनेश शर्मा और आपसे बात कर रहे थे शिवनंदन लाल।
3: और अब करवाते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं ज्ञानेंद्र सरदाना की आवाज़ में ये किसान गीत।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे ज्ञानेंद्र सरधाना को, और आपको जानकारी दे दें कि मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि कल भी आज की तरह लू चलती रहेगी, तो आप अपना ध्यान रखें, मवेशियों का ध्यान रखें और आसपास का ध्यान रखें।
1: इसके साथ साथ आपको याद दिला दें कि कल है शनिवार और शनिवार को आपका पसंदीदा फोन इन कार्यक्रम हेलोग्राम संसार प्रसारित किया जाता है, जिसमें आपकी फरमाइश के गीतों को हम कार्यक्रम में शामिल करते हैं। तो जिन भी भाइयों ने रिकॉर्डिंग कराई है या जो अपनी रिकॉर्डिंग कराना चाहते हैं और कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, तो 6:30 पर हेलोग्राम संसार कार्यक्रम सुनना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही आज का कृषि जगत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को
0: राम राम। और कार्यक्रम के संयोजक थे शिवनंदन लाल और प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर।

कृषि जगत, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं गजल और कव्वालियों का कार्यक्रम।

0: शॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने
1: करेंगे आप भी पैरों इसी तरह।
0: सोलर पैनल है ना, मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा।

0: दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत मतदाता सूचियों का घर घर जाकर सत्यापन 30 जून से शुरू होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोगों पर आर्थिक बोझ कम करने के लिए पानी और बुनियादी ढांचा विकास शुल्क किफायती बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज बुराड़ी के मुखमेलपुर गांव में ऑक्सीजन पार्क का शिलान्यास किया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जोधपुर से दिल्ली कैंट के लिए 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया और दिल्ली सरकार ने बकरीद से पहले पशु कल्याण कानूनों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत बूथ स्तर के अधिकारी मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए 30 जून से घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। ये सर्वेक्षण 29 जुलाई तक चलेगा।
1: SIR के संबंध में दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी प्रमुख राजनीतिक दलों भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस और नेशनल पीपल्स पार्टी के साथ बैठक की। सभी दलों से प्रत्येक मतदान केंद्र पर बूथ स्तरीय एजेंट नियुक्त करने का अनुरोध किया गया। सभी दलों ने प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। मतदाताओं की मदद के लिए जागरूकता वीडियो भी जारी किया गया है। मतदाता सूची 5 अगस्त को जारी होगी, वहीं दावे और आपत्तियां 4 सितंबर तक स्वीकार किए जाएंगे। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी होगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी योग्य मतदाता छूटे नहीं और कोई भी अयोग्य मतदाता सूची में शामिल ना हो। ईशानी की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
0: दिल्ली सरकार ने पानी और बुनियादी ढांचा विकास शुल्क को अधिक किफायती बनाकर नागरिकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि नई व्यवस्था का उद्देश्य नागरिकों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। उन्होंने बताया कि पिछली व्यवस्था के अंतर्गत जल और सीवेज सेवाएं अव्यवस्थित थी, बिलिंग प्रणाली में खामियां थी और लोगों को अक्सर अनुमानित और बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए बिलों का सामना करना पड़ता था। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि नई नीति के अंतर्गत बुनियादी ढांचा शुल्क अब प्रॉपर्टी के कुल क्षेत्रफल के बजाय पानी की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर तय किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये शुल्क केवल नए निर्माण या अतिरिक्त निर्माण पर ही लागू होंगे। वहीं पुनर्निर्माण होने वाले मकानों में यदि पानी की आवश्यकता नहीं बढ़ती है तो कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि इस नीति के अंतर्गत बिना ढके या खुले क्षेत्रों की पानी की आवश्यकता की गणना नहीं की जाएगी। साथ ही विभिन्न श्रेणियों की कॉलोनियों के लिए विशेष छूट भी दी जाएगी।
3: दिल्ली में जो E&F की कॉलोनियां है उसमें 50% की छूट दिल्ली सरकार दे रही है IFC चार्जेस में, और जी और एच श्रेणी की कॉलोनियों में 70% की छूट IFC चार्जेस में देने का निर्णय सरकार ने लिया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस जो केवल उन्हीं संपत्तियों पे लागू होगा जो 200 वर्ग मीटर से अधिक भूखंड क्षेत्रफल पे बनी है।
2: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि पहले जहां कुछ संपत्तियों पर 13 लाख रुपए से अधिक का शुल्क लगता था, अब वह घटकर 5,40,000 रुपए रह जाएगा। इसके अलावा श्रेणी के अनुसार शुल्क में और कमी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नई व्यवस्था से भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, प्रक्रिया सरल होगी और लोग बिना किसी परेशानी के अपने शुल्क जमा कर सकेंगे। ईशानी के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
0: दिल्ली सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने ई निविदा प्रक्रिया को अधिक निष्पक्ष और सरल बनाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य दिल्ली सरकार के ई खरीद पोर्टल पर एकीकृत ई पेमेंट समाधान को लागू करना है। दिल्ली के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि इस समझौते से मैनुअल प्रक्रियाएं खत्म होंगी और लेनदेन की तत्काल पुष्टि संभव होगी। उन्होंने कहा कि ये पहल डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने और कारोबार को आसान बनाने को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पर्यावरण अनुकूल विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देते हुए आज बुराड़ी के मुखमेलपुर गांव में एक ऑक्सीजन पार्क का शिलान्यास किया। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि लगभग 3 एकड़ में बनने वाला ये पार्क केवल हरित क्षेत्र नहीं होगा बल्कि स्थानीय नागरिकों के लिए स्वास्थ्य, मनोरंजन तथा सामाजिक सहभागिता का आधुनिक केंद्र बनेगा। उन्होंने बताया कि पार्क के निर्माण के लिए वन विभाग ने 1 करोड़ रूपये स्वीकृत किए हैं तथा अतिरिक्त 1 करोड़ रूपये उनकी

0: निधि से प्रदान किए जाएंगे।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस ऑक्सीजन पार्क में वॉकिंग ट्रैक, सुंदर तालाब, बैठने के लिए छायादार जगह और विभिन्न प्रजातियों के सैकड़ों पेड़ लगाए जाएंगे। साथ ही पर्याप्त हरित क्षेत्र और खुले स्थान विकसित किए जाएंगे, जिससे नागरिकों को स्वच्छ और शांत वातावरण मिल सके। उन्होंने कहा कि बच्चों, महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह पार्क सैर, व्यायाम, योग तथा सामुदायिक गतिविधियों का आदर्श केंद्र बनेगा। श्रीमती गुप्ता ने जानकारी दी कि इस परियोजना से मुखमेलपुर के अलावा जिंदपुर, बख्तावरपुर, हिरंकी और आसपास के क्षेत्रों के हजारों लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में राजधानी में ऐसे और भी ऑक्सीजन पार्क विकसित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में सीवर लाइन, पेयजल पाइपलाइन और अन्य विकास कार्यों के लिए 20 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा गांवों और बाहरी दिल्ली के क्षेत्रों में करीब 10,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं पर काम जारी है। उन्होंने बुराड़ी अस्पताल में नई चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार और बंद पड़े वाहन फिटनेस केंद्र को आधुनिक ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर में विकसित किए जाने की जानकारी भी दी। प्रादेशिक समाचार के लिए ईशानी के साथ अक्षित वैद्यान।
0: मुख्यमंत्री ने आज साझा परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उबर की राइड शेयरिंग सेवा का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस दौरान पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली हवाई अड्डे से शुरू हुई इस सेवा से बड़ी संख्या में यात्रियों को लाभ मिलेगा।
2: दिल्ली के अंदर पोल्यूशन को कम करने के लिए जरूरी है कि लोग अपनी राइड को शेयर करें। ये व्यवस्था काफी समय से कोविड के दौरान बंद कर दी गई। अभी हमारी कई मीटिंगों के बाद उबर और बाकी सभी राइडर्स ने ये श्योर किया है कि वो इसको लागू करेंगे। ऐसे में जहां पैसे की बचत होगी वहीं पोल्यूशन नहीं होगा, और तीसरा साथ में अब फ्यूल की बचत भी होगी, जो हम सबके लिए बहुत जरूरी है हमारी फॉरेन करेंसी को बचाने के लिए।
0: केंद्रीय रेल, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जोधपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली कैंट के लिए 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। इस रेलगाड़ी में पहले 8 डिब्बे थे। जोधपुर में आयोजित कार्यक्रम में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा और बढ़ी हुई बैठने की क्षमता मिलेगी।
3: जोधपुर से दिल्ली की जो वंदे भारत ट्रेन है, बहुत ही एक पॉपुलर ट्रेन है। जब से चालू हुई तब से 150% से अधिक इसका रहता था ऑक्यूपेंसी, तो अब इसको 8 कोच से बढ़ाकर यह सीधा 20 कोच में कन्वर्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ आज जैसलमेर से अहमदाबाद की सर्विस भी शुरू होगी, और जोधपुर में नई गाड़ियां शुरू हो सके इसके लिए एक कोचिंग टर्मिनल की व्यवस्था भी जोधपुर से होगी। और हरिद्वार की एक जो बहुत बड़ी डिमांड है उसके ऊपर भी काम चल रहा है, आने वाले समय में वो डिमांड भी पूरी होगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे।
4: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। प्रादेशिक समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने दिल्ली में खाद्य और आपूर्ति विभाग के एक सहायक आयुक्त को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। सीबीआई के अनुसार आरोपी ने 475 राशन कार्डों के आवंटन और वितरण के लिए प्रति कार्ड 100 रुपए की मांग की थी। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए अब तक इस मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से 2 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ बरामद किया है। ये गिरोह उत्तर प्रदेश और मणिपुर सहित राष्ट्रीय राजधानी में सक्रिय था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उमर खालिद को 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित बड़ी साजिश से जुड़े मामले में 3 दिन की अंतरिम जमानत दी है। उमर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत जेल में बंद है। न्यायालय ने 1 जून से 3 जून तक कड़ी शर्तों के साथ रिहा करने की अनुमति दी है। खालिद ने अपने दिवंगत चाचा के 40वें में शामिल होने और अपनी मां की शल्य चिकित्सा के दौरान उनकी देखभाल करने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट

0: वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने बकरीद से पहले पशु कल्याण कानूनों के कड़ाई से पालन के निर्देश जारी किए हैं। बैठक के दौरान दिल्ली विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने अधिकारियों को पशु कल्याण से संबंधित सभी प्रावधानों और कानूनों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
1: श्री मिश्रा ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर पशुओं की खरीद बिक्री पूरी तरह से अवैध है। सड़कों, गलियों या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार की कुर्बानी नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पशुओं के अवैध परिवहन, अवैध बूचड़खाने के संचालन या कानून के उल्लंघन से संबंधित किसी भी शिकायत पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को पशु कल्याण कानूनों और नागरिकों में जागरूकता फैलाने के लिए पोस्टर, सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाने का भी निर्देश दिया है। दीपेंद्र और सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए जया भारती।
0: इस बीच सरकार ने कहा है कि बकरीद पर दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय 28 मई को बंद रहेंगे। पहले ये छुट्टी 27 मई को निर्धारित थी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने सरायकाले खां नमो भारत स्टेशन पर व्यावसायिक स्थानों की लाइसेंसिंग के लिए निविदा आमंत्रित की है। ये कदम यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और स्टेशन परिसरों को विकसित करने की दिशा में उठाया गया है। बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में प्रसूति और स्त्री रोग विभाग की डॉक्टर के अपर्णा शर्मा ने दिन में आवश्यकता न होने पर घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है।
2: प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिससे उन पे इसका असर और भी ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि डे टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब तक शाम को हीट कम ना हो जाए बाहर बहुत ज़्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंटली बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिए और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। तो जैसे नींबू पानी, नमक डाल के पिए या ORS पिए। तो अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं तो काफ़ी हद तक हम सेफ रह सकते हैं।
0: इस बीच दिल्ली में आज भी भीषण गर्मी जारी रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 43.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल भी दिल्ली में लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ेगा। अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। CBSE ने ये निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत मतदाता सूचियों का घर घर जाकर सत्यापन 30 जून से शुरू होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोगों पर आर्थिक बोझ कम करने के लिए पानी और बुनियादी ढांचा विकास शुल्क किफायती बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज बुराड़ी के मुखमेलपुर गांव में ऑक्सीजन पार्क का शिलान्यास किया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जोधपुर से दिल्ली कैंट के लिए 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया और दिल्ली सरकार ने बकरीद से पहले पशु कल्याण कानूनों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत मालिका।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मालिका। और आइए अगला गीत सुनते हैं फिल्म विजयपथ से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

ए आर रहमान की आवाज़ में आप सुन रहे थे फिल्म दिल ले छे का ये गीत। आइए अब सुनते हैं आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म तक्षक से ये गीत।

इस गीत के साथ ही गीत मालिका कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 810 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे समाचार संध्या। 9 बजे वक्त रहेगा इवनिंग न्यूज का और उसके बाद उर्दू खबरें। अब से थोड़ी देर में प्रसारित होगा समाचार संध्या।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडो

0: राइडर्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया है।
1: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
2: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
3: इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म।
0: सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है।
4: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से बाहर करने का भी प्रण लिया है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार के सशक्त प्रयासों से नक्सलवाद की 5 दशक पुरानी समस्या का प्रभावी अंत हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।

0: संध्या में आपका फिर स्वागत है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। यह सफल परीक्षण भारत के रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है। यह देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अग्निवन कम दूरी की सतह से सतह तक मार करने वाली स्वदेशी स्तर पर विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है। यह पारंपरिक और रणनीतिक पेलोड्स ले जाने में सक्षम है और त्वरित तैनाती के लिए इसे तैयार किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1,00,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत कौशल आधारित समग्र शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पोषण और खेल गतिविधियों पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा संजय हवलदार नीट UG परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त की गई थी। अब तक मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा के संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला की वागदेवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारत ने अफगानिस्तान के बाल टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए बीसीजी, टेटनेस और डिप्थीरिया के टीकों की 20 टन आवश्यक सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान को और खेप भेजी जा रही है। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अफगानिस्तान के लोगों की निरंतर सहायता की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस सहायता का उद्देश्य अफगानिस्तान में बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवा को मजबूत करना और टीकाकरण का दायरा बढ़ाना है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री

0: पेनिवोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशीमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय दो भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मृत्यु हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए थे और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर यह चौथी मौत है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स नई दिल्ली के प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अपर्णा शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
1: प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिससे उन पर इसका असर और भी ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि डे टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब तक शाम को हीट कम ना हो जाए बाहर बहुत ज़्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिए और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। तो जैसे नींबू पानी, नमक डाल के पिए या ORS पिए। तो अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं तो काफ़ी हद तक हम सेफ रह सकते हैं।
0: बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 16वें ओवर में 2 विकेट पर 204 रन बना लिए हैं। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। देश में आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करना है। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। भारत और कुब्रुस ने दहशतगर्दी से लड़ने के लिए मुश्तरका फोर्स तश्कील देने से इत्तेफाक किया है। दोनों मुल्कों ने बाहमी ताल्लुकात को कलीदी शराकतदारी का दर्जा दिया है। दोनों मुल्कों ने इक्तसादी तआवुन को फरोग देने की गरज से कई माहिदों पर दस्तखत भी किए हैं। हुकूमत स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट शुरू करेगी ताकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ तमाम सरहदों को ऐसा बनाया जाए जिन्हें तोड़कर दाखिल होना मुमकिन न हो। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में मुख्तसर दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 की कामयाबी के साथ आजमाइश की है। भारत ने अफगानिस्तान में टीकों से मुतालिक 20 टन अहम तरीन सामान रवाना किया है ताकि बच्चों की टीकाकारी के प्रोग्राम को मजबूत बनाया जा सके। क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और कुब्रुस के सदर निकोस

0: स्टोडिलाइट्स ने आज दहशतगर्दी की तमाम किस्मों और सरहद पार की दहशतगर्दी समेत तमाम मजाहिर से मुकाबला आरई के अपने अज़्म का इरादा किया। दोनों लीडरों ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आज एक बाहमी मीटिंग की। दोनों लीडरों के दरमियान मुजाकरात के बाद मुख्तलिफ माहदे तय पाए, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी के लिए एक मुश्तरक वर्किंग ग्रुप कायम करने से मुतालिक एक मफाहमत नामा और सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट बरए खारजी खिदमात और कुब्रुस की सिफारती अकेडमी के दरमियान सिफारतकारी के शोबे में तरबियत से मुतालिक एक मफाहमत नामा शामिल है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल और खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिसरी इस मीटिंग में मौजूद थे। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत और कुब्रुस कनेक्टिविटी से मुतालिक स्कीमों पर मिलकर काम करेंगे, जैसे भारत बहरुल काहिल समंदरों से मुतालिक स्कीम और भारत मशरक वस्ता यूरोप इकतसादी राहदारी दिफा और सलामती के शोबे में तआवुन के बारे में जनाब मोदी ने बताया कि दोनों मुल्कों ने साइबर सिक्योरिटी, समंदरी सरहदों की सलामती और इंसदाद दहशतगर्दी में शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने से इत्तेफाक किया है।
1: रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी हमारे संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: भारत और कुब्रुस ने अपने ताल्लुकात को बढ़ाकर उन्हें कलीदी शराकत दारी की सतह तक पहुंचाने का भी फैसला किया है और एक मुश्तरक टास्क फोर्स का आगाज किया है ताकि बुनियादी ढांचे और जहाजरानी समेत मुख्तलिफ शोबों में तआवुन को मुस्तहकम किया जा सके। इस फैसले की सताइश करते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत और कुब्रुस के दरमियान रिश्ता हर अहद में बेहद मजबूत रहा है।
1: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
0: बाद में मीडिया से बात करते हुए वजारत खारजा में मगरबी उमूर से मुतालिक सेक्रेटरी सिब्बी जॉर्ज ने बताया कि दोनों लीडरों ने वसीतर मामलात पर तबादला ख्याल किया, जिनमें तिजारत और सरमायाकारी, दिफा, समंदरी सरहदों की सिक्योरिटी, मालियाती कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी और इख्तराआत, आमोदरफ्त, तालीम, सकाफत और भारत यूरोपीय यूनियन के दरमियान रिश्तों के मामलात में तआवुन को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज की गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 19वें रोजगार मेले में कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तलिफ सरकारी महकमों और तंजीमों में 51,000 से ज्यादा नौ तकरर शुदा नौजवानों को तकरूरी के खत तकसीम करेंगे। इस मौके पर मौजूद अफराद से बातचीत भी करेंगे। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि रोजगार मेला एक अहम पहल है, जिससे वजीर आजम के रोजगार के मौके पैदा करने को आला तरीन तरजीह देने और इस ख्वाब को ताबीर अता करने के अज़्म का इजहार होता है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: रोजगार मेला वजीर आजम के रोजगार के मौके पैदा करने को अव्वलीन तरजीह देने के अज़्म की तकमील की जानिब एक कदम है। रोजगार मेला नौजवानों को बामाने मौके फराहम करने में अहम रोल अदा कर रहा है, ताकि वो बाख्तियार हो सकें और मुल्क की तामीर में हिस्सा ले सकें। अपने आगाज के वक्त से मुल्क भर में मुनक्किदा 18 रोजगार मेलों के जरिए तकरीबन 20 लाख तकरूरियों के खतूत जारी किए जा चुके हैं। 19वां रोजगार मेला मुल्क भर में 47 मुकामात पर मुनक्किद होगा। 9 तकरूरशुदा उम्मीदवार, जिन्हें मुल्क भर से मुंतखब किया गया है, मुख्तलिफ वजारतों और महकमों को ज्वाइन करेंगे, जिनमें रेलवे, दाखिली उमूर, सेहत और खानदानी बहबूद और आला तालीम के महकमे के अलावा दीगर कई दूसरे महकमे शामिल होंगे। नई दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: हुकूमत स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट शुरू करेगी और बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ तमाम सरहदों को ऐसा बना देगी जिन्हें तोड़कर दाखिल होना मुमकिन न हो। जनाब शाह नई दिल्ली में आज सरहदी हिफाजती फोर्स BSF के इन्वेस्टिचर तकरीब और रुस्तम जी मेमोरियल लेक्चर से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने ये बात कही। उन्होंने बताया कि स्मार्ट बॉर्डर तसव्वुर के तहत तमाम नौयत की टेक्नोलॉजियों को मरबूत करके अगले बरस तक सरहदों की सिक्योरिटी का एक ऐसा ग्रिड तामीर करने की जानिब काम जारी है, जिस पर हमला करके कामयाबी हासिल कर पाना नामुमकिन होगा। उन्होंने कहा कि

0: वजारत जल्द ही स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट मुतारिफ कराएगी जो ड्रोन्स, रडार्स, जदीद तरीन कैमरों और दीगर नई टेक्नोलॉजियों से लैस होगा। वजीर दाखिला ने बताया कि जैसे ही इस स्कीम का आगाज होगा, सरहदी हिफाजती फोर्स का काम खातिर हद तक आसान और मजबूत हो जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को साइबर खतरात, हाइब्रिड नौयत के जंगी सामान और ड्रोन से मुतालिक चैलेंजों से निमटने के लिए नई हिकमत अमली को अपनाना लाजमी है।
1: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: वजीर दाखला ने कहा कि नरेंद्र मोदी की क्यादत में हुकूमत का यह अज्म है कि वो न सिर्फ दरानंदाजी को रोके बल्कि दरानंदाजी करने वाले फर्द वाहिद की भी शनाख्त करे और उसे निकाल बाहर करे और आबादी में गैर फितरी तब्दीली किसी हाल में भी मुमकिन न होने दे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ओडिशा के चांदीपुर में आज मुख्तसर दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि एक की कामयाबी के साथ आजमाइश की गई। वजारत दिफा ने बताया कि यह आजमाइश तमाम कार्रवाई जाती और तकनीकी पैमानों पर खरी उतरी। ये आजमाइश स्ट्रेटेजिक फोर्स कमान के तहत की गई। ये कामयाब आजमाइश भारत की कलीदी दिफाई तैयारी में एक और संगे मील की अलामत है और मुल्क की कम अज कम भरोसेमंद दिफाई सलाहियत पर एतमाद को मजीद तकवीत देती है। अग्नि एक मुख्तसर दूरी का सतह से सतह पर वार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है जो भारत के कलीदी मिसाइल प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर मुल्क में ही तैयार किया गया है। भारत ने अफगानिस्तान में बच्चों के टीकाकारी प्रोग्राम को फरोग देने के लिए काबुल को बीसीजी, टेटनिस और डिफ्थेरिया वैक्सीन से मुतालिक 20 टन अहम साजो सामान फराहम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत खारजा ने कहा कि इस साजो सामान की मजीद खेप भेजी जाएगी। नई दिल्ली ने सेहत के शोबे में अफगानिस्तान के अवाम की मदद करने के अपने अज़्म का इरादा किया है। भारत की कौमी शाहराओं से मुतालिक अथॉरिटी NHAI ने टनल इंजीनियरिंग, स्लोप स्टेबिलिटी और सलाहियत साजी में जदीद कंसल्टेंसी मदद के लिए नॉर्वे के नॉर्वेजियन जियो टेक्निकल इंस्टीट्यूट NGI के साथ मफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराओं की वजारत ने अपने बयान में बताया कि ये इश्तराक भारत की कौमी शाहराओं के आलमी पैमानों के मुताबिक रख रखाव और फरोग के तई NHAI के अहद की अक्कासी करता है जहां जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और कुदरती आफात के जोखिम से निमटने की NGAI की बैन अवी सतह पर तस्लीम शुदा महारत को बरूए कार लाया जाएगा। मफाहमत नामे के तहत दोनों इदारे कुदरती आफात के खतरे को कम करने से मुतालिक तहकीक और तरक्की के इकदाम में एक दूसरे का ताउन करेंगे। क्वाड वज्राय खारजा की मीटिंग 26 मई को नई दिल्ली में होगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर की दावत पर ऑस्ट्रेलिया के वजीर खारजा पेनी वोंग, जापान के वजीर खारजा तोशिमित्सु मोटेगी और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचेंगे। वजारत खारजा ने कहा है कि वज्राय खारजा गुज़िश्ता साल 1 जुलाई को वाशिंगटन DC में हुए तबादला ख्याल की बुनियाद पर खुले और आज़ाद भारत बहरुल काहल के क्वाड विजन पर गौर खोज करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल नूरलान यर्मबेकाइव के साथ मुलाकात की। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने शंघाई ताउन तंजीम के इकदामात और सरगर्मियों के साथ साथ आलमी और इलाकाई मामलों पर भी बातचीत की। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स यंग डिप्लोमेटिक फोरम और सिफारती इदारों के सरबराहान के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने इस्तेहकाम, इख्तिरा, ताउन, पायदारी और आलमी पेशरफ में शराकत दारी के ब्रिक्स के मौजूदात पर अपने ख्याल का तबादला किया। मरकजी जांच ब्यूरो CBI ने आज नीट UG 2026 पेपर लीक मामले में एक और अहम मुलजिम को गिरफ्तार किया है। मुलजिम का नाम मनीषा संजय हवलदार है और ये महाराष्ट्र के शहर पुणे के सेठ हीरालाल सराफ प्रशाला में काम कर रही है। CBI ने बताया कि ये नीट UG 2026 इम्तिहानात के अमल में शामिल रही है और इसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक एक्सपर्ट के तौर पर मुकर्रर किया था। जांच एजेंसी ने बताया कि मुलजिम को फिजिक्स के सवालनामे तक मुकम्मल रसाई हासिल थी। CBI ने इत्तला दी है कि उन्होंने नीट UG 2026 इम्तिहान के फिजिक्स मजमून से मुतालिक कुछ सवालात साथी मुलजिम मनीषा मंधारे को शेयर किए थे जिसे इस महीने के 16 तारीख को गिरफ्तार किया गया था। छानवी तालीम के मरकजी

बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात के जवाबी पर्चों की स्कैंड कॉपी हासिल करने की आखिरी तारीख में एक दिन की तौसी करते हुए इसे 24 मई तक बढ़ा दिया है। इससे पहले जवाबी पर्चों की कॉपी हासिल करने की आखिरी तारीख कल तक थी। हुकूमत ने कहा है कि गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ते दर्जे हरारत की वजह से बिजली की खपत अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई, जो कि एक रिकॉर्ड है। बिजली की

कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने अहम वजारतों और सरकर्दा सनती एसोसिएशनों के अहलकारों के साथ आज एक मीटिंग की सदारत की, जिसका मकसद मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग को फरोग देने की गरज से हिकमत अमली तय करना था। सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट में जनाब गोयल ने बताया कि हुकूमत सनत के साथ गहरे रवाबित के साथ काम करने के तई पुरज़्म है। भारत के दो कोहे पैमा अरुण कुमार तिवारी और संदीप माउंट एवरेस्ट पहाड़ की चढ़ाई से उतरते वक्त अपनी जान गंवा बैठे। नेपाल के सयाहत के महकमे के हकाम ने बताया कि ये दोनों दुनिया की सबसे बुलंद पहाड़ी चोटी सर करने के बाद नीचे उतर रहे थे। बताया जाता है कि अरुण और संदीप चोटी से नीचे आते वक्त बहुत थक चुके थे और गाइड की हर मुमकिन कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। मणिपुर में आसाम राइफल्स ने कल और आज बिरादरियों तक रसाई की सिलसिलेवार आउटरीच पहल का इनेकाद किया। इन सरगर्मियों का मकसद नौजवानों को तालीम को अपनाने, करियर के इंतखाब से मुतालिक पूरी वाकफियत हासिल करने और सभी शुरका को सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने की तहरीक देना था। हैदराबाद के राजीव गांधी बैनुल अक्वामी स्टेडियम में जारी आईपीएल क्रिकेट मैच में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जीत के लिए 256 रन का निशाना दिया है। इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और कुब्रुस ने दहशतगर्दी से लड़ने के लिए मुश्तरका फोर्स तश्कील देने से इत्तफाक किया है। दोनों मुल्कों ने बाहमी ताल्लुकात को कलीदी शराकतदारी का दर्जा दिया है। दोनों मुल्कों ने इक्तसादी तआवुन को फरोग देने की गरज से कई माहिदों पर दस्तखत भी किए हैं। हुकूमत स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट शुरू करेगी ताकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ तमाम सरहदों को ऐसा बना दिया जाए जिन्हें तोड़कर दाखिल होना मुमकिन न हो। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में मुख्तसर दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि एक की कामयाबी के साथ आजमाइश की है। भारत ने अफगानिस्तान में टीकों से मुतालिक 20 टन अहम तरीन साजो सामान रवाना किया है ताकि बच्चों की टीकाकारी के प्रोग्राम को मजबूत बनाया जा सके। क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान मैच जारी है। इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जीत के लिए सनराइजर्स हैदराबाद ने 256 रन का निशाना दिया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: heavy reliance on imports for vital commodities like LNG, urea, ammonia, and methanol, while unlocking the value of vast domestic reserves. This initiative is fundamentally significant to India's energy security and the Atmanirbhar Bharat goals through several concrete pathways, eradicating import dependencies. India currently imports over 50% of its LNG and 20% of its urea, as also 100% of its ammonia, 80 to 90% of its methanol. So by converting domestic coal into syngas, this scheme targets India's massive national gasification goals and directly replaces these foreign sourced critical chemicals and fuels.
1: Let's now hear what Union Minister Ashwini Vaishnav had to say on coal gasification.
2: आज हम सब जानते हैं कि गैस का जितना रिक्वायरमेंट है और दुनिया भर में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उस हिसाब से हम आत्मनिर्भर कैसे बने। भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है, करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था, उसका फैसला लिया गया है और बहुत ही सामयिक फैसला है, बहुत ही टाइमली फैसला है कोल गैसिफिकेशन की स्कीम। उस गैस को जला के पावर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस गैस से एलपीजी का इक्विवेलेंट फॉर्म भी बना सकते हैं और उस गैस से हम फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग हो, कई सारे जो पेट्रोकेमिकल्स के माने जो एक रिफाइनरी में बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उसी तरह के बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी निकाले जा सकते हैं। तो एक तरीके से कोयले से गैस, गैस से फर्टिलाइजर, कोयले से गैस, गैस से पावर, कोयले से गैस, गैस से कई तरह के केमिकल्स, ये बनाने की ये प्रोसेस है और ये बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि इस युग में हमें जितना आत्मनिर्भर बने उतना अच्छा है और उतना ही देश के लिए भविष्य का बड़ा इंश्योरेंस बनता है।
1: There is also an appeal by Prime Minister on taking measures as we took during the COVID-19 pandemic.
3: देश का हित, देश के लोगों का हित, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। आप देख रहे हैं कि इस समय वैश्विक स्तर पर किस तरह की चुनौतियां हैं। वेस्ट एशिया में संकट की स्थितियां लगातार बनी हुई है, युद्ध के इस माहौल का बहुत नकारात्मक असर पूरे विश्व पर पड़ा है और भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है। देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य में हमें अपना संयम भी बढ़ाना होगा, हमें मिलकर संसाधनों को बचाना होगा, देश के हितों की रक्षा करनी हो। जिस तरह कोरोना काल में हमने संकटों का मिलकर सामना किया था, वैसे ही देशभक्ति की भावना से हमें फिर एक बार भारत को इन वैश्विक संकटों से निकालने के लिए एक साथ खड़ा होना ही होगा।
1: Prabhudayal ji, why are we on a war footing right now?
0: Our Prime Minister urged citizens to restrain their consumption of petrol, diesel and gas. And this serves as a clear indicator of a high-stakes economic emergency triggered by external geopolitical shocks. So the Prime Minister's appeal to treat fuel conservation as a national duty in 2026 amid rising tensions in West Asia and a surging import bill signals that the situation has moved beyond routine budgetary challenges into a structural threat to India's economic stability. And the severity of the situation, as highlighted by the Prime Minister's remarks, can be understood through several key interlinked dimensions. You know, India imports vast majority of its oil and gas, making it vulnerable to volatile global prices. And the ongoing war in West Asia has pushed global energy prices to staggering levels, sharply reducing India's foreign exchange reserves. So therefore, by describing the situation as Sankat Ka Kaal, Prime Minister Modi is explicitly telling the nation that the luxury of high consumption is no longer sustainable.
1: Earlier today, Aditya Shukla, Akashwani correspondent, had a detailed discussion with energy expert Narendra Taneja on the energy situation in India.
4: We have Narendra Taneja, energy expert, with us now. So, Narendra ji, welcome to Akashwani News.
5: Thanks for having me.
4: To start with, I would like to first understand from you as an expert, how do you see our current energy needs? How much are we dependent on other countries for our fuels? Please give us a basic picture of the energy sector. How do you see the current energy sector?
5: Well, if you look at our country's energy landscape, you know, at present, We have a mixed picture in the sense

0: the following strategies. Firstly, lock in long-term supply agreements directly with Abu Dhabi for consistent, unconstrained crude flows. Secondly, accelerate the ongoing discussions on the rupee-dirham oil trade settlements, bypassing dollar-dominated OPEC norms. Thirdly, utilize UAE pipelines that terminate directly on the eastern coast, like the Fujairah pipeline, to safely bypass the geopolitical volatile Strait of Hormuz. Now, if you look at the map of UAE, Fujairah is located outside the Strait of Hormuz. So that is why this pipeline, which I'm referring to, has great significance. Basically, we have learned a lot of lessons from the ongoing Strait of Hormuz, and we are fashioning our new policies in the light of the emerging challenges. In this context, India's draft National Electricity Policy 2026 is very, very important, because as India rapidly scales its economy to meet the demands of a 1.45 billion strong population, its energy needs are growing faster than almost any other major country. So while short-term fuel austerity measures, such as optimizing consumption, are necessary during this crisis, they are not going to be a sustainable solution to India's long-term energy security challenge. So with an over 85% dependence on oil import and substantial reliance on imported coal and gas, India has to move beyond conservation towards a radical structural transformation. So to overcome the present energy challenge, India needs a multi-pronged strategy focusing on aggressive renewable scaling, robust energy storage, grid modernization, and technological diversification. Therefore, the proposed 2026 energy sector reforms in India, centered on the draft National Electricity Policy, aim to transform the power sector for the 24/7 renewable energy, achieve single-digit distribution losses, and drive industrial decarbonization. So all said and done, we are pursuing a very comprehensive energy policy.
1: Thank you so much, Prabhudayalji, for giving us an understanding of what India's long-term energy strategy is and how India is expanding renewables and reducing their dependence on fossil fuels. Prabhudayalji, once again, thank you for being with us on Akashvani.
0: Thank you so much.
1: Listeners, you can also listen to this program on our mobile app, News on AIR, and our YouTube channel, News on AIR Official.
2: Current Affairs.
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी, नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोडस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया है।
4: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
3: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
5: डिस्कशंस फोकस्ड ऑन एनहांसिंग कोऑपरेशन।
3: बातचीत

0: मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है, बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से निकाल बाहर करने का भी प्रण लिया है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि वन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अग्नि वन कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली एक स्वदेशी स्तर पर विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे त्वरित तैनाती के लिए डिजाइन किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1,00,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत ने अफगानिस्तान के बाल टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए BCG, टेटनस और डिप्टीथ्रिया के टीकों की 20 टन आवश्यक सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान को और खेप भेजी जा रही है। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अफगानिस्तान के लोगों की निरंतर सहायता की प्रतिबद्धता व्यक्त की। IPL क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 256 रन का लक्ष्य दिया है। तक समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 4 ओवर में 1 विकेट पर 60 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi and the President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, today reiterated their commitment to combating terrorism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. Both the leaders held a bilateral meeting in New Delhi today at the Hyderabad House in New Delhi. Following the talks between the two leaders, both sides exchanged various agreements, including an MOU on establishing a joint working group on counter-terrorism and an MOU in the field of diplomatic training between the Sushma Swaraj Institute of Foreign Service and the Diplomatic Academy of Cyprus. External Affairs Minister S. Jaishankar, National Security Advisor Ajit Doval and Foreign Secretary Vikram Misri were among those present in the meeting. Addressing a joint press conference, Prime Minister Modi said India and Cyprus would work together on connectivity initiatives such as the Indo-Pacific Ocean Initiative and the India-Middle East-Europe Economic Corridor. On defence and security cooperation, Mr. Modi said both countries agreed to further strengthen collaboration in cyber security, maritime security and counter-terrorism.
2: Aaj humne cyber security, maritime security aur counter-terrorism sahyog ko bhi aur majboot karne ka nirnay liya hai. Itna hi nahi, hum Indo-Pacific Ocean Initiative aur India-Middle-East-Europe Economic Corridor jaise mahatvapurna pahalon se कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: India and Cyprus also decided to elevate their relationship to the level of a strategic partnership and launched a joint task force to strengthen cooperation in areas including

बहुत ही मधुरता और शीतलता लिए हुए ये बहुत ही सुंदर सा गीत और कलाकार सुश्री लक्ष्मी नंदुजल। तो वहीं संगीत ने भी इस गीत को और ख़ास बना दिया। बात करें अगर इन्हें साथ देने वाले कलाकारों की, तो हारमोनियम पर साथ निभाया दामोदर लाल घोष ने, बांसुरी पर विनय प्रसन्ना ने और ढोलक पर साथ रहे पुनीत। तो आइए अब ये अगला गढ़वाली गीत सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम माटी के रंग, जिसमें आज आपने सुने गढ़वाली गीत। कलाकार थी सुश्री लक्ष्मी नंदुजल। आपको हारमोनियम पर संगत दी दामोदर लाल घोष ने, बांसुरी पर साथ निभाया विनय प्रसन्ना ने और ढोलक पर पुनीत ने। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं और अब बढ़ते हैं अगले कार्यक्रम की तरफ। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम राग रंजन, जिसके अंतर्गत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आज आप सुनेंगे सुश्री अपूर्वा तिवारी का राग कौशिक ध्वनि यानी भिन्न षडज में गायन। आपको हारमोनियम पर साथ निभाया क्षितिज कुमार सिंह ने, तबले पर साथ दिया समीर खान ने। आइए सुनते हैं सुश्री अपूर्वा तिवारी की आवाज़ में

0: अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुश्री अपूर्वा तिवारी का राग कौशिक ध्वनि यानी भिड़ भिन्न षडज में गायन। आपको हारमोनियम पर संगत दी क्षितिज कुमार सिंह ने, तबले पर साथ निभाया समीर खान ने। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। रात्रि के 11 बजने को है। लीजिए अब सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया।
2: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
3: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
4: इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत साइप्रस संबंध एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें रक्षा और सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं, संपर्क और समुद्री सहयोग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हो रहा है। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के लिए आईटीबीपी की पहली महिला पर्वतारोहण टीम को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि कठिन भूभाग और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करते हुए इस शानदार जीत को हासिल करके टीम ने आईटीबीपी के राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत को सार्थक कर दिखाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 256 रन का लक्ष्य दिया है। ताज़ा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 14 ओवर में 3 विकेट पर 139 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: This is Akashvani, the news read by Navneeta Adhikari. Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulidas today called for strengthening multilateral efforts to combat terrorism and the expeditious finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework. The joint statement on the state visit of the Cyprus president said both leaders urged for strong and concerted action against all UN and EU designated terrorist and terrorist entities, including those under 1267 UNSC sanctioned committees. They underline the need for cooperation to counter violent extremism and radicalization, financing of terrorism and money laundering, as well as to prevent exploitation of new and emerging technologies for terrorist purposes and to tackle terrorist recruitment. Both sides also call for eliminating terrorist safe havens and infrastructure, as well as disrupting terrorist networks and combating the financing of terrorism at the United Nations and the Financial Action Task Force. Addressing a joint press conference, Prime Minister Modi said India and Cyprus would work together on connectivity initiatives such as Indo-Pacific Oceans Initiative and the India-Middle East-Europe Economic Corridor. On defense and security cooperation, Mr. Modi said both countries agreed to further strengthen collaboration in cybersecurity, maritime security and counterterrorism.
2: Aaj humne cyber security, maritime security और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
5: Later, President Draupadi Murmu received Cyprus President Nikos Christodoulidas at Rashtrapati Bhavan today. She also hosted a banquet in his honor. Welcoming President Nikos Christodoulidas and his delegation to India, President Murmu said India and Cyprus share close relations based on trust and goodwill. She said bilateral relations have been elevated to the level of a strategic partnership, which reflects the growing maturity, depth and mutual trust in the India-Cyprus relationship.

जहाँ इस फिल्म की बात अगर की जाए तो ये फिल्म इसी साल वर्ष 2026 में आई बॉर्डर टू फिल्म से गीत लिया सोनू निगम और साथियों की आवाज़ों में। वाकई कुछ ऐसे दर्द होते हैं जो कभी सोते नहीं हैं, जिन दर्दों को हम जितना भी खामोशी से दबाने की कोशिश करें वो दर्द उभर कर कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं। बस उस दर्द को सुनने वाला समझने वाला कोई चाहिए होता है। जैसे ये गीत हमने सुना, ये गीत ज़रूरी नहीं है कि हम किसी एक विशेष अवसर पर ही सुने, किसी विशेष दिन पर ही सुने। इसे जब भी सुने तब उनके प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए जिन्होंने वाकई इस मिट्टी की रक्षा की है। तो चलिए, अब बहुत ही भावुक सा ये गीत था, इस गीत के बाद अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं। अगला गीत बहुत ही खूबसूरत है और थोड़ा बिल्कुल मिजाज बदल देगा आपका।

बंटी और बबली फिल्म से गीत आवाज़ें सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की। और जैसे कि हमने कहा था कि कुछ गीत जो हैं जब भी सुनो उतने ही तरोताज़ा लगते हैं, और इन गीतों से दिल कभी कभार ऐसा लगता है कि मानो उसके साथ इस कदर जुड़ गया है कि जो जज्बात जो बात हम कहना चाहते हैं वो ये गीत दोहरा रहे हैं। कुछ ऐसे ही जज्बात लेकर आ रहा है हमारा ये गीत। और जो अगला गीत हम ले रहे हैं वो जसविंदर नरूला और प्रीति उत्तम की आवाज़ों में है।

बहुत ही साधारण से शब्द, लेकिन बात इतनी गहरी कि दिल में उतर जाए। गीतों का जादू बस कुछ ऐसा ही होता है कि लिखने वाला ऐसा लिख देता है कि दिल को दिल से जोड़ देता है।

जी हाँ, चुपचाप भी दिल अगर मिलते हैं तो लोगों को खबर लग जाती है। पता नहीं क्या बात होती है कि जब तक हम जानते पहचानते हैं उससे पहले लोग इस बात को मान जाते हैं कि दो दिलों का

और यही प्यार अगर थोड़ी सी देर कर दे आने में, तो फिर दिल का आलम कुछ अलग ही हो जाता है। लगता है कुछ शिकायतें कर ली जाए और मन करता है कि अपने दिल की बात भी कह दी जाए कि हमने आपको कितना याद किया।

देखिए ठीक तो नहीं है, लेकिन क्या करे, आना और जाना तो लगा ही रहता है। ये तो ज़रूरी है, जो आएगा वो जाएगा भी, और समय पर आना भी बेहद ज़रूरी होता है। फिलहाल तो समय आ गया है आप सभी के संदेशों को कार्यक्रम में शामिल करने का। संदेशा हमें सबसे पहला मिला है छोटी बलिया फिल्म सिटी मुंबई से, अहमद भाई फूलवाले, दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल फूलवाले, इमरान अहमद फुलवाले और कापस हेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से हैं। बिटिया आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मंतशा, आशु अहमद फुलवाले और समस्त फुलवाले परिवार हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ा हुआ है। किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, साईराज सपकाल और विशाल सपकाल का संदेशा भी हमें मिला है, जो हमें शास्त्री नगर बीड शहर से लिखते हैं। तो ये संदेशा हमें मिला है गाँव निमानाबाद, जिला जींद, हरियाणा से, जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरमी गुरप्रीत सिंह, लवलीन लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। और कह रहे किसी भी गीत में बस हमें शामिल कर लीजिएगा। दिखिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको शामिल कर लिया जाए। हमारे पास ये संदेश आया है रेशमी नगर मुबारकपुर आजमगढ़ से, जावेद अख्तर राही, शमशुल कमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा शाहीन, तूबा आफरीन, शमीम अख्तर अंसारी का। और संदेशा हमें इतना समय लग रहा है क्योंकि इन्होंने किसी भी शब्द में कोई भी स्पेस नहीं दिया, जिसकी वजह से पढ़ने में बड़ी दिक्कत आ रही है। संदेशे के साथ हमारे साथ जुड़े हैं फागुराम यादव, इनके साथ हैं ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। ये हमें संबलपुर कांकनेर से संदेशा भेज रहे हैं। संदेशा हमें मिला है रजाक मोहम्मद का, साथ हैं शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान और जिशान खान। ये हमें संदेशा भेज रहे हैं हनुमानगढ़ राजस्थान से। संदेशे के साथ टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जसवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप जुड़े हुए हैं, जो कि सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से संदेशा भेज रहे हैं। तो इसी संदेशे में हमारे साथ कुछ और साथी भी हैं। कालका से हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। इसके अलावा संदेशा हमें मिला है, ये मिला है ज़िला नांदेड़ महाराष्ट्र से, शंकर लाल जसवाल, शंकर लाल जी के साथ हैं गणेश लाल, शुभम प्रसाद जसवाल और समस्त जसवाल परिवार। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। संदेशा हमें मिला है नंद किशोर घटे, संगीता साक्षी, जयश्री महत्रे, अंजलि करवा और बाबा साहेब करवा का, जो कि हमें संदेशा मिला है बीड शहर महाराष्ट्र से। संदेशे के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये हैं लिखने वाले, महाराष्ट्र से ही संदेशा मिला है हमें, रुपेश संघई, महेश प्रज्ञेश और प्रतीश संघई हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पूरा संघई परिवार इस कार्यक्रम को सुन रहा है। संदेशे के साथ दुर्गेश नागपुरे, राधेश्याम नागपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढक से हैं हमारे साथ, जो कि खंडवा मध्य प्रदेश से संदेशा भेज रहे हैं। तो हाजी मजहर अली का भी हमें संदेशा मिला है, मजहर अली अंसारी, रज़िया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, जो कि अस्तुपुरा ज़िला मऊ से लिखते हैं, बहादुरगंज गाज़ीपुर से लिख रहे हैं, आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद। प्रकाश वर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, प्रकाश वर्मा जी, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा, जो कि हमें छत्तीसगढ़ पिलारी से संदेशा भेज रहे हैं। तो खुशनुमा गीतों की महफिल सजी हुई है ऐसा लिखकर भेज रहे हैं गुरमीत सिंह मीता, जो कि साउथ एक्सटेंशन दिल्ली से संदेशा भेज रहे हैं। संदेशे के साथ ये जुड़े हुए हैं हमारे एक और श्रोता, जो कि फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा, जो कि हमें गुन्नौर यूपी से संदेशा भेज रहे हैं। संदेशे के साथ ये पूरा सहु परिवार जुड़ा हुआ है, ये पोटिया कला दुर्ग से हमें संदेशा भेजे हैं।

संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक और सीमा साहू। संदेशा हमारे पास आया है जो कहते हैं कि राधे कृष्णा जी, ये लिखकर भेज रहे हैं पंजाब खेड़ा परिवार से लिख रहे हैं। भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल लाड़ी, शालिनी टिवांशनी, वाणी और बी खेड़ा जो कह रहे हैं कि समस्त परिवार आपके कार्यक्रम को सुन रहा है, बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। मुकेश बत्ता जी जुड़े हुए हैं नीलम, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता के साथ। ये हमें कनेरा मोहल्ला पटियाला से संदेशा भेजते हैं। तो छोटे अंसारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनके साथ हैं आलम अंसारी, जहीद मास्टर, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं संबल से। इसके अलावा हमारे पास ये है संदेशा इंद्रभान सिंह का, अनुभव सिंह, ऋषभ राम, सहोदर नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे और कालिंदरी लहरे जो कि हमें चिरमिरी कुरासिया कलारी से संदेशा भेज रहे हैं। तो संदेशे के साथ जुड़े हुए हमारे ये श्रोता जो है कि रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हुए, गोल्डन रेडियो श्रोता संघ है इनका, राज पैलेस से मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से संदेशा मिला है। राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा का, और शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से संदेशा मिला। मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी, आर्यन, कृष्णा और पीहू का संदेशे के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफत, मोहम्मद रिहान, समरीन, परवीन, माहिरा नूर जो कि हमें संदेशा जसपुर उत्तराखंड से संदेशा मिला है। ये संदेशे के साथ जुड़े हुए हैं नबी हसन अब्बासी, शाहनवाज, नावेद हसन, रसीद वारसी, सोहेल हसन और अनम हसन जो कि हमें एटा से संदेशा भेज रहे हैं। इसके अलावा संदेशा हमें मिला है स्वर्ण सिंह गिल का जो कि हमें संदेशा भेज रहे हैं और पूरे कार्यक्रम को सुन रहे हैं। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरलाल सिंह, अविराज, पुत्र गुरनूर और शुभदीप सिंह भी हमारे साथ है इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। तो इन्हीं सभी संदेशों के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की मुझे भी यानी सविता को लेनी होगी इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपको बहुत ही खूबसूरत से गीत के साथ छोड़े जा रहे हो, क्योंकि हमने जैसे कहा था ना कि कुछ बातें, कुछ जज्बात ऐसे होते हैं जिसके लिए हमें किसी समय में नहीं बांधा जा सकता है, तो ये गीत भी कुछ ऐसा ही है। इसी गीत के साथ मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। इस समय रात्रि के 12 बजने को हैं। अब इन मीटरों पर हमारे प्रसारण यहीं संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, शुभरात्रि। लेकिन AIR लाइव न्यूज 24/7 पर हमारे प्रसारण अब भी जारी हैं। रात्रि के 12 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। साइप्रस के राष्ट्रपति की राजकीय यात्रा पर जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ, जिनमें 1267 UNSC प्रतिबंध समिति के तहत आने वाले लोग भी शामिल हैं, कड़ी और समन्वित कार्रवाई करने पर जोर दिया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को दोहराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है, बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से निकाल बाहर करने का भी प्रण लिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। मंत्रालय ने नागरिकों को आवश्यकता के अनुसार ही ईंधन खरीदने की सलाह दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब तक इस मामले में दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के लिए आईटीबीपी की पहली महिला पर्वतारोहण टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि कठिन भूभाग और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करते हुए इस शानदार जीत को हासिल करके टीम ने आईटीबीपी के राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत को सार्थक कर दिखाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज रात हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 4 विकेट पर 255 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नवनीता अधिकारी। Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulidas have called for strengthening multilateral efforts to combat terrorism and the expeditious finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework. The joint statement on the state visit of the Cyprus President said, both leaders urged for strong and concerted action against all UN and EU-designated terrorists and terrorist entities, including those under 1267 UNSC Sanctions Committee. They underlined the need for cooperation to counter violent extremism and radicalization, financing of terrorism and money laundering, as well as to prevent exploitation of new and emerging technologies for terrorist purposes and to tackle terrorist recruitment. Both sides also called for eliminating terrorist safe havens and infrastructure, as well as disrupting terrorist networks and combating the financing of terrorism at the United Nations and the Financial Action Task Force. Addressing a joint press conference, Prime Minister Modi said, India and Cyprus would work together on connectivity initiatives such as Indo-Pacific Oceans Initiative and the India-Middle East-Europe Economic Corridor. On defense and security cooperation, Mr. Modi said, both countries agreed to further strengthen collaboration in cyber security, maritime security and counter terrorism.
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
3: Later, President Draupadi Murmu received Cyprus President Nikos Christodoulidas at Rashtrapati Bhavan yesterday. She also hosted a banquet in his honor. Welcoming President Nikos Christodoulidas and his delegation to India, President Murmu said, India and Cyprus share close relations based on trust and goodwill. The government will launch a smart border project and make the entire border with Bangladesh and Pakistan impenetrable. Mr. Shah was addressing the Border Security Force Investiture Ceremony and Rustamji Memorial Lecture in New Delhi yesterday. He said that work is progressing towards creating an impregnable border security grid within the next year by integrating all kinds of technologies under the smart border concept. He said the ministry will soon introduce a smart border project equipped with drones, radars, modern cameras and other advanced technologies. The Home Minister said once this initiative begins, the work of the Border Security Force will become significantly easier and stronger. He emphasized that India must adopt new strategies

नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ 24x7 पर आपके लिए शुरू हो चुका है इस घंटे का विशेष कार्यक्रम सिरों का सफ़रनामा। और आज के इस घंटे के सफ़र को आप भी कई कई दिनों के लिए अपने दिल में बसाने वाले हो, क्योंकि आज के सफ़र का ताज जिनके सर पर पहनाया गया है वो कोई आम संगीतकार नहीं थे। उन्होंने जो धुनें बनाई वो दिलों को धड़काती हैं, दिलों की धड़कनों में बस जाती हैं। उनकी धुनें 90s की मोहब्बत की आवाज़ बन गई, जिनके गाने सिर्फ सुने नहीं गए बल्कि लोगों की यादों में बस गए। वो नाम है, वो जोड़ी है राम लक्ष्मण जी की।

दोस्तों, राम लक्ष्मण जी का वास्तविक नाम था विजय पाटिल। उनका जन्म 16 सितंबर 1942 को नागपुर में हुआ था और बचपन से ही उन्हें संगीत से बेहद लगाव था। घर में संगीत का माहौल था ही और शायद यही वजह रही कि छोटी उम्र में ही उनकी दोस्ती सुरों से हो गई थी और वो यानी छोटे से विजय पाटिल कई घंटों तक बैठकर इंस्ट्रूमेंट्स के साथ अभ्यास किया करते थे।

किसी भी काम में माहिर होने के लिए उसकी विधिवत शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो विजय जी ने भी अपनी रुचि के विषय में निपुण होने के लिए भातखंडे संगीत संस्थान से संगीत की विधिवत शिक्षा ली। पियानो और ड्रम्स के साथ ही कई कई इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकते थे विजय जी, लेकिन इसके बावजूद मुंबई में उनका सफ़र आसान नहीं रहा, बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। शुरुआती दिनों में कभी ऑर्केस्ट्रा, कभी छोटे असाइनमेंट्स, इन सब से गुजरते हुए भी उनका भरोसा कभी नहीं टूटा।

अब आप सोच रहे होंगे कि जब उनका वास्तविक नाम विजय पाटिल था तो राम लक्ष्मण में कैसे बदला। तो आपको बता दें कि शुरुआत में ये दो दोस्तों की जोड़ी थी, राम यानी सुरेंद्र जी और लक्ष्मण यानी विजय पाटिल जी। लेकिन 1976 में सुरेंद्र जी का स्वर्गवास हो गया। विजय पाटिल जी के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि विजय पाटिल जी ने राम लक्ष्मण नाम को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ रखा और उसे कभी कभी नहीं बदला।

दोस्तों लक्ष्मण राम लक्ष्मण जी को शुरुआती सफलता मराठी फिल्मों से मिली। मराठी फिल्मों के मशहूर कलाकार दादा कोंडके जी के साथ काम करते हुए उन्हें पहचान मिलने लगी और फिर वो समय भी आ गया जब धीरे धीरे उनकी मेलोडियस धुनें लोगों तक पहुंचने लगी और बॉलीवुड ने भी उनकी प्रतिभा को आखिरकार पहचान ही लिया।

और दोस्तों 1980 आते आते राम लक्ष्मण जी अपनी अलग पहचान बना चुके थे। उनकी धुनों में सिंप्लिसिटी थी, उनका संगीत शोर नहीं करता था, शायद इसीलिए सीधे दिल में उतर जाता है। अगर कोई इंसान निरंतर प्रयास करता रहता है ना दोस्तों, तो सफलता एक ना एक दिन उसे अवश्य ही मिलती है। और राम लक्ष्मण जी के निरंतर प्रयासों के बाद उनको सफलता की ऊंचाई पर पहुंचा देने वाला साल आया 1989 यानी 1989, जिसमें रिलीज हुई फिल्म मैंने प्यार किया। और इस फिल्म ने सब कुछ बदल दिया। इस फिल्म के गाने हर गली, हर मोहल्ले, हर दिल में गूंजने लगे और राम लक्ष्मण जी देश के सबसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स में शामिल हो गए। लेकिन अभी जिस फिल्म का गाना हम आपको सुनाएंगे, वो भी उन्हीं की फिल्म है। फिल्म का नाम है हम साथ साथ है और ये गाना भी लोगों के दिलों में बस गया था।

दोस्तों फिल्म में मैंने प्यार किया के बाद जिस फिल्म ने इतिहास रच दिया वो आई 1994 में, यानी 1994 में। फिल्म का नाम था हम आपके हैं कौन। भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी म्यूजिकल फिल्म्स में से एक, 14 गाने और लगभग हर गाना सुपरहिट। पूरे देश में बस यही गाने, इसी फिल्म की धुनें और राम लक्ष्मण जी बन गए सबसे चहेते संगीतकार, सबके चहेते, सबसे चहेते।

दोस्तों, राम लक्ष्मण जी के संगीत में इंडियन फैमिली इमोशंस की मिठास और एहसास था। उनके गानों में सिर्फ प्यार नहीं था, उसमें अपनापन भी था और घर की खुशबू भी। इसीलिए उनका संगीत हर उम्र के लोगों को पसंद आया। 4 दशक से भी ज़्यादा समय के करियर में राम लक्ष्मण जी ने 150 से भी अधिक फिल्मों में संगीत दिया। उन्होंने कई बड़े बड़े अवार्ड्स जीते, अवार्ड्स पाए उनको मिले उनको, और साथ ही उन्होंने 2018 में उनको लता मंगेशकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था।

22 मई 2021 को राम लक्ष्मण जी इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन जो इंसान तमाम जीवन में मेहनत करके सफलता हासिल करते हैं वो इस दुनिया से जाकर भी नहीं जा पाते, नहीं जाते। इसी तरह से राम लक्ष्मण जी अपने धुनों के साथ हमारे साथ हैं हमेशा हमेशा हमेशा के लिए। राम लक्ष्मण जी की न जी ने सिर्फ एक कंपोज़र नहीं थे, वो 90s की मासूम मोहब्बत की आवाज़ थे। उन्होंने हमें ऐसे गीत दिए जो आने वाली पीढ़ियाँ भी गुनगुनाती रहेंगी। आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरों का सफ़रनामा।

0: दोस्तों भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शुरू का सफरनामा। यह आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। अब समाचार होंगे पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपने शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को दोहराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। भारत और इथियोपिया ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO में इथियोपिया के शामिल होने के लिए द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। इस प्रोटोकॉल पर WTO में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि डॉक्टर सैंथिल पांडियन सी और जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में इथियोपिया के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि सेगाब केबेबे डाका ने हस्ताक्षर किए। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है, बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से निकाल बाहर करने का भी प्रण लिया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA द्वारा विशेष

नमस्कार दोस्तों, आप हैं न्यूज़ 24x7 पर और आज इस घंटे जिस सफ़र पर आपको अपने साथ ले जाने के लिए हम आए हैं उसका नाम है गीत सुनहरे। ऐसे गाने जो सीधे दिल में उतर जाने की ताकत रखते हैं, ऐसे नगमात जो यादों की खिड़कियां खोल देते हैं। पहला गीत एक मासूम सी मोहब्बत और मीठी सी तड़प का एहसास। फिल्म है जहां आरा और आवाज है तलत महबूब साहब की।

इतनी खूबसूरत हो जाती है ना ऐसी आवाज़ों के साथ हर वक्त, ये शाम, ये रात, कोई भी पल। दोस्तों, पुराने दौर के गीतों की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उनमें शब्द भी मुस्कुराते थे और धुनें भी सांस लेती थी। 1960 और 70 के दशक में कई गीत ऐसे बने जो कम सुने गए मगर दिल के बहुत करीब रहे। तो पेश खिदमत है एक ऐसा ही बेहद प्यारा और सॉफ्ट रोमांटिक नगमा, फिल्म है प्रेम पर्वत और आवाज़ है लता मंगेशकर जी की।

तो कभी-कभी कोई गीत सिर्फ गीत नहीं होता, वो किसी अधूरी कहानी की तरह लगता है। एक ऐसा एहसास जिसे शब्दों के जरिए पूरा कर पाना मुश्किल हो।

रात गहराती जाए और साथ में पुराने गीत हों तो माहौल खुद ब खुद अपना सा हो जाता है। महसूस होता है उस गीत ने अपनी नर्म माहें फैला दी हों आपको सुकून देने के लिए। सुनिए और आप ही महसूस कीजिए।

दोस्तों उस दौर में गीत लिखने का अंदाज ही कुछ और था, और हर शब्द मानो ठहर ठहर कर दिलों पर दस्तक देता था, और हर गीत मानो कोई कहानी कह रहा हो।

दोस्तों, हर गाने की तरह इस गाने में भी रफ़ी साहब ने कमाल कर दिया। और आगे आते हैं तो दोस्तों, पुराने गानों की बारिश से मोहब्बत की ऐसी सौंधी खुशबू उठती है कि ऐसे में उनमें सराबोर होकर कोई इंसान इतना चैन पाता है, इतना सुकून पाता है कि मालूम होता है कि बस अब जिंदगी में इस जिंदगी से और कुछ भी नहीं चाहिए। भीगी हुई सड़कें, रात की रानी के पत्तों पर पड़ी हुई कुछ बूंदें, किसी अपने की याद और रेडियो पर बजता हुआ ये गाना।

आधी रात को जब लगभग सारी आवाज़ें बंद हो जाती हैं, तब ऐसे में दिल कभी कभी कितनी जोर जोर से बोलने लगता है ना।

दोस्तों, मोहब्बत में जब पूरी सच्चाई हो, दोनों तरफ से पूरा एतबार हो, हर हाल में साथ निभाने का जज्बा हो, तो ऐसे में लाजमी है शब्दों को आवाज़ देने की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। और कुछ ऐसी ही खुशबू लिए है हमारे सफ़र का अगला गीत।

0: दोस्तों, गीत सिर्फ दिल नहीं बहलाते। अगर उनमें कोई खो जाए तो गीत ज़िंदगी का नज़रिया बदलने की क़ुव्वत रखते हैं। वैसे तो हर किसी के पास इसका कोई ना कोई होता ही है, लेकिन अगर कोई फिर भी खुद को तन्हाई की गिरफ्त में पाए तो उसकी गिरफ्त से निकालने तक का हुनर होता है इन नगमों के पास।
1: ओ शाम

दोस्तों, कभी हुआ है ऐसा आपके साथ कि जिसे आप पहले कभी ना मिले हो, कभी बात ना की हो, फिर भी दिल ऐसे धड़का हो किसी से मिलने के बाद, जैसे बरसों बाद किसी अपने से मिलने के बाद धड़कता है? और अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो अभी कहीं लिख कर रख लीजिए कि आप बहुत बहुत खुशकिस्मत हो। तो दोस्तों, आज की महफिल अपनी मंजिल तक पहुंचने की ओर है। उम्मीद है इन अनमोल गीतों के साथ आप वक्त की रफ़्तार को महसूस भी नहीं कर पाए होंगे। पुराने गीतों की यही खासियत है कि ख़त्म होने के बाद भी ये दिलों में सुनाई देते रहते हैं। इसी खूबसूरत एहसास के साथ हमें गीत सुनहरे से इजाज़त दीजिए और आप बने रहिए न्यूज़ 24x7 के साथ।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सुनहरे और अब AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल में वक्त है समाचारों का, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश के 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। भारत और साइप्रस के बीच आतंक रोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपने शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को दोहराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। भारत और इथियोपिया ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO में इथियोपिया के शामिल होने के लिए द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। इस प्रोटोकॉल पर WTO में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि डॉक्टर सेंथिल पांडियन सी और जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में इथियोपिया के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि सेगाब के बेव डाका ने हस्ताक्षर किए। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से निकाल बाहर करने का भी प्रण लिया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब तक इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल Agni-1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया है। टॉस जीतकर

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। दोस्तों, ये वक्त है कार्यक्रम गीत पहाड़ का, जिसमें हम लाते हैं आपके लिए नॉनस्टॉप गीतों की माला। समय हो रहा है रात के 2:10।

दोस्तों, गीत बहार का सफर बस यहीं तक। रात्रि के 3 बजने वाले हैं। आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24x7। अब से कुछ ही पलों में समाचार होंगे, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। भारत और साइप्रस के बीच आतंक रोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपने शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को दोहराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। भारत और इथियोपिया ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO में इथियोपिया के शामिल होने के लिए द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। इस प्रोटोकॉल पर WTO में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि डॉक्टर सेंथिल पांडियन सी और जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में इथियोपिया के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि सेगाब केबे वेव डाका ने हस्ताक्षर किए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब तक इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ नागरिकों तक सरल, सुगम और समयबद्ध तरीके से पहुंचना चाहिए। कृषि मंत्री ने नई दिल्ली में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान ये बात कही। उत्तराखंड के चमोली जिला स्थित हेमकुंड साहिब के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए फिर खुलेंगे। इस बीच पंच प्यारों के नेतृत्व में तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था कल गोविंद घाट से घांघरिया के लिए रवाना हुआ। तीर्थ यात्रा दल में 5,000 से अधिक श्रद्धालु शामिल हैं। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 20 ओवर में 4 विकेट पर 200 रन ही बना सकी। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। पेश है प्रोग्राम गजल गीत, और इस प्रोग्राम को लेकर मैं हूं आपके साथ तरन्नुम, जहां होगी प्यार भरी बातें। और इस रात के हम सफर में हम सब तन्हा तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ हैं। कहते हैं ना कि दिल में जो भी जज्बात हैं वो हम बयां तो कर ही नहीं पाते, जब भी मौका होता है, जब भी ज़रूरत होती है, जब भी हम कुछ कहना चाहें, लेकिन कहीं ना कहीं ये जज्बात अंदर ही अंदर आपके दिल में ऐसे ज़ख्म पैदा कर देते हैं कि जो ज़िंदगी भर रहते हैं, और कभी कभी ऐसा खुशनुमा माहौल पैदा कर देते हैं कि ये प्यार उमड़ उमड़ कर आप अपनी मोहब्बत पर न्योछावर कर देते हैं। कहते हैं कि इस खूबसूरत तन्हाई का जो आलम होता है उसमें आपके दिल की धड़कन तेज़ होती है। सच है ना, दिल की धड़कन इसलिए तेज़ होती है कि ये जो आपके दिलो दिमाग में यादों का एक कारवां सा चलता आ रहा है वो लगातार बस आप सोचते रहते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसी कश्मकश होती है, कहीं ना कहीं ऐसी दिल में जज्बात गुफ्तगू करने का दिल और मौसम, तन्हाई या आलम, ये रातें सभी को एक ही आवाज़ देने को दिल चाहता है। और इसी सुनहरी यादों को कहते हैं कि जैसे रेशम जैसे मखमली एहसास होते हैं, कुछ यादें होती हैं, और इस सफ़र में जब आप निकलते हैं तो अब वक्त का यूँ पता भी नहीं चलता, और जो दिल की बात होती है वो कहीं ना कहीं लफ्ज़ बनकर आप किसी के सामने भी बयां कर देते हैं। और ये जो मैंने बोला कि किसी के सामने भी बयां कर देते हैं वो कोई ख़ास होता है, और इसी ख़ास बात पर, इसी ख़ास लोगों के लिए ये गज़ल गीत का प्रोग्राम हम पेश कर रहे हैं। तो चलिए ग़ुलाम अली की आवाज़ में ये खूबसूरत गीत सुनते हैं।

अपनी तन्हाई की पलकों को भिगो लूं पहले, फिर गजल तुझ पे लिखूं, बैठ के रो लूं पहले। ख्वाब

0: के साथ कहीं खो न गई हूँ आँखें, जब उठूँ सो के तो चेहरों को टटोलूँ पहले। मेरे ख्वाबों को है मौसम पे भरोसा कितना, बाद में फूल खिले हैं हार पिरोलूँ पहले। देखना है वो खफा रहता है मुझसे कब तक, मैंने सोचा है कि इस बार न बोलूँ तुझसे।
1: बहुत ही खूबसूरत ये गज़ल है, और ये जो गज़ल आप ने अभी सुनी ये एक मशहूर शायर की गज़ल है, और उम्मीद करते हैं कि इस शायर का नाम भी आप जानते होंगे। शायर हैं फैसरुल जाफरी। फैसरुल जाफरी साहब ने बहुत खूबसूरत खूबसूरत गज़लें लिखी हैं, जो हमारी फिल्मी दुनिया में भी कई ऐसे मशहूर गीत भी इन्होंने लिखे हैं, और जिन्होंने इन गीतों को बहुत लोगों ने अपनी आवाज़ दी और बहुत ही दिल से ये गीत सुने जाते हैं। कहते हैं ना कि जब भी जज्बात हमारे हम किसी को बता नहीं पाते, बयां नहीं कर पाते, और हमेशा ज़िंदगी में कभी कभी एक ऐसा दौर भी आता है कि जब बहुत भीड़ हो, अपने आसपास लोग हों, बहुत सारे लोग हों, दोस्त हों, रिश्तेदार हों, घर पे कहीं पे भी आप नहीं, लेकिन एक तन्हाई का आलम एक मुसलसल बना रहता है दिल में, दिमाग में, और जब दिल में बहुत सारी बातें जो हैं वो पैदा हो जाती हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि ये गुबार बनकर आँखों से बहने लगता है, और अक्सर तन्हाई में कुछ आँखों में नमी रहती है, कुछ आँसू बनकर छलक जाते हैं, कुछ लोग जो हैं ये दिल का दर्द बयां कर पाते हैं, लेकिन कुछ जो है आँसू के रूप में बस अपने दिल से ये गुबार निकाल लेते हैं। पर अपने आसपास उन लोगों को पहचानने की कोशिश करिए,
0: और आप महसूस करेंगे कि कोई भी एक ऐसा शख्स आपकी ज़िंदगी में होगा ज़रूर, जो आपकी बातों को समझेगा ज़रूर। और बहुत से लोग ऐसे मायूसी के आलम में जब उन्हें अपने दर्द को बयां करने का जज्बा नहीं होता और सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं, तो फिर दीवारों का सहारा लेना पड़ता है। और ये जो अगला गीत सुन रहे हैं आप, पंकज उदास की आवाज़ में ये खूबसूरत सी गज़ल है, और मैंने एक शायर का नाम इससे पहले आप सबके सामने लिया था, कैसरुल जाफरी। ये जो अगली गज़ल है वो भी इन्हीं की लिखी हुई है, और इस गज़ल को खूबसूरत मखमली आवाज़ से संवारा है, नवाजा है पंकज उदास ने। आइए सुनते हैं ये गज़ल।

दोस्तों, कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो सीधे रूह में उतर जाती हैं, और उन खूबसूरत आवाज़ में इस गज़ल गायकी की अदायगी जो होती है वो भी कहीं ना कहीं आपके दिल में तो उतरती है, लेकिन आपके दिमाग में भी वो एक गहरा असर छोड़ के जाती है, और आप उस आवाज़ को सुनकर यूं ही कभी बैठे खामोश में अपने जज्बात को जब आपको बयां करने की ज़रूरत होती है तो इसी आवाज़ की यादें जो हैं वो आपके दिलो दिमाग पर चलती रहती हैं, और आपको ये महसूस होता है कि कहीं इसी खूबसूरत आवाज़ के ज़रिए मैं अपने दिल की बात अपने महबूब तक पहुंचा सकूं। है ना सही बात? चलिए इस गज़ल की फहरिस्त में एक और खूबसूरत गज़ल सुनते हैं, भूपेंद्र सिंह और मिताली की आवाज़ में।

दोस्तों, ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ न कोई शिकायत होती है, न कोई गिला होता है, न कोई दर्द छुपा होता है, और न कभी ऐसे एहसास होता है कि हम अपनी बात अपने महबूब तक पहुँचाएँ। बस एक खामोशी होती है, और इसी खामोशी को जो है इन खूबसूरत लफ्ज़ों में पिरोया गया है। एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत इस प्रोग्राम के तहत आप सुन रहे हैं, और कहते हैं ना कि ज़िंदगी में किसी भी बात के लिए अगर आप मायूस हैं तो इस मायूसी को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए पहल कीजिए, सोचिए। अगर कोई बात दिल में दर्द दे रही है और उस दर्द को आप जो है महसूस कर रहे हैं, तो आप ज़रूर इस दर्द को बयां करिए। कहते हैं कि जो भी बातें हैं, जो भी जज्बाते हैं, वो लफ्ज़ बनकर सामने वाले को ज़रूर पहुंचाना चाहिए। कहते हैं ना कि वक्त बहुत कम होता है और ज़िंदगी बहुत छोटी होती है, और बातें बहुत लंबी होती हैं, और ख़ास बातों को कहने का वक्त बहुत कम होता है हमारे पास। आइए सुनते हैं ऐसा ही ये खूबसूरत गीत फिल्म आंधी से, आवाज़ लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना?

यहाँ आप सुन रहे थे प्रोग्राम गज़ल गीत, और इस प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले एक लम्हा और बाकी है कुछ और दिल की बात बयां करने के लिए। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जब आप बयां नहीं कर पाते तो इन गज़लों का सहारा आप ज़रूर लेते हैं, और मैं भी वही कर रही हूँ। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गज़ल, आवाज़ जगजीत सिंह की। कहते हैं ना कि जब दिल के राज बहुत देर तक आप छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो राज हैं वो बहुत देर तक छुपे नहीं रहते। आइए सुनते हैं ये आखिरी गज़ल।

0: इसी के साथ गज़ल गीत का ये प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

ऋषिव पुरेश सुप्रभातम सुनिए। रचना ज्ञानानंद सरस्वती की है। स्वर दिया है पारसाला पुन्नमाल ने।

0: इसी के साथ अर्चना कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नाद ब्रह्म। कर्नाटक संगीत के इस कार्यक्रम में आज कलाकार हैं SR जानकीरमन।

अभी आप सुन रहे थे कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म। कलाकार थी SR जानकी रमन। नाद ब्रह्म

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के चैत्र मास की पांचवी तिथि, तदनुसार 23 मार्च 2026 सुबह के 4:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए जान लें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की एक छोटी सी रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जानकारी लेंगे योग उच्चैः प्राणायाम और वृक्षासन की। देशभक्ति गीत आप सुनेंगे। इसके बाद 5:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी। सुबह 6:10 पर समय रहेगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। 6:40 पर सुनिए कार्यक्रम चिंतन। विषय है महात्मा बुद्ध के सुख दुख पर विचार। रामचरितमानस का समय रहेगा 6:45 पर। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे बाल कांड। कार्यक्रम संगीतिका। इस कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 7:10 पर। और आज कलाकार है मोमिता कुंडो नजरुल। इनके गाए कुछ गीत सुनेंगे। गीतों भरी गुड मॉर्निंग प्रोग्राम आप सुनेंगे 7:30 पर। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। इस कार्यक्रम का समय रहेगा 8:45। धरती आकाश ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:15 पर। मिट्टी दी महक। इस कार्यक्रम का समय रहेगा 9:30। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद। ये प्रोग्राम आप सुनेंगे सुबह 10:10 पर। कार्यक्रम सबरस का समय रहेगा 11:10। सुर मंजरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे 11:30 पर। दोपहर 12:00 हम आपके लिए लेकर आएंगे महिला कार्यक्रम घर आंगन। इसके बाद आप सुनेंगे 1:10 पर प्रोग्राम एक ही फिल्म से। इस प्रोग्राम के अंतर्गत आप सुनेंगे फिल्म खानदान के कुछ चुनिंदा गीत। एक ही कलाकार ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 2:30 पर। इस कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं आरती मुखर्जी। ब्रज माधुरी ये प्रोग्राम आप सुनेंगे दोपहर 3:00। तीन बजकर 30 पर आपके लिए कार्यक्रम होगा नाटक जीवन की चार सीढ़ियां। ये सभी कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5:00 हैं। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी, नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने

0: कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: इस बीच दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपने शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को भी दोहराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज से अपनी 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंचेंगे। श्री रूबियो का नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का भी कार्यक्रम है। वे कोलकाता में मदर टेरेसा की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके अलावा श्री रूबियो का विक्टोरिया मेमोरियल जाने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो रविवार को विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब तक इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने सोशल मीडिया के जरिए शेयर बाजार में पंप एंड डंप रैकेट चलाने के आरोप में कई अपंजीकृत फाइन इन्फ्लुएंसर और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक अंतरिम आदेश में जारी बाजार नियामक ने कहा है कि इन संचालकों ने स्मॉल और मिड कैप शेयरों को खरीदा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुझाव साझा करके कीमतों को कृत्रिम रूप से बढ़ाया और बाद में मुनाफे पर शेयर बेच दिए। इससे खुदरा निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। सेबी ने कहा कि आरोपियों ने शेयर की कीमतों में हेरफेर करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ नागरिकों तक सरल, सुगम और समयबद्ध तरीके से पहुंचना चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान ये बात कही। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। उत्तराखंड के चमोली जिला स्थित हेमकुंड साहिब के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। इस बीच पंच प्यारों के नेतृत्व में तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल गोविंद घाट से घांघरिया के लिए रवाना हुआ। तीर्थयात्रा दल में 5,000 से अधिक श्रद्धालु शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कांगो में चल रहे इबोला के मौजूदा संक्रमण से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम को अत्यंत उच्च कर दिया है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अदहनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर जोखिम बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न किया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक 82 मामले और 7 मौतें दर्ज की गई हैं, लेकिन संक्रमण के इससे कहीं अधिक व्यापक होने की संभावना है। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing today.
3: Rozgar Mela is a step towards fulfillment of the Prime Minister's commitment to accord highest priority to employment generation. The Rozgar Mela is playing a significant role in providing meaningful opportunities to the youth for their empowerment and participation in nation building. Since its inception, around 12 lakh recruitment letters have been issued through 18 Rozgar Melas organized across the country. The 19th Rozgar Mela will be held at 47 locations across the country. The newly recruited candidates selected from across the country will be joining various ministries and departments, including Ministries of Railways, Home Affairs, Health and Family Welfare, and Department of Higher Education, among others. With Dipendra, this is Anand Kumar for Akashwani News, Delhi.
2: Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulidis.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आओ योग करें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप जानकारी लेंगे योग, उज्जयी प्राणायाम और वृक्षासन की।

मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी शौखन, मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। दोस्तों, तनाव ग्रस्त जीवन शैली से थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम आजकल बहुत ही कॉमन हो गई है। आधुनिक जीवन में व्यक्ति अनेक चिंताओं से ग्रस्त है, जैसे परिवार की चिंताएं, पर्सनल प्रॉब्लम्स या ऑफिस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो आज हम के सेशन में हम देखेंगे कि थायराइड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उससे आप कैसे निजात पा सकते हैं। थायराइड हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है जिसका काम होता है हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करना, और साथ ही साथ यह ग्रंथि हमारे हृदय, मांसपेशियों और कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रण करती है। परंतु जब यह ग्रंथि सही रूप से काम नहीं कर पाती तो हमारे शरीर में हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, और उससे उत्पन्न होने वाली कॉन्सिक्वेंसेस को हमें फेस करना पड़ता है। देखा गया है कि योग अभ्यास में उज्जयी प्राणायाम थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करने में काफी सहायक है। तो आज हम सीखेंगे कि उज्जयी प्राणायाम किस प्रकार किया जाता है। तो इसकी अभ्यास विधि के लिए आप सबसे पहले किसी भी सुखद पूर्वक आसन में बैठ जाए, अपने मुंह को बंद कर ले, पूरे क्षेत्र को गले के पिछले हिस्से पर संकुचित कर ले, दोनों नासिकाओं से धीरे धीरे एक ही लय में तब तक श्वास भरते रहें जब तक आप गले से लेकर हृदय तक उसको महसूस ना करें। श्वास लेने के क्रम में कंठ द्वार यानी थ्रोट रीजन के आंशिक रूप से बंद होने के कारण एक विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न होती है। यह ध्वनि हल्की और समान होनी चाहिए, साथ ही साथ इसे लगातार करते रहना चाहिए। श्वास लेते समय सीने को फुलाएं। कुछ समय पश्चात धीरे धीरे दोनों नासिका छिद्र से श्वास को बाहर निकालें। यह इस अभ्यास का एक चक्र है। इसी प्रकार एक सेशन में आप कम से कम 4 से 5 बार उज्जयी प्राणायाम अवश्य करें, तभी आप इसका परिपूर्ण रूप से लाभ उठा पाएंगे। उज्जयी प्राणायाम आपके थायराइड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उससे काफी निजात पा सकते हैं। प्राणायाम के साथ साथ आप सर्वांगासन को भी कर सकते हैं, यह भी थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए काफी हद तक लाभकारी है। तो इस सेशन में आज हमने सीखा कि किस प्रकार आप थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए उज्जयी प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप योग अभ्यास करें तो कुछ बातों का अवश्य ध्यान दें। कोई भी आप योग अभ्यास करें, उसे सहज पूर्वक करें, पूरी एकाग्रता के साथ करें, तभी आप उसका लाभ उठा पाएंगे और अपने जीवन को खुशहाल बना पाएंगे। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।

आप सभी को सादर प्रणाम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी शौखन, आपकी योग विशेषज्ञ। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग अभ्यास बताऊंगी जो बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है। केवल बच्चों के लिए ही नहीं, परंतु हर वर्ग के लोगों के लिए यह आसन जरूरी है। आज हम करेंगे वृक्षासन। वृक्ष शब्द का अर्थ है पेड़। इस आसन के अभ्यास की अंतिम अवस्था में हमारा शरीर एक पेड़ का आकार ले लेता है, यानी बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है। इसीलिए इस आसन को वृक्षासन कहते हैं। आजकल लैक ऑफ कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती जा रही है, यानी किसी भी कार्य में ध्यान ना लगना। इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई भी काम लगन से तो

ना चाहते हैं, पर लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन यानी एकाग्रता की कमी से उस कार्य को परिपूर्ण रूप से नहीं कर पाते और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी हमें आगे फेस करना पड़ता है। वृक्ष आसन का अभ्यास करते समय सर्वप्रथम दोनों पैरों को एक दूसरे से 2 इंच की दूरी पर रखकर खड़े हो जाएं। आंखों के सामने किसी भी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर दोनों हथेलियों को जोड़ें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास करें और सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए हाथों और दाएं पैर को मूल अवस्था में वापस ले आए। शरीर को शिथिल करें और इसी आसन का अभ्यास पुनः बाएं पैर से भी दोहराएं। दोस्तों, यह आसन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। यदि आप इस आसन को 3 से 4 बार एक सेशन में दोहराते हैं तो यह धीरे धीरे आपकी एकाग्रता को बढ़ाने में सहायक है और शरीर को संतुलित बनाता है, सहनशीलता और जागरूकता भी बढ़ाता है। तो आज हमने सीखा कि किस प्रकार आप अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए वृक्ष आसन का अभ्यास कर सकते हैं। परंतु ध्यान रहे, यदि आपको कोई आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या मोटापा बहुत ज्यादा है, चक्कर आते हैं, तो इस आसन का अभ्यास ना करें। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। धन्यवाद।

0: जलदाता ग्रैंड वाटर, कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहाँ धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देती। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूं मैं। क्या लिखूं अपना दर्द, अब तो कलम में बस बूंदे ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता, बस दो शब्द याद रखिए, कंट्रोल और सेव। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वर रंजनी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे राधिका मोहन मोइत्रा का सरोद वादन, राग हमीरी बिलावल।